0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि नित सवेरे आकर के आप योग की योग पाठशाला में 30 दिवसीय चल रहे योग शिविर में नित्य प्रतिदिन आसन, प्राणायाम और योग को करते होंगे। आइए दोस्तों, आज हम सभी मिलकर के एक नए आसन, एक नए प्राणायाम के पास चलते हैं। आज पास मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कहते हैं ना कि कुआं हमेशा से प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासा ही कुआं के पास जाता है। तो हमें हर बार हर एक नए प्राणायाम के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसी से हमारे स्वस्थ जीवन की शुरुआत होगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक नए आसन, एक नए प्राणायाम को। लेकिन उस नए प्राणायाम के साथ, जो कि एक नए शब्द की उत्पत्ति हम हर बार से करते आ रहे हैं, वह है आज प्रेरणा। यस, प्रेरणा का अर्थ से ही आप समझ गए होंगे कि प्रेरणा से हमें काफी चीजों की प्रेरणा मिलती है। शुरुआती तौर पर होता ये है कि हम जब देखते हैं कि कभी कोई लेते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं, जब कोई हम एक दृढ़ संकल्प लेते हैं या जब हम कुछ सोचते हैं, तो हमें उससे एक प्रेरणा आती है। प्रेरणा का मतलब है कि उस काम को करने के लिए हमको जागरूक होना, हम उसके प्रति जागरूक होते हैं, हम उसके प्रति ललायत होते हैं,

यह प्रेरणा हमें अंदर से आती है। यह प्रेरणा जगाने वाला कौन होता है? हमारे अंतरात्मा। मान लीजिए कि हम सवेरे उठते हैं और हम योग आसन की ओर बिल्कुल तल्लीनता से बैठ जाते हैं। ये प्रेरणा देने वाला कौन है? हमारी अंतरात्मा। हम जब सोच लेते हैं कि हमें अब उठ करके सवेरे आसन प्राणायाम करना है, तो ये प्रेरणा देने वाला भी हमारा मालिक है, हमारे भगवान है। तो प्रेरणा का मतलब होता है हम जिस कार्य को बड़ी ही तल्लीनता से करें, वह प्रेरणा रूपी ही कहलाता है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहारों को आरंभ करती है और साथ ही साथ मार्गदर्शन करती है और उसको बनाए रखने में हमारा सहयोग करती है। उदाहरण के लिए, प्रेरणा वह है जो आपको अतिरिक्त वजन कम करने में मदद करती है या आपको काम पर पदोन्नति पाने के लिए प्रेरित करती है। तो हुआ ना, प्रेरणा से मतलब यही हुआ कि यदि हम किसी भी कार्य को प्रेरणा रूपी करते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमें वह किस प्रकार से प्रेरणादायी बन सकता है। प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम भावनाओं को जोश भरने का काम करती है। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यह हमारे अंदर काम करने की लगन को पैदा करती है। यह एक बहुत पावरफुल ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए, प्रेरणा कैसे काम करती है, हम उस पर भी कुछ वार्तालाप करेंगे। जब हम समझ लेते हैं कि मोटिवेशन कैसे काम करती है और यह कैसे उत्पन्न होती है, तब हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले असली मकसद को हासिल कर सकते हैं और उन सभी व्यक्तियों को भी प्रेरित कर सकते हैं जो सफलता के लिए कड़े संघर्ष कर रहे हैं और डीमोटिवेशन हो चुके हैं। वैसे तो प्रेरणा के कई प्रकार हैं, लेकिन इस समय प्रेरणा के हम दो प्रकारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि मोटिवेशन के दो तरह होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। आज हम जिस प्राणायाम के बारे में, जिस आसन के बारे में बताने जा रहे हैं, वह भी वाय रूपी आसन के रूप में है, यानी कि एक्सटर्नल एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन यानी दो प्रकार से, वाय और आंतरिक। तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रेरणा के बारे में जानेंगे, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। एक व्यक्ति ने, जिसने गरीबी से उठकर अपनी मेहनत से करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया, अचानक ही किसी कारणवश उसे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा और उसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ उस समय उसके पास एक व्यक्ति ऐसा आया जिसे वह उसे मोटिवेट करना शुरू कर देता है। डीमोटिवेशन यह हुआ कि उसके साथ वो भी उसी नुकसान की भरपाई के लिए दिन रात बातें करना, ये बोलना कि ये कैसे होगा, अब क्या करोगे, तुम्हारा परिवार, ये वो। लेकिन अगर हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं तो ये होगा अंदर से मोटिवेट करना, यानी कि हम उसे समझाने के तौर में उसे मोटिवेशन दे रहे हैं, जैसे कोई बात नहीं, इससे बड़ा भी हो सकता था, या अगर आप ठीक हैं तो ऐसे कई बिजनेस आप फिर से लगा सकते हैं, आपका परिवार आपके साथ में है। तो ये हो गई आंतरिक मोटिवेशन यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। हमारे जीवन में हमें जरूर से एक ऐसे व्यक्ति का साथ करना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता है। साथ ही साथ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपको मोटिवेट कर सके। और यदि यह जीवन में हम एक योग के माध्यम से ला दें तो उसमें तो चार चांद लगते ही हैं। तो आइए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेरणा वाय आसन। प्रेरणा वाय आसन, वैसे तो अभी हमने आपको प्रेरणा के बारे में बताया कि किस तरीके से
वाय आसन के आगे एक शब्द जुड़ा जो कि है प्रेरणा। प्रेरणा एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि हम आज बाय और आंतरिक दोनों एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आंतरिक जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं, एक्सरसाइज प्राणायाम के रूप में करते आए हैं, लेकिन बाय में हम कुछ ऐसे आसनों को आज बताने जा रहे हैं जो कि आप भली भांति उसे जानते हैं, जैसे सौंदर्य आसन, चक्की चलाना, मंडूक आसन, चक्रासन, वज्रासन, वृक्षासन। ये तमाम आसन जो हैं, यह आपको वाह रूप में दिखाते हैं। और आंतरिक जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, उद्गीत, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये हमारी एक्सटर्नल एक्सरसाइज कह सकते हैं या हम प्राणायाम भी कह सकते हैं। तो आज हम प्रेरणा वाय आसन करने जा रहे हैं, जिसमें कमर से लेकर के पैरों तक के दर्द को किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं, आइए हम सभी मिलकर के साथ में करते हैं। सर्वप्रथम आप किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाएं। योगा मैट है तो योगा मैट पर बैठें, अन्यथा आप कोई साफ सुथरी चद्दर बिछा करके उस पर बैठ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यही है कि आपका मन, चित और ध्यान सिर्फ उस योग आसन की ओर लगा रहना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और अपने आप को एकांत करते हुए सीधे प्रभु में ध्यान लगाते हुए 2 से 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भरते हुए

इस तरीके से जब हम लंबी गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करके चेहरे व अपने आंखों पे लगाते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वाय आसन। पैरों को सीधा कर लें, बिल्कुल एल शेप में। अंग्रेजी के एक वर्णमाला से लिया गया शब्द जो कि है एल। एल के आकार में आपको बैठ जाना है, कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और पैर दोनों जुड़े हुए सामने होने चाहिए। दोनों हाथों को कोशिश करें कि पैर के अंगूठे तक ले जाएं। हाथों को ऊपर करते हुए अंगूठे को, दोनों अंगूठों को छूना है दोनों हाथों की हथेलियों से। इस प्रकार आपको 1 से 10 बार की गिनती को करते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में आपको दोनों हाथों की हथेलियों को नी कप पर रख लेना है, यानी कि घुटने के ऊपर। हथेली घुटने पर आने के बाद में पैर सीधे ही रहेंगे। घुटने पर आने के बाद में अप डाउन की स्थिति, यानी कि एक घुटना उठाएंगे और एक पैर नीचे रहेगा। हल्का सा घुटना उठाएंगे और ऐसे ही बारी बारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से दोनों हाथ फिर जमीन पर रख देंगे और पैर अभी सीधे ही रहेंगे। पैर को हम फिर से रिलैक्स कर लेंगे, यानी कि पंजों को चला लेंगे अपने ही सामान्य स्थिति में, ताकि अगर पैर में किसी को झुंझनी आती है या दर्द होता है तो वह स्थिति ना आए। पैर के पंजों को चलाएंगे झटके से और फिर अगले आसन की ओर हम बढ़ेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को कमर पे रख लेंगे और एक पैर को पहले उठाना है हवा में और दूसरा पैर नीचे, फिर दूसरे को उठाना है और पहले पैर को नीचे। आप जितना उठा सकते हैं, जमीन से उठाएंगे ऊपर और फिर नीचे, फिर उठाएंगे फिर नीचे, यानी कि पहला एक पैर, दायां पैर, बायां पैर, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर। ऐसे आपको बैठ करके हवा में उठाना है और जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। सबके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगी कि यह आसन किसके लिए किस तरीके से उपयोगी है। अगला आसन करेंगे, अब हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, यानी कि एक पैर आपका मुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे हम दोनों पैर को मोड़ लेते हैं घुटनों को पीछे मोड़ करके और हम बैठ जाते हैं पैरों की एड़ियों पर, तो आपको दोनों पैर नहीं मोड़ना है, एक पैर मोड़ना है और एक पैर आपको सीधा रखना है, यानी कि एक एड़ी पर आपको बैठना है कुछ देर के लिए, यानी 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। और उसके बाद फिर पहला दाएं पैर और फिर दूसरा बाएं पैर, फिर बाएं पैर को सीधा कर लेंगे, दाहिने पैर पर बैठेंगे, दाहिने पैर को सीधा कर लेंगे और फिर बाएं पैर पर बैठेंगे। यही प्रक्रिया 30 सेकंड तक चलती रहेगी। इस प्रकार यह वाय आसन कहलाते हैं। वाय आसन बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अब दोनों पैरों के बीच में स्थान कर लेंगे, यानी कि थोड़ी सी जगह कर लेंगे, पैरों को फैला लेंगे। अब आपका दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे को छुएगा और बाएं हाथ दाहिने पैर के पंजे को छूते हुए एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कुछ आसन आपके वाय आसनों में से एक हैं। आइए अब हम आपको बता दें इसके फायदे। ये सारे वाय आसन आपको इतने ज्यादा लाभकारी होने वाले हैं, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में लाभ होने वाले यह आसन है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं,
बाहर जाते हैं और जैसे जैसे इतने महंगे महंगे एक्सरसाइज जिम में जाते हैं और करते हैं, लेकिन हम यह घर बैठे एक घंटा यानी कि आप एक एक एक्सरसाइज 10-10 सेट का बना करके इसको करेंगे तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण की बात यह है कि जिनको रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दिक्कत होती है वह यह आसन थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, बहुत देर तक नहीं करेंगे। सावधानियां हमने आपको पहले भी बता के रखी हुई है कि गर्भवती महिलाएं इस आसन को सारे आसनों को ना करें और बालिकाएं पीरियड अवस्था में हैं तो भी इस आसन को ना करें। ज्यादा वृद्धावस्था में भी यानी 70+ के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप योग करने की स्थिति में हैं, यह आसन आपको लाभ तो देगा लेकिन अगर आपके कमर में दर्द है तो आप कहीं किसी दीवार का सहारा लेकर के टेक लगा करके बैठ जाएं, तब आप आसनों को कर सकते हैं। तो ये थे प्रेरणा वाय आसनों का कुछ रूप। हम इसी तरीके से प्रेरणा वाय रूपों को आगे भी बताएंगे यानी कि कल। कुछ ऐसे आसन, कुछ और भी आसन हैं जो कि हैं अभी वाय के रूप में, वो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी हम वाय आसनों के बाद में भी 10 से 15 मिनट ध्यान योग करने वाले हैं। ध्यान योग को करने के लिए आपको मन चित बिल्कुल एकाग्रता से बैठ जाना है। तो आइए दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, एक नए आसन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ध्यान पहले से खूब ज्यादा रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के उन 5 नियमों के बारे में और उन नियमों को हम विस्तार से भी जानेंगे ताकि हमें योग जब हम करते हैं तो योग से ही संबंधित ये 5 नियम भी हम साथ साथ समझते और करते चले। अष्टांग योग के 8 अंगों का में दूसरा अंग नियम है, सबसे पहले इसमें सोच, संतोष, तप आदि जैसे 5 नियम होते हैं। ये नियम महत्वपूर्ण माने गए हैं। अष्टांग योग के नियम स्वयं शुद्धि के लिए होते हैं और जिसके लिए हमें ये दिन प्रतिदिन करना चाहिए, जो हमारी शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि का भी साथ साथ में करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं अष्टांग योग के 5 नियम। उसमें सबसे पहला है शौच। यहाँ शौच का मतलब मन और शरीर की पवित्रता से होता है, यानी सिर्फ शरीर को साफ कर रखना ही शौच नहीं है बल्कि मन से गलत भावना को भी हटाने का दूसरा नाम शौच ही है। अष्टांग योग के शौच के नियम में मन की अंतः शुद्धि, द्वेष आदि का त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए शौच का मतलब यहाँ पे मन और शरीर की पवित्रता से है। दोस्तों, अष्टांग योग का दूसरा नियम है संतोष। इसे समझना मुश्किल नहीं लेकिन निभाना जरूर मुश्किल है। कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसमें संतुष्टना या जो कुछ परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना ही संतोष है और यह अष्टांग योग का दूसरा नियम है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का तीसरा नियम जो है तप। तप या तपस्या का अर्थ होता है मन और शरीर को अनुशासित रखना। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख जैसे द्वंद्वों को सरल करते हुए या सरल करते हुए सहन करते हुए मन व शरीर की साधना भी तप है। चौथा नियम जान लेते हैं दोस्तों जो है स्वाध्याय। स्वाध्याय में केवल वेद वेदांतों का ही ज्ञान अर्जित करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को खुद के बारे में भी चिंतन करना जरूर, स्वयं का अध्ययन करना अवश्य चाहिए क्योंकि
हम खुद में भी सुधार कर सकें। विचारों में शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान स्वाध्याय है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का पांचवा नियम यानी आखिरी नियम, ईश्वर प्रतिधान। पांचवा नियम जान लेते हैं, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था रखना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इस नियम का पालन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मनुष्य का आंतरिक निर्माण, ताकि अपने आप को हम बेहतर तरीके से जान सकें। मन, वाणी और कर्म सेवर की भक्ति के साथ उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन करने जैसे समस्त कर्म ही ईश्वर प्राणिधान है। दोस्तों, आज हमने अष्टांग योग के पांच नियमों के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना, और हमें यह कराते हुए या हमें यह बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जो ये पांच नियम हैं, ये प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज से कुछ परे नहीं है। यह भी हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हमने बताया कि पहला नियम हमारा सोच है, तो सोच को जरूरी नहीं है कि हमारे नित्य प्रतिक्रिया में करने वाला सोच ही के बारे में हम बात कर रही हैं। यहाँ पे सोच का मतलब मन से गलत भावना को निकालना भी सोच है। संतोष यानी हमें जो भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, हमें उसमें संतोष ही करना है। तप यानी तपस्या का अर्थ है हमें अपने आप को अनुशासित रखते हुए हर परिस्थिति में तप के साथ में साधना करनी है। चौथा स्वाध्याय यानी हमें अपने किसी भी पुस्तक यानी वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी अभ्यास हो, विद्याभ्यास, धर्म शास्त्र अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान करना है। पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान। उसके लिए हमको केवल यह जानना है कि हम मनुष्य का आंतरिक निर्माण, अपने आप को बेहतर तरीके से जानना ही है। जब मनुष्य अपने आप को बेहतर तरीके से जान जाएगा, तो वह गलत कामों में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से यह जानकारी हो जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत। तो दोस्तों, आज योग की योग पाठशाला में अष्टांग योग के पांच नियमों को हमने बताया, और ये पांच नियम यदि हम अपनी दैनिक जीवन प्रतिक्रिया में करने लगेंगे और उसे हम अपनाने लगेंगे, तो हम अपने आप को काफी कुछ अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव को देखेंगे। आशा करती हूँ आज का भी आप योग पाठशाला में जो आज का सेक्शन है आपको बेहद अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से आप इसको अपना सकते हैं अपने दैनिक जीवन प्रतिक्रिया में। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं आपकी समता ज्ञानस्थली योग की योग पाठशाला में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज हम अभ्यास करने वाले हैं कपालभाति के बारे में। जैसा कि दोस्तों पहले भी हम लोग अभ्यास कर चुके हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, और आज हम कपालभाति प्राणायाम को अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने मुखमंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में दिन की शुरुआत करते हुए, अपने सुबह की शुरुआत करते हुए, अपने ईष्ट, अपने ईश्वर, अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने भगवान को याद करते हुए यह मन में संचित करें कि आज हमारी सारी प्रकृति हमारे साथ है, और हम उस प्रकृति के साथ बैठ करके योग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। अपने मन

वणक्कम, नमस्कारम, सुप्रभात। दोस्तों, जब पहली किरण धरती को छूती है तो सिर्फ रोशनी नहीं, एक नई उम्मीद भी लाती है। ये उजाला हमें याद दिलाता कि चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। आज की पहली किरण का विषय है वही प्रकाश, रोशनी और उजाला। चलिए आज जानें कैसे हर सभ्यता, हर धर्म और हर युग ने इस रोशनी को ईश्वर की सबसे पवित्र निशानी माना।

प्रकाश सिर्फ दिए की लौ नहीं, वो ज्ञान की वो चमक है जो अंधकार मिटा दे। ईश्वर ने हमें आंखें दी देखने के लिए, पर प्रकाश दिया समझने के लिए। ऋग्वेद में कहा गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से उजाले की ओर ले चल। यह सिर्फ भौतिक रोशनी की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मबोध के प्रकाश की बात है। हमारे ऋषि मुनि दीपक को दीप प्रज्वलन से जोड़ते थे, जो ये दर्शाता है कि हर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान से मिटाए।

प्रकाश ज्ञान, सत्य, दिव्यता और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। ये अज्ञानता और अंधकार को दूर करने वाली शक्ति है और अक्सर ईश्वर या चेतना के रूप में देखी जाती है, जो आंतरिक दृष्टि और दिव्य समझ से पहचानी जाती है। प्रकाश में जीना, इसका अर्थ है आनंद, जागरूकता और एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। दोस्तों, आध्यात्मिक प्रकाश के विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

प्रकाश को विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है, जैसे ज्ञान और सत्य। यानी प्रकाश को सत्य के रूप में देखा जाता है, जो अज्ञानता और झूठ को नष्ट करता है। ये हमें जीवन के सत्य के प्रति जागृत करता है। दूसरा है दिव्यता और ईश्वरीय उपस्थिति। ये ईश्वरीय शक्ति या चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कभी कभी दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ये ईश्वर और आत्मा, इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद बात करेंगे आत्म जागरूकता और मुक्ति की। यहाँ पे प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति में आत्मज्ञान और जागृति आती है। ये आत्मा के पुनरुत्थान और आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। किसे? हमें, हम सभी को, हम सभी जीवों को। फिर बात करेंगे मार्गदर्शन की। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्गदर्शन। कई बार होता है हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता होता है, फिर भी यदि हमें किसी गुरु का सानिध्य ना मिले, उचित मार्गदर्शन ना मिले, तो हम अपने पथ से भटक जाया करते हैं। तो प्रकाश जीवन के पथ को रोशन करने वाली एक आंतरिक शक्ति है, जो हमें गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के द्वारा मिलती है। ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।

अब हम बात करेंगे प्रकाश के उन पहलुओं पर जो कि हैं भौतिक और आध्यात्मिक संबंध और इसके अलावा एक अनुभव के रूप में प्रकाश। जिस प्रकार प्रकाश भौतिक दुनिया को देखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश हमें सूक्ष्म और अदृश्य दुनिया को देखने की क्षमता देता है। ध्यान जैसी आत्मिक क्रियाओं से ये प्रकाश जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसका अर्थ है कि वो दिव्य ज्ञान और सत्य के प्रति जागरूक हो गया है, जिससे उसके चरित्र में स्थायी परिवर्तन आता है। एक ही प्रकाश के विभिन्न व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये प्रकाश ही है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव प्रदान कराता है, जैसे उपचार, मार्गदर्शन या प्रेम। इन सभी में कुछ भी हो सकता है। तो हम चलते हैं उस प्रेम की ओर जो हमारे अंदर का प्रकाश हमें दिखाता है।

चलिए आपको ले चलते हैं, कुछ धर्मों से रूबरू कराते हैं जिनमें प्रकाश का माने क्या है ये हम आपको बताते हैं। बाइबल में लिखा है लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो गया। ईश्वर का पहला सृजन था लाइट यानी प्रकाश। ईसाई परंपरा में लाइट यानी लाइट ऑफ क्राइस्ट वो दिव्य शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस पर जलती हुई मोमबत्तियां इस बात का संकेत है कि अंधकार में भी ईश्वर का प्रकाश सदैव साथ रहता है। कुरान शरीफ में नूर ये शब्द बार बार आता है। अल्लाहु नुरुस्मावाती वल अर्ज यानी अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। यहाँ नूर मतलब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और रहमत का प्रकाश है। इस्लाम सिखाता है कि जो दिल का साफ है उसके चेहरे पर खुदा का नूर झलकता है।

गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपु भव, यानी स्वयं दीपक बनो। बौद्ध धर्म में प्रकाश का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से मुक्ति। जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है तो करुणा, शांति और ज्ञान की रोशनी फैलती है। यहूदी धर्म में हनुक्का पर्व प्रकाश का उत्सव है, 8 दिनों तक दीप जलाने की परंपरा इस बात की याद दिलाता है कि विश्वास का प्रकाश हमेशा भय पर जीत पाता है। जब तेल सिर्फ 1 दिन का था पर वह 8 दिन तक जलता रहा, यही तो चमत्कार है प्रकाश का। यानी जब दीपक में सिर्फ 1 दिन मात्र का तेल बचा था, फिर भी वो विश्वास, प्रेम और आस्था के बल पे पूरे 8 दिन तक जलता रहा। और तभी से ये पर्व जिसका नाम है हनुक्का यहूदी धर्म में बहुत प्रचलित है।

श्रोताओं, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है एक दीपक की यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटा दीपक मंदिर में रखा था। हर रात वो मंदिर को जगमग करता, पर दिन में बुझा दिया जाता। उसे लगता कि शायद उसका कोई महत्व नहीं। दिन के उजाले में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक दिन आंधी आई, सब दीपक बुझ गए, पर उसी ने अपने छोटे से शिखा से पूरे मंदिर को फिर रोशन कर दिया। तब उसे एहसास हुआ, प्रकाश का काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सच्चे इरादे से जलना जरूरी है। और जो सच्चे इरादे से जलता है वो अपने आसपास प्रकाश कर देता है, खुद जलकर, खुद को जलाकर, और जलने के बाद वो खुद भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है।

दोस्तों, आज विज्ञान ने हमें बिजली, लेजर, सोलर एनर्जी दी। ये सब आधुनिक प्रकाश हैं, पर असली रोशनी तो तब होगी जब मानवता, सहानुभूति और प्रेम का उजाला हमारे दिलों में फैलेगा। स्मार्टफोन की स्क्रीन चमक सकती है, पर दिल की रोशनी वही जलाएगा जो दूसरे के दुख में भी मुस्कुराए। हर धर्म, हर युग, हर इंसान का मकसद एक ही रहा, अंधकार मिटाना, चाहे वो बाहर का हो या भीतर का। पहली किरण हमें यही सिखाती है कि हर सुबह एक नई रोशनी है और हम सब उस ईश्वर के अंश हैं जो प्रकाश के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है।

श्रोताओं अब बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल में प्रकाश को क्या माना जाता था? प्राचीन काल में प्रकाश ईश्वर का स्वरूप और ज्ञान का प्रतीक था। प्राचीन भारतीय सभ्यता में प्रकाश को परम सत्य का प्रतीक भी माना गया। वेदों में कहा गया, तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञान, भ्रम और मोह से है, जबकि प्रकाश का अर्थ ज्ञान, आत्मबोध और सत्य की अनुभूति से है। दीपक जलाना केवल कर्म नहीं था, उस वक्त आत्मा के जागरण का प्रतीक था। सूर्य को साक्षी और ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना गया। उपनिषदों में कहा गया, ना ही सूर्य तप्ति तेन तस्य तेजः, अर्थात आत्मा की ज्योति सूर्य से भी महान है। इस प्रकार प्राचीन काल में प्रकाश ब्रह्म यानी सत्य की अभिव्यक्ति करता था।

बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में प्रकाश भक्ति और प्रेम की रोशनी था। मध्यकाल भक्ति आंदोलन का युग था। आप चाहे हिंदी में चले जाएं, इतिहास उठा के देख लें या फिर अंग्रेजी लिटरेचर की बात कर लें, सभी में भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था। कबीर, तुलसी, नानक, मीरा, रूमी आदि संतों ने कहा कि सच्चा प्रकाश हृदय में है, मंदिरों या दियों में नहीं। कबीर कहते हैं, मन के भीतर जो दीप जले वही असली ज्योति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूरज एको रुति अनेक, यानी प्रकाश एक ही है पर रूप अनेक हैं। सूफी मत में नूरे इलाही, यानी ईश्वर का प्रकाश, वे आत्मा में बसते हैं जो सच्चे प्रेम और इबादत से छलकता है। यानी मध्यकाल में प्रकाश का अर्थ है भक्ति, प्रेम और आत्मा की एकता का प्रतीक, जो कहीं ना कहीं आज भी हम अपने मन में टटोलते हुए पाए जाते हैं।

अब बात करेंगे आधुनिक काल में प्रकाश की, जो हमारा आज का युग है। आज के युग में प्रकाश चेतना, मानवता और आत्म जागरूकता की ऊर्जा की बात करता है। आज का युग यानी तकनीक और ज्ञान का युग, पर सच्चा उजाला वही है जो मन और समाज को प्रकाशित करे। आधुनिक आध्यात्म कहता है, आउटर लाइट ब्रिंग्स कंफर्ट बट इनर लाइट ब्रिंग्स क्लैरिटी। यहाँ प्रकाश का अर्थ है सकारात्मक सोच, मानवता का उजाला और आत्म चेतना। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम अपने भीतर की रोशनी को जलाएं, तो बाहरी अंधकार हमें कभी छू भी नहीं सकती। यानी आधुनिक काल में प्रकाश मानवता, आत्म जागरूकता और करुणा का प्रतीक है।

तो श्रोताओं, प्राचीन काल में प्रकाश ज्ञान था, मध्य काल में प्रेम बना और आधुनिक काल में वो मानवता बन गया। युग बदलते गए पर ईश्वर का उजाला कभी नहीं बदला और ये प्रकाश यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ में, पहली किरण के साथ में। अपने मन की पहली किरण को और ऊर्जावान करें, उसमें और आँच भरें और अपने मन को प्रकाशमान करें। मुझे दें इजाजत, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, रब रखा, राधे राधे।

जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

इतने शिद्दत से बुलाओगे तो आ ही जाएंगे। फिलहाल देखते हुए से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल। गुड मॉर्निंग गुंडा, मैं आपकी मॉर्निंग चौकीदार। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर जी अदनान। और देखिए भाई, जिस तरह से आज का मौसम है, सच में राहत की सांस ली है। नहीं तो भैया ऐसा लग रहा था ये छत टपकते टपकते टपक ही ना जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी अगर हल्के हल्के भरता रहेगा मकानों में, स्पेशली वो मकान जो पुराने हैं जिनको रिपेयरिंग की आवश्यकता है, और ऐसे वक्त में वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, राइट। फिलहाल खिली सी धूप है और इस धूप ने वापस से इशारा किया है कि ज़िंदगी एक सुबह ज़रूर लेकर आती है, और शायद वो ये सुबह आज की ही है। एंड आई होप कि भाई आपको ये आज की सुबह काफ़ी ज़्यादा इसी का बेसब्री से इंतज़ार था, और वो सुबह फ़िलहाल आ गई है, राइट। चलिए इस खूबसूरत सी सुबह का वेलकम करते हैं इस खूबसूरत से सॉन्ग के बाद, और वापस से आते हैं और आपको बताते हैं कि आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है, क्योंकि आज का थॉट भी आज की तरह ख़ास है। जैसा कि नई सुबह है तो उसी तरह से कुछ नई बात है जो आज की सुबह में है, वही आज के थॉट ऑफ द डे में भी है। यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसका अर्क समाया हुआ है। अर्क क्या होता है? उसका निचोड़। चलिए इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं, वापस से आते हैं, और आने के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी लगता है भाई ये सुबह हमारे लिए बहुत खूबसूरत है, और ये सुबह एक नई उम्मीदों को अपने संग ले करके आई है। अब जब ले आई है तो इस उम्मीदों पे बैठते हैं और इससे रोशनी से कहीं दूर तक चलते हैं, है ना। सो ये सुबह बहुत खूबसूरत सी है, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे को, और उससे पहले खूबसूरत सा ये सॉन्ग बतौर तोहफा आज की मॉर्निंग की तरफ से आरजे अदनान सेंड कर रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: हां जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आज के इस मंडे मॉर्निंग में, ये सिर्फ मंडे मॉर्निंग नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों की सहर है। जिस तरह, जिस तूफान से हम गुजरे हैं, हमें इस सुबह का इंतज़ार था और फाइनली वो सुबह आ गई है और उसके आज हम साक्षी बन रहे हैं, खुद से इस सुबह को जागते हुए, जीते हुए और इसकी शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। सो चलिए आपको इसी खूबसूरत सुबह के साथ में उम्मीदों भरा एक थॉट, जो कि एट द एंड तक आपके साथ रहने वाला, लाइफ की आखिरी सांस तक, जी हाँ, ऐसा थॉट आज है आपके इस मॉर्निंग शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

थॉट तो इतना ज्यादा छोटा होने वाला है कि आप सच में हैरान होने वाले हैं इस थॉट को सुन लेने के बाद, क्योंकि एक लाइन में शुरू होता है और उसी लाइन में खत्म हो जाता है, और एक लाइन हमारे पूरे जीवन को पूरा डिफाइन कर देती है। मैज एक लाइन, वो भी छोटी सी लाइन, बहुत छोटी सी लाइन। सो लाइन कुछ यूं है कि मैंने खुद को चुना, बात यहीं खत्म। बस इतनी सी बात है, मैंने खुद को चुना, बात यहीं खत्म। मतलब सारी चीजों को अगर आप देख लें, कितने भी तूफान देख लें, कितनी भी सिचुएशंस देख लें, कितना भी बुरा वक्त देख लें, कितना भी आपके ऊपर लेगेशंस देख लें, कितना भी कुछ भी अपने ऊपर आप देख लिए, जितनी परेशानियां हैं, जितने इल्जामात हैं, जो भी है, टॉर्चर है, कुछ भी है, लाइफ का कुछ भी है, बस एक स्टेटमेंट, एक बात कि मैंने खुद को चुना और बात यहीं खत्म। इससे आगे कुछ और है ही नहीं। कोई सिचुएशन ऐसी आई, मैंने खुद को चुना। कोई प्रॉब्लम ऐसी आई, मैंने खुद को चुना। किसी ने टॉर्चर किया तो भी मैंने खुद को चुना। वक्त ने कहीं पीछे कर दिया तो भी मैंने खुद को चुना। किसी ने इल्जाम लगाया तो भी मैंने खुद को चुना। किसी ने आपको बुरा कहा तो भी मैंने खुद को चुना। मुझे खुद बुरा हुआ तो भी मैंने खुद को चुना। मेरे एहसास में मैं कहीं पीछे रह गया तो भी मैंने खुद को चुना। खुद को चुन लेना सारी चीजों से आगे आपको ले जाता है। आगे कोई रैंक नहीं होती है कि रैंकिंग सिस्टम में हम आगे जाते हों, बस अपनी लाइफ में अपने लिए सबसे आगे पहुंच जाते हैं। वही एट द एंड कि यूनिवर्स में अगर एक जर्रे से हमारी शुरुआत हुई थी तो आखिर कहीं ना कहीं हम खुद के लिए तो हैं, है ना। और ये बात, आज का ये एक छोटी सी लाइन, छोटा सा स्टेटमेंट इतनी बड़ी बात कहता है, इतनी सारी चीज़ों से आपको उबार देता है, इतनी सारी चीज़ों के आपको पार ले आता है कि हैरानी होती है। हैरानी होती है कि ये छोटी सी लाइन्स में जो कहा गया है, ये हमारे उस जर्रे से इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में आने से, शुरू होने से लेकर के आखिर तक, राख हो जाने तक का एक पूरा सफर है सिर्फ एक स्टेटमेंट में। इस दौरान जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, पाते हैं, मिलता है, जो कुछ भी है, सब में बस एक बात कि मैंने खुद को चुना। सो अगर आपकी लाइफ की स्टोरी भी किसी नॉवल जैसी होती जा रही है या किसी फिल्मी स्टोरी जैसी होती जा रही है, अक्सर हो ही जाती है, तो भी आपको खुद को चुनना है। वो कैरेक्टर आप खुद हैं। एंड यस, इतनी सी बात है कि भाई आपने खुद को चुन लिया है, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है, है ना। यानी अगर आप सब कुछ फील करें, आप बहुत सारी चीजों से घिरे रहें, फंसे रहें, और बस ये बात समझ में आ ही जाए, शायद एक पल के लिए आए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, उससे भी बहुत कम वक्त के लिए, तो इतना सुकून मिल जाएगा आपको। आप कहेंगे सच में, मतलब इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी। हम वैसे तो बोल देते हैं दिस इज वेरी ट्रू, ये बहुत सच है, लेकिन इस बात को एक लम्हे के लिए भी फील करना, मुझे लगता है जिंदगी दे देगा उस लम्हे में आपको। सो बस कोई भी स्टोरी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, कोई भी ट्रैप हो, कुछ भी हो, आप खुद को चुनते हैं और यही बात खत्म हो जाती है। उससे बड़ी ना कोई बात रह जाती है, ना कोई कंपैरिजन रह जाता है, ना कोई नॉर्म्स रह जाता है, ना कोई लॉ लागू हो पाता है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन रह जाता है आपकी इस सोच का, कुछ भी नहीं। बस आप खुद को चुन लेते हैं और बात यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद जो कुछ होता है फिर वो आपका होता है। अब आप देखिए कैसे आपको अपने लिए सारी चीज़ें करना है। मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लगा था, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये थॉट जो है अंत तक आपके साथ में रहने वाला है। और देखिए ना, इस थॉट को सुन लेने के बाद आपको एहसास हो रहा होगा कि सच में ये अंत तक हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि आप अंत तक अगर खुद को चुनते रहेंगे
तो ये एकदम आखिर तक आपके साथ रहेगा। और अगर किसी के लिए आप एक स्टोरी बन जाएंगे तो वो भी चमकती हुई आंखों से आपको सोचेगा। बातों में तो हर कोई सोच लेता है, किसी को बोल देता है, कोट कर देता है, लेकिन अगर कोई चमकती हुई आंखों से किसी का जिक्र करे तो समझ लीजिए कि आपने सच में खुद को चुना था। बात यहीं खत्म और बात यहीं से शुरू, मतलब ये आखिर भी है और यहीं से एक यात्रा, एक सफर जो है जिंदगी का शुरू भी होता है जब आप खुद को चुन लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसी फीलिंग जहाँ पे आरंभ भी होता है और जहाँ आखिर भी होता है। सो यही वो स्टेटमेंट है, यही वो बात है, यही वो अल्फाज है जहाँ से शुरुआत है और जहाँ पे अंत है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए भाई, अब आपको इसी शुरुआत के साथ एक ऐसे नगमे की तरफ ले चलते हैं जो इस शुरुआत को अपने आप में डिफाइन करता है।

0: तो भैया इतनी जबरदस्त फीलिंग को लेकर के अब इस वक्त हम आगे आ चुके हैं अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, और मुझे लगता है ना कि ये फीलिंग, ये आग जो है हमेशा बरकरार रहनी चाहिए अपनी लाइफ को लेकर के। सो चलिए भाई, आपने आज के मॉर्निंग थॉट को सुन ही लिया है, और साथ ही साथ आप सुनते हैं 89.6 FM को फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। इसी एप्लीकेशन पर आप जो मैसेजेस भेजते हैं वो गोंडा FM के आरजेस तक लाइव आता है। सो आज के शो को लेकर के जो विशेष आए हैं या आपके थॉट ऑफ द डे के ऊपर जो रिएक्शन आए हैं, चलिए वो हम पढ़ करके आप सभी लोगों तक पहुंचा देते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सुना जा रहा है 89.6 FM, आप सब तक ये पहुंचने वाला है। सो क्या कुछ लिख भेजा है, ये सब कुछ आप तक आ रहा है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो सबसे पहले आशु जी का लखनऊ से मैसेज आया है। सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। सुबह की रोशनी आपके साथ हो, हर दिन खुशियों की बरसात हो, हर पल आपके जीवन में सफलता की बात हो, जो भी सपने आपने देखे हैं वो हर सपना आपके साथ हो, आपका हर दिन मंगलमय हो और जीवन हमेशा खुशहाल हो। क्या बात है, इतनी प्यारी दुआओं के साथ भाई जब कोई पैसेज पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सुबह की शुरुआत तो कसम से बहुत बेहतरीन हो गई है। थैंक यू सो मच टू यू आपकी दो कप चाय के लिए, क्योंकि आज जो मैंने अपने घर पे चाय पी वो थोड़ी सी ज़्यादा ही ठंडी हो चुकी थी। इसके बाद जो है अरविंद जी लिखते हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, स्वागत है अरविंद जी मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपका। रेखा कुशवाहा जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड डे, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आपको भी, और आपका दिन भी बहुत ज़्यादा गुड गुड ग्रेट ग्रेट और ग्रेटेस्ट वाला हो जाए। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, और साथ ही साथ आपके ये जो सनफ्लावर्स हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद सविता जी लिखती हैं, सुविचार बहुत प्यारी बात कही, एक जीवन सर, है ना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने इस थॉट को फील किया और आपको ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर हिट की हुई है, थैंक यू सो मच रियो। आशु जी लिखती हैं, जिंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुश रहने वाले लोग ही हर मुश्किल का आसान हल ढूंढ लेते हैं, मुस्कान चेहरे पर नहीं सोच में होनी चाहिए, सुपर से भी ऊपर आज का थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच टू यू। साथ ही आप लिखती हैं कि अपनी नज़र में सही रहो, ईमानदारी से

तो इस खूबसूरत सी बातों के बाद में फिलहाल अब हम आ गए हैं आपसे बातचीत करते करते, और आज भी काफ़ी कुछ लेकर के आए हैं। आज भी आपकी सिटी अपडेट्स पहुंचेगी ज़रूर आप तक। और देखिए इसी के साथ में हमारी गीता श्रीवास्तव जी की भी एंट्री हो गई है। आपने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और ये 9:01 हो चुके हैं एंड 89.6 FM का मॉर्निंग शो आप सुन रहे हैं लाइव। गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान। और अब वापस से आने वाले हैं और आने के बाद इतनी सारी बातों का पिटारा हम खोलने वाले हैं। अब इस खूबसूरत से सॉन्ग को और सुनिए, वापस से आएंगे और आने के बाद कुछ नया आपको मिलने वाला है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में एज ऑलवेज।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भैया जिस वादे के साथ कहे थे कि आने के बाद आपको बताने वाले हैं आज की सारी अपडेट्स के बारे में, यानी गोंडा में क्या कुछ चल रहा है आफ्टर तूफान, तो चलिए आपको ले चलते हैं इसी रफ्तार से और बताते हैं कि शहर का फिलहाल हाल क्या है और क्या क्या अपडेट्स है वो अपने गोंडा शहर से आ रही है।
2: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई है चूँकि इस आंधी पानी में, तो ज़्यादातर अपडेट्स इसी से जुड़ी हुई है। और कई जगह जो है शहर के डीएम आवास में भी पेड़ गिरने से दीवार टूट गई है, कृषि विभाग परिसर में भी छत पर जो है वो पेड़ गिर गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3,675 खंभे और 102 ट्रांसफार्मर जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। और जानकी नगर में भी पानी में गिरा है बिजली के तार, इटिया थोक इलाके में भी सड़क पर पोल पड़ा हुआ है। सो ऐसे कई जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस तूफान की वजह से। और दूसरी जो अपडेट है वो चंदवतपुर घाट से है, जहाँ पर फ़िलहाल हेवी व्हीकल्स को अभी जाने पर रोक लगा दी गई है। सो चूँकि 4 दिन से बारिश में टीढ़ी नदी उफान पर है और गोंडा कटरा रास्ते में मौजूद चंदवतपुर घाट पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, ऐसे में पुल से जो भारी वाहन है उनका आवागमन रोक दिया गया है। और इस रास्ते से कटरा बाज़ार होते हुए बहराइच और करनैलगंज जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल डीएम ने बताया है कि स्थिति को देखते हुए पुल से भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से भी ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। सो बारिश और तेज हवा की वजह से गोंडा नेपालगंज रेलखंड पर ट्रेन का संचालन जो है वो प्रभावित हो गया है। सो कल से पहले यानी सैटरडे को बहराइच से गंगाधाम के बीच 7 जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गए और जो पैसेंजर्स हैं की सुरक्षा को देखते हुए इस रेलखंड की सभी ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। इससे गोंडा, बनगाई, प्रयागपुर, चिलवरिया, बहराइच, नानपारा और नेपालगंज आने वाले पैसेंजर्स को परेशानी जो है उनकी बढ़ गई। सो पूर्वोत्तर रेलवे के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं सुमित कुमार ने कल बताया है कि परिचालनिक वजहों से 28 सितंबर को नेपालगंज रोड से चलने वाली 1/42/14 नेपालगंज रोड वाराणसी जंक्शन एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। और स्टेशन अधीक्षक राय सिंह मीना ने बताया कि गोंडा, बहराइच और नेपालगंज रेलखंड की सभी ट्रेनों का संचालन फिलहाल बंद है। ट्रैक से पेड़ हटाने का काम चल रहा है, देर रात तक रेल जो है ट्रैक दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिसुही नदी के पुल पर 3 फुट जो है पानी ऊपर पहुंच चुका है। सो बिसुही नदी में उफान से पुल के 2 से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसे मंगलनगर, वीरभूजपुर समेत बहराइच के कई गाँव का जो आवागमन है वो प्रभावित है। सो पुल के दोनों तरफ रेलिंग जो है सालों से टूटी हुई है, जो कि हादसे का ख़तरा बना हुआ है। और फिलहाल बताया कि पुल का निर्माण साल 1992 में हुआ था, 34 साल बाद इसकी मरम्मत नहीं हुई। पररी सविता मार्ग पर बिसुही नदी के पुल से करीब 3 फीट ऊपर तक पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासन को पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा आपको हम बता दें अगली अपडेट जो है सरयू नदी पर है और सरयू जो है लाल निशान के पार पहुंच चुकी है। भिखारीपुर सकरौर में कटान तेज़ हो चुकी है। यस बिल्कुल। सो सरयू का जो जलस्तर है तेज़ी से बढ़ने से माझा का जो एरिया है एक बार फिर से बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ गया है। सो कल अगर हम संडे की बात करें तो 12 बजे एल्गिन ब्रिज पर जो वाटर लेवल था वो 106.260 मीटर पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 106.070 मीटर से 19 सेंटीमीटर ऊपर है। तो करीब 36 घंटे में जल स्तर 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ा है। इसी बीच में भिखारीपुर सकरौर तटबंध के किलोमीटर 14 की कटान शुरू हो गई है और हालांकि प्रशासन ने निरोधात्मक कार्रवाई करके कटान रोकने का दावा तो किया है। और उधर नवाबगंज का जो माझा एरिया है वहाँ पे कई मजरों के किनारे तक पानी पहुँच चुका है, कुछ जगहों पे नाव से भी आवागमन अब शुरू हो गया है। सो फिलहाल ये अपडेट्स जो थी ये कहीं ना कहीं आंधी बारिश पानी को लेकर के थी। और आपको बता दें कि आज भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजेस। जी हाँ। सो लगातार बारिश की वजह से जो आवागमन है, बिजली की समस्या है, इसको देखते हुए ज़िला प्रशासन ने मंडे को यानी आज भी ज़िले के नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्कूल्स कॉलेजेस बंद रखने का आदेश दिया है। सो डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि बीएसए और डीआईओएस को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डीआईओएस ने बताया कि सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को आदेश का पालन करने को कहा गया है, आज स्कूल्स में पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। जी हाँ। सो इसके अलावा अब आपको लेके चलते हैं
अगली अपडेट्स की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है ऑफ कोर्स इसी से जुड़ी हुई लगातार आ रही है। सो 17 पंप बंद है, 15 वार्ड्स में पानी का जो है वो संकट साफ नज़र आ रहा है। सो लगातार बारिश के बीच में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से नगर में जो पेयजल का संकट है वो गहरा गया है। और कल डीएम प्रियंका निरंजन की नाराज़गी के बाद नगर पालिका प्रशासन ने जनरेटर चला करके 8 पंप शुरू कराए, हालांकि 17 पंप अभी भी नहीं चल सके। इससे कई मोहल्लों के लोगों के लिए फिलहाल परेशानी बनी हुई है। जो नगर के 27 वार्डों में सुभाष नगर, राजा मोहल्ला, मेवातियान, जिगरगंज, रकाबगंज, राधाकुंड, इमामबाड़ा और शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में पानी की आपूर्ति अभी भी प्रभावित है। लोगों का कहना है कि बिजली नहीं होने से ओवरहेड टंकियों से भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कई लोग पानी खरीद कर काम चला रहे हैं। इसके अलावा बिजली आपूर्ति ठप होने से सीएनजी भी नहीं मिल पाई है। जी हाँ, सो दूर दराज के इलाकों से पंप पर आकर के घंटों कतार में खड़े रहे वाहन चालक, लेकिन बिजली नहीं आई जिसकी वजह से लौटना पड़ा यूं ही बेरंग। सो ये फिलहाल प्रॉब्लम है। और जहाँ जहाँ मोबाइल चार्जिंग को लेकर के परेशानी, वहाँ जनरेटर लगाकर दुकानों पर लोग चार्ज करते साफ साफ नज़र आए अपने फ़ोन्स, यानी कई कई फ़ोन्स जो है एक साथ लगे हुए दिखाई भी दिए हैं। एंड इसके अलावा आप चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है कराटे के 15 खिलाड़ियों को येलो बेल्ट मिली हुई है। सो मास्टर ऑफ ताओ एसोसिएशन की तरफ से कल संडे को कस्बे के एक दिवसीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें एरिया के जो छोटे बच्चे हैं उनके कराटो की रक्षात्मक और आक्रामक टेक्निक्स का प्रदर्शन किया गया। बेहतर परफॉर्म करने वाले 15 खिलाड़ियों को येलो बेल्ट भी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें विश्व रेबीज दिवस है चुकी, और अगस्त में 6,806 लोगों को जानवरों ने काटा है या फिर खरोचा है। सो शहर की गलियों से गांव की पगडंडियों तक आवारा कुत्तों से लोग जो है फिलहाल परेशान भी नजर आए हैं। कुत्तों का खौफ भी है और स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, राहगीरों के सामने हर दिन काटने और खरोचने का खतरा भी जो है वो बना रहता है। सो विश्व रेबीज दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीरता बयां भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है फिलहाल शहीद आज़म भगत सिंह की जयंती पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। सो शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की जयंती पर एक कैंप कल यानी रविवार को मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 5 यूनिट रक्तदान भी किया गया है। इसके अलावा अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पुलिसकर्मियों को सिखाई गई है जो सांकेतिक भाषा, उससे जुड़ी हुई। जी हाँ, सो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर कल यानी संडे में पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो आयोजित की गई, और इसमें पुलिसकर्मियों को मूक बधिरों से संवाद में आसानी होगी ऐसा बताया गया है। एंड आपको आज के होने वाले इवेंट्स के बारे में बता दें, परसपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में जो शिक्षक हैं उनका FLN का प्रशिक्षण आज हो रहा है सुबह 9 बजे से। टीकाकरण शिविर सुबह 10 बजे से करनैलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किशोरियों को टीकाकरण शिविर के लिए बुलाया गया है। जागरूकता कार्यक्रम भी सुबह 11 बजे से हो रहा है। माल्यार्पण शहीद आज़म सरदार भगत सिंह कॉलेज में भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण आज सुबह 11 बजे किया जाएगा। इसके अलावा दोपहर 2 बजे भगत सिंह की जयंती पर प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया जाना है। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें अगली जो अपडेट आ रही है वो भुज बरौनी अमृत भारत की आ रही है। सो देवी पाटन मंडल के लोगों को रेल मंत्रालय की तरफ से ये सौगात दी है। भुज बरौनी भुज अमृत भारत एक्सप्रेस यानी 1/94/27 से 1/94/28 को वाया गोंडा चलाने की मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को पत्र भेज करके इसकी जानकारी दी है। सांसद ने संडे को अपने फेसबुक पेज पर रेल मंत्री का पत्र जो है वो साझा भी किया है। रेल मंत्री ने पत्र में बताया कि भुज से बरौनी के बीच नई रेलगाड़ी संख्या 1/94/27 से 1/94/28 भुज बरौनी भुज अमृत भारत एक्सप्रेस को वाया गोंडा परिचालन की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई। इससे गोंडा के रास्ते गुजरात के कक्ष भुज क्षेत्र और बिहार के बरौनी के बीच रेल कॉन्टैक्ट स्थापित होगा। सो ट्रेन के गोंडा होकर चलने से देवी पाटन मंडल के उन तमाम लोगों को फैसिलिटी मिलेगी जो गुजरात और बिहार में ट्रैवल करते हैं, खासकर जो प्रवासी कामगार हैं, व्यापारी हैं, स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए सीधी रेल सुविधा जो है ये उपयोगी होगी। और सांसद ने बताया कि लंबे वक्त से इस रेल की सुविधा की मांग को रेल मंत्रालय के समक्ष उठाते रहे हैं। अब रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद क्षेत्र में नई ट्रेन के संचालन का रास्ता फिलहाल जो है वो साफ हो गया है। एंड साथ ही साथ आपको बता दें

कि फिलहाल महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारकों का कायाकल्प की बात भी सामने आ रही। सो जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र में समाज सुधारकों, महापुरुषों, सामाजिक न्याय के प्रणेताओं और सांस्कृतिक विभूतियों की प्रतिमाओं का स्मारक स्थलों का कायाकल्प कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने 7 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है और एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 करोड़ की धनराशि दी गई है। योजना के तहत जिले के 44 स्थानों पर प्रस्तावों का आगणन जो है वो तैयार किया जाएगा। सो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि आप तक हमने पहुंचा दी है। आई होप कि भाई काफ़ी ज़्यादा आपके काम की भी रही होगी जो आप तक ये अपडेट्स पहुंच गई है आपके अपने शहर गोंडा की। सो चलिए फ़िलहाल वक्त है आपको ले चलने का अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। जी हाँ, और उसके बाद से वापस आने वाले हैं और वापस आ करके आपको कुछ नई बातों से हम रूबरू कराने वाले हैं आपके इसी मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक कदम आगे चलने का और कुछ खूबसूरत से नगमों को सुन लेने का, और जब वापस से आएंगे तो बातों में कुछ नयापन भी ज़रूर होने वाला है ना। सो यस ऑफ कोर्स, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी अपडेट्स हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा इवन मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप कहने वाले हैं कि वाह भाई ये सब तो चीज़ें एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है ना। सो जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड करती हैं हमको और काफ़ी हमको अच्छा भी फील कराती हैं। फिलहाल चलिए इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाने वाले हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो भाई चलिए एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आप ही के मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके मॉर्निंग जो का आरजे अदनान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफकोर्स जानकारी है जो कि आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मिठाई की यूज़ बाय डेट दिखाना ज़रूरी कर दिया गया है। जी हाँ, सो यूपी में अब मिठाई की यूज़ बाय डेट दिखाना होगा। चूँकि उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों पर यह नियम अब लागू होगा। सो फिलहाल खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने ये डिसीजन लिया है। सो यूज़ बाय जो डेट है वो अब यूपी में दिखाना ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ये जो मिठाइयों वाला मामला होता है, खुली मिठाइयाँ होती है, और ये ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम उस यूज़ बाय डेट को जाने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना, और इसी से बहुत सारी फूड पॉइजनिंग और न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ जाता है। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसको लेकर के फ़िलहाल 15 अक्टूबर से ये नया नियम लागू होगा। जो मिठाइयाँ होंगी उनकी यूज़ बाय डेट जो है वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ये मामला आ चुका है जिसमें सेफ्टी से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाई गई है जो बिल्कुल भी इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है।

सो फिलहाल उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले कंज्यूमर्स के जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने ये व्यवस्था लागू की है। सो 15 अक्टूबर से बेचने के लिए या दिखाने के लिए या जो ऑफ कोर्स भंडारण के लिए मिठाइयाँ उस पर यूज़ बाय डेट यानी उसके इस्तेमाल करने की लास्ट डेट जो है वो दिखाना ज़रूरी होगा। सो ये जो सिस्टम है ये खाली मिठाइयों से लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। सो जिनके संबंध में अब तक इस्तेमाल की आखिरी तारीख दिखाने का कोई ज़रूरी प्राविधान अभी तक तो नहीं था, लेकिन खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की जो आयुक्त हैं रोशन जैकब, इनके जारी आदेश के हिसाब से अलग अलग मिठाइयों का इस्तेमाल एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकता है। विभाग का मानना है कि मिठाई की यूज़ बाय डेट स्पष्ट रूप से दिखाया जाना ज़रूरी होता है सो कंज्यूमर्स को ये जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित जो खाद्य पदार्थ है इसका इस्तेमाल किस ड्यूरेशन तक किया जाना सही रहेगा। इससे क्या होगा, खाद्य पदार्थ की जो ताजगी है उसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर के कंज्यूमर्स ज़्यादा अवेयर होकर के अपने डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि फ़िलहाल का जो सिस्टम है उसके तहत पैक्ड मिठाइयों पर फ़िलहाल को यूज़ बाई डेट किया जाना अब ज़रूरी कर दिया गया है। हालांकि खुली मिठाइयों के संबंध में इस प्रकार की जानकारी दिखाने का कोई अभी बहुत क्लियर प्राविधान नहीं बताया गया जो खुले में रखी होती है। सो उत्तर प्रदेश के दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों की प्रसंस्करण इकाइयों की एथिलीन ग्लाइकोल और डाइएथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। चूँकि निरीक्षण में पता चला है कि कुछ दुग्ध प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में पाश्चुरीकरण और प्रशीतन ये सारे प्रोसेसेस से एथिलीन ग्लाइकोल और डाइएथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में किया जाता है और ये रसायन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सो प्रसंस्करण के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें लीकेज होने पर दूध में मिल जाने की आशंका को देखते हुए इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है और इसकी जगह पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल कई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट्स द्वारा पहले ही किया जा रहा है। सो ये ख़ास ज़रूरी जानकारी थी जो कि आप तक पहुंचानी थी। आई होप कि भाई ये जानकारी सच में आपके लिए कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी है कि कितना ज़्यादा मिलावट के ख़िलाफ़ हमको अवेयर होना पड़ेगा और हर चीज़ हम किसी भी दुकान से किसी भी जगह से ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह की बीमारियां अब लगातार बढ़ती जा रही है, अब तो एज वैसी होती भी नहीं है। यही कहा जाता है कि भाई इस एज में ऐसी बीमारी तो पहली बार सुन रहा है, तो अब ये सब जो कभी नहीं होता था वो हो रहा है क्योंकि हम इतना ज़्यादा मिलावटी खाने लग गए हैं। सो स्पेशली अगर आप किसी मिठाई की शॉप पर जाते हैं और वो पैक की गई मिठाई है तो उस पर यूज़ बाय डेट जो है वो लिखी रहेगी कि कब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कब तक आप खा सकते हैं, कब तक इसकी क्वालिटी बरकरार रहने वाली, कितने दिन का है। उसके बाद अगर एक्सपायरी डेट का आप मान लीजिए आप लेते हैं उसके बाद का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब ये फ़िलहाल उस क्वालिटी में नहीं रही होगी क्योंकि इसकी जो डेट थी वो बता दी गई थी, उससे ज़्यादा हो रहा है। सो आई होप कि भाई ये जानकारी आपके लिए भी काफ़ी राहत भरी है। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं और अवेयर होने की भी ज़रूरत है कि अगर ऐसे किसी जगह से हम लेते हैं तो एक्सपायरी डेट देख लें, लेकिन हाँ खुली मिठाइयों के संबंध में फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। शायद जल्द ही कोई इस पर भी ज़रूर निर्देश दिया जाए।

0: पापा पापा मुझे ना एक बाजा दिला दो।
1: नहीं तुम बहुत शैतान हो, अगर बाजा दिला देंगे तो तुम सबको तंग करोगी, मुझे पता है।
0: नहीं करेंगे पापा, लॉमी जब छमना छो जाएंगे तब बजाऊंगी।

सो क्या आपको भारत एबिस के बारे में पता है, जिससे फिलहाल फर्जी आधार कार्ड जो है वो अब नहीं बन सकेंगे? अच्छा, आपको नहीं पता है? सो फिलहाल आपको हम ये बता दें कि एक ऐसा सिस्टम जो है वो लाया गया है जिससे कि आधार कार्ड का जो डुप्लीकेट, जिसकी परेशानी होती थी ऑफकोर्स सभी लोगों को, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मसला बन जाता था, सो उससे बचने का ये फिलहाल एक तरीका है। सो भारत एबिस एक्चुअल में क्या है, और भारत एबिस से क्या फर्जी आधार कार्ड्स का खेल अब सच में ख़त्म होने वाला है, ये तो खैर आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारत एबिस है क्या और किस तरह से ये काम करने वाला है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। सो फिलहाल बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस

0: मुझे इस कदर बे इंतहा, फिलहाल वापस से आए हैं आपको उस खबर की जानकारी देने बे इंतहा कि भाई आप भी अपडेटेड हो जाइए क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। भारत इबिक्स के अनुसार आखिर कैसे ये फर्जी आधार कार्ड बनाने से रोकेगा।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि फिलहाल क्या है भारत एबिस, ताकि आप समझ जाइए। तो डुप्लीकेट आधार की पहचान में नई टेक्नोलॉजी है। UIDAI ने भारत एबिस नाम की एक ओपन सोर्स बायोमेट्रिक सिस्टम तैयार किया है। एबिस यानी ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये फिंगरप्रिंट आँखों की पुतली और चेहरे का डेटा को मिलाकर किसी इंसान की पहचान और डुप्लीकेसी की जाँच कर सकता है। सो तीन बायोमेट्रिक डेटा का एक साथ इस्तेमाल होगा। इसमें ये सिस्टम फिंगरप्रिंट, आयरिस और चेहरे के डेटा को मिलाकर तकरीबन 13.5 किलोबाइट का डिजिटल टेम्पलेट तैयार कर सकता है। इस टेम्पलेट को पुराने रिकॉर्ड से मिलाकर पता लगाया जा सकता है किसी इंसान की पहचान पहले से सिस्टम में मौजूद है या नहीं। फिलहाल करोड़ों रिकॉर्ड्स को संभालने की क्षमता है। सो सिस्टम पर लोड का स्मार्ट मैनेजमेंट है। भारत एबिस में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो काम का लोड कई सर्वर्स में बांट सकता है। इससे करोड़ों रिकॉर्ड्स की एक साथ जांच के दौरान सिस्टम पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। होगा क्या, फिंगरप्रिंट, आयरिस और चेहरे के एक साथ मिलाने से पहचान का जो प्रोसेस है और मजबूत बनाने की कोशिश फिलहाल की गई है। अब बात आती है कि भाई इतना सब कुछ तामझाम किया गया है तो ये कितना सटीक है और कितना फास्ट तेज है, राइट? सो 2 करोड़ रिकॉर्ड्स पर हुई है टेस्टिंग। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 करोड़ रिकॉर्ड्स पर टेस्टिंग में सही आईडी को डुप्लीकेट बताने की जो दर है वो 0.1% रही है। वहीं डुप्लीकेट पहचानने में चूक की जो दर है वो 0.05% रही है। सो रफ्तार की बात करें तो 8 NVIDIA H100 GPU और 2 TB रैम वाला एक सर्वर 4 करोड़ रिकॉर्ड्स में से 100 सर्च करीब 1 सेकंड में कर सकता है। सो इससे फ़ायदा किसे मिलेगा, बात तो ये आती है कि चलिए ठीक है भाई, स्पीड है और काफ़ी ऑथेंटिक सा लगता है। सो बुज़ुर्गों और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट कई बार घिस जाते हैं और इसी वजह से राशन या पेंशन जैसी फैसिलिटी में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की प्रॉब्लम आती है। सो भारत एबिस में कई तरह के बायोमेट्रिक डेटा का यूज़ कर इस प्रॉब्लम को कम करने में मदद कर सकता है। जैसे 160 छोटे देशों को मिल सकता है इसका फ़ायदा। सो भारत एबिस एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ऐसे करीब 160 छोटे देश हैं जो महंगे बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं खरीद सकते, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पूरे भारत में इसे लागू करने से पहले आगे और बड़े लेवल पर टेस्टिंग की अभी ज़रूरत की बात सामने आ रही है। सो डुप्लीकेट पहचान से लेकर के आसान वेरिफिकेशन तक, जी हाँ। सो भारत एबिस का जो एम है वो बड़े लेवल से बायोमेट्रिक पहचान और डुप्लीकेसी की जांच को तेज़ और मजबूत बनाना है। फिंगरप्रिंट के साथ आयरिस और चेहरे के डेटा का इस्तेमाल जो है वो पहचान के प्रोसेस को ज़्यादा व्यापक बना सकता है। यस, ये बदलाव की बात बताई गई है, ये बदलाव की उम्मीद की जा रही है। आई होप कि भाई आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये उन लोगों के लिए जिनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिट जाते हैं तो उनको राशन या पेंशन जैसी जो ज़रूरी सेवाएं हैं जिसको वो ले रहे हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए आयरिस होता आँखों का होगा, चेहरे का डेटा होगा, बाकी फिंगरप्रिंट तो रहती रहती है, तो कहीं ना कहीं मैच करेगा और ज़्यादा क्लियर बताएगा और भी ज़्यादा जो है वो वेरीफाइड होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब वेरीफिकेशन में होंगी तो उम्मीद बहुत कम होगी कि कोई इस तरह से डुप्लीकेसी वहाँ पे क्रिएट हो पाए। सो आई होप कि भाई ये जानकारी भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की है और आप भी इस चीज़ को सुनने के बाद कह रहे हैं ठीक है, आने देते हैं और देखते हैं भाई आपके फ़ायदेमंद के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। फिलहाल सॉन्ग एंजॉय करिए, इसमें कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप तक आ रहा है ये बेहतरीन लाजवाब सा सॉन्ग।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। ऑफ कोर्स हम सभी लोग जानते हैं भगत सिंह के बारे में, बहुत सारी बातें भी करते हैं। इवन आज 28 तारीख है, 28 सितंबर, और आज ही के दिन जन्म हुआ था भगत सिंह साहब का। द रियल हीरो, द रियल फ्रीडम फाइटर हर कोई है, उसमें से एक नाम है भगत सिंह का। और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो आप बता ले जाएंगे। फिलहाल आप अगर बता सकते हैं तो ये ज़रूर बताइए कि भगत सिंह की ऐसी कौन सी आखिरी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी। जी हाँ, सो आपको सोचना है, बताना है। शायद आपने कभी अपने बाबा से कोई किस्सा सुना होगा, पिताजी से सुना होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, किसी वेबसाइट पे देखा होगा, किसी न्यूज़ में जिक्र हुआ होगा, या करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के दौरान आपको पता चला हो। क्या आपको पता है कि आखिरी एक ख्वाहिश थी भगत सिंह साहब की जो कि पूरी नहीं हो सकी थी। हालांकि आज तक हम यही फिल्मों में भी देखते आए और सुनते आए कि हाँ भाई, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है जब किसी को फांसी होने वाली होती है, तो पूछा जाता है कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है और उसको पूरा भी किया जाता है। बट क्या आपको बताया कि भगत सिंह साहब की आखिरी ख्वाहिश क्या थी और वो क्यों नहीं पूरी हुई? इसके पीछे का क्या रीज़न आपको पता है? शायद नहीं। चलिए हम आपको वापस से आकर के बताने वाले हैं कि आखिर भगत सिंह साहब की कौन सी ऐसी आखिरी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी और कहीं ना कहीं वो आज भी एक कसक उन चाहने वालों के दिल में है कि जो ख्वाहिश की थी भगत सिंह साहब ने अपने लिए, बहुत छोटी सी थी। शायद आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी भी क्या कोई ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि सोचने में लगता है कि एक इंसान, एक शख्स जो ख़ुद को कुर्बान कर रहा हो देश के लिए, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी। बहुत अलग अलग बार हमने सुना है, अलग अलग लोगों की कहानियों को सुना है कि भाई इस तरह से उन्होंने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की, उनकी ख्वाहिश को पूरा किया गया, किसी को नहीं किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि भगत सिंह साहब की आखिर कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जो फ़िलहाल पूरी नहीं हो सकी और वो आखिरी ख्वाहिश कहा जाता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और चलिए इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार हम वापस से आएंगे, आने के बाद जो है आपको बताने वाले कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई भगत सिंह साहब की और वो चाहते तो थे कि पूरा हो जाए लेकिन हुई नहीं, है ना। सो क्या था वो आपको हम बताते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, और आज है 28 सितंबर, यानी कि भगत सिंह साहब की आज जो है वो जयंती है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था।

सो मैंने कहा था भाई ऐसी क्या थी आखिरी इच्छा जो भगत सिंह साहब की पूरी नहीं हुई थी और उसको आखिरी इच्छा कहा गया, और साथ ही साथ वो इच्छा आप जानेंगे तो आप सच में हैरान हो जाएंगे। मतलब सच में कि कोई शख्स कितना ज़्यादा इंसानियत से लबरेज़ हो सकता है, कोई कितना ज़्यादा बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल हो सकता है, जितना सोचिए उतना कम है। सो फिलहाल बात ये आज की नहीं, 22 मार्च 1931 की है, जब एक खामोश सी रात में लाहौर की केंद्रीय जेल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और उसकी धुंधली रोशनी वाली कोठरियों में से एक 23 साल के एक भगत सिंह साहब बैठे थे, जो एक पहले किंवदंती बन चुके थे। सादे कपड़े पहने पालथी मार कर बैठे हुए वो ना तो कोई प्रार्थना कर रहे थे और ना ही कोई दया की भीख मांग रहे थे, इसके बजाय वो लेनिन को पढ़ रहे थे और अपने साथियों जिसमें राजगुरु, सुखदेव और उनसे लेकर के क्रांति पर चर्चा कर रहे थे, और उस शान दृढ़ता के साथ उस सुबह की तैयारी कर रहे थे जो उनकी फांसी लेकर आएगी। भगत सिंह साहब को अच्छी तरह पता था कि उनका इंतज़ार आखिर क्या कर रहा है। अगली सुबह उनकी आखिरी सूर्योदय होगी, लेकिन तब भी उनके मन में कोई डर या विदाई के विचार नहीं थे। वो दर्शन, न्याय और एक असाधारण मौन क्रांतिकारी अनुरोध के बारे में सोच रहे थे। उनके आखिरी खाने में भी एक राजनीतिक काम में बदल देगा। जी हाँ, भगत सिंह रीडर संपादक शहीद भगत सिंह के अग्रणी विद्वानों में से प्रोफेसर चमन लाल के हिसाब से अगर उनकी माने तो भगत सिंह साहब की अंतिम इच्छा उनके जीवन जितनी क्रांतिकारी थी। उन्होंने एक आखिरी भोजन जो है वो बोधा के जरिए पकाए जाने, जो कि जेल में सफाईकर्मी के रूप में काम करने वाला एक दलित कैदी था, ये कोई मनमौजी अनुरोध नहीं था, ये एक बहुत ही साहसिक सोची समझी गई कार्रवाई थी, एक विद्रोह के भीतर एक विद्रोह। एक ऐसे वक्त में जब जाति ही हर चीज़ तय करती थी, यहाँ तक कि कौन पानी भर सकता है, कौन मंदिर में अंदर जा सकता है, भगत सिंह की सरल इच्छा ने भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको झकझोर कर रख दिया। वो शब्दों से नहीं बल्कि एक साथ भोजन करने के जरिए से अस्पृश्यता की धारणा को चुनौती देना चाहते थे, यानी छुआछूत की बात। जैसा कि चमन लाल ने एक बार द ट्रिब्यूनल जो कि मार्च 2021 में एक इंटरव्यू में बताया था कि भगत सिंह साहब का मानना था कि अस्पृश्यता गुलामी के समान ही अपमानजनक थी। दलित के जरिए पकाए गए भोजन की उनकी विनती महज एक प्रतीकात्मक भाव नहीं थी, बल्कि उनका ये आखिरी राजनीतिक बयान था उनके क्रांतिकारी आदर्शों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक एक्सपेंशन था, एक विस्तार था। सो कई लोगों के लिए भगत सिंह वो निडर एक ऐसे यंगस्टर थे, एक युवा थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक क्रांतिकारी के भेष में एक दार्शनिक थे। सच में इसको मान पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी तक जो हमको बताया गया, पढ़ाया गया, हम बस एक क्रांतिकारी युवक के रूप में ही उनको जानते हैं। अगर उनकी जेल की नोटबुक जिसमें उनकी मौत से पहले के बाद भगत सिंह द जेल नोटबुक एंड द अदर राइटिंग्स के रूप में संकलित किया जाए तो उनके मन की एक असाधारण झलक जो है वो सामने आती है। इसके पन्ने मार्क्स, लेनिन, रूसो और विवेकानंद और लाला लाजपत राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के कई सारे एग्जाम्पल्स से भरे हुए हैं। सो भगत सिंह के लिए आज़ादी सिर्फ कोई राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि सामाजिक मुक्ति थी। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो जाति, अंधविश्वास, असमानता और अज्ञानता से आज़ाद हो। अपने निबंध अस्पृश्यता की समस्या में उन्होंने जाति को भारतीय समाज की जड़ों को खोखला कर देने वाली बीमारी बताया था। इसीलिए आखिरी खाना की प्रार्थना महज एक प्रतीकात्मक नहीं थी, यह इस बात का आखिरी सबूत था कि समानता के बिना कोई भी क्रांति है वो सच्ची मुमकिन हो ही नहीं सकती है, है ना? और जो वहां पे देखने वाले थे उनके हिसाब से 23 मार्च 1931 को जैसे ही लाहौर की शाम ढलने लगी, विरोध प्रदर्शनों और अशांति से बचने के लिए फांसी जो है वो डिसाइडेड टाइम से पहले लगभग शाम 7 बजे को अंजाम दिया गया। जब पहरेदार उन्हें बुलाने आए तो भगत सिंह ने कथित तौर पर मुस्कुराते हुए कहा, रुको,
शाम के खाने और लेनिन को पढ़ने का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत ही शांति भाव से अपनी किताब पूरी की और उसे सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया और निडर मुस्कान के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के तख्ते की तरफ चल दिए। सो उनकी ये जो आखिरी खाने की विनती थी पूरी हुई या नहीं ये बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि फांसी की घटना इतनी अचानक हुई कि खाना परोसे जाने तक का वक्त नहीं मिला, लेकिन उस विनती का अर्थ था उस क्षण से कहीं ज़्यादा महान था। ये उसके अडिग सिद्धांतों का एक मौन प्रमाण था। जी हाँ, सो भगत सिंह की जो आखिरी इच्छा थी वो कोई स्वाद या भोग विलास से जुड़ी नहीं थी, ये समानता गरिमा विद्रोह के बारे में थी, शुद्धता और अपवित्रता के प्रति जो जुनून है समाज में उसका ये काम एक क्रांतिकारी था। सो दलित के जरिए पकाए गए भोजन की मांग करके ये घोषणा कर रहा था कि क्रांति की शुरुआत भोजन की मेज पर होनी चाहिए, रोटी तोड़ने में और पदानुक्रम को अस्वीकार करने में और मानवता को एक्सेप्ट करने में होनी चाहिए। वो भारत को बताना चाहते थे कि समानता के बिना स्वतंत्रता एक बहुत ही झूठी बात है और अधूरा सपना है। लगभग एक सदी बाद भी भगत सिंह का ये काम आज भी सच में हैरान कर देने वाला महसूस होता है। सो जातिगत भेदभाव से जूझ रहे देश में उनका ये काम जो है वो किसी प्रेरणा और निंदा दोनों का जो है एक सोर्स बना हुआ है। सो इनकी हिम्मत सिर्फ फांसी के फंदे का सामना करने में नहीं थी, बल्कि सदियों से चले आ रहे जो पूर्वाग्रह थे उसका सामना एक बहुत ही सादे से भोजन जैसी चीज से करने में था। सो उन्होंने सिखाया कि क्रांतियाँ सिर्फ नारों और हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी थाली में परोसी भी जाती है। सो इनकी आखिरी इच्छा जो थी वो महज किसी भोजन के मांगने की नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक इनविटेशन था। और जैसे जैसे अपने फांसी की तरफ बढ़ रहे थे उनका संदेश किसी भी गोली की आवाज से कहीं ज्यादा बुलंद था, और वो था सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत मन से, दिल से और खाने की मेज से होती है। सो मैंने कहा था ना कि आपको शायद हैरान करे, इसके पीछे जो एक सार था भगत सिंह साहब का वो बहुत खूबसूरत था कि हम आज़ादी आखिर किस चीज़ से मांग रहे हैं। राजनीतिक आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, है ना, लेकिन उसके बाद जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? क्या तब भी आज़ाद हिंदुस्तान का हर एक सिंगल बाशिंदा भी आज़ाद महसूस कर पाएगा, या वो किसी जात, किसी समुदाय या गरीब ऊंच नीच कहीं फंसा होगा? क्योंकि दूसरे जुल्म करे तो एक बार को सहन हो जाता है, पर जब अपने ही ये चीज करने लग जाते हैं तो हमको भी बताए कि अगर परिवार में हमारा इस तरह से कोई अपमान होता है तो हमको आखिर कैसा लगता है? क्योंकि हम भाग करके दुनिया से लड़ करके तो घर में आते हैं, एक तकिया लेकर के आंसू छिपा लेते हैं, या घर में किसी का हाथ सिर्फ हमारे सर पर रख दिया जाता है तो हमारी सारी टेंशन चली जाती है, या एक प्यारा सा हक कर लेते हैं अपने फादर को, अपनी मदर को, भाई को, किसी को भी। लेकिन जब घर में ही ऐसी चीज़ें हों तो भाग करके आप दुनिया भर में भी जाते रहिए, सुकून मिल नहीं पाता है। बस ऐसा ही कुछ मानना था भगत सिंह साहब का कि जो क्रांति हो रही है वो अंग्रेज़ों से बचने के लिए नहीं, बल्कि उस सामाजिक बुराई से जो कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में ताज़ा है। जब बात इंसानियत की आएगी तो फिर ऊंच और नीच की तो बात वहां एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, उसका तो कोई स्पेस ही नहीं मिलता है। वही वाली बात, जब आप सही वर्ड कहते हैं कि ये सही है तो उस दौरान वो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, कैसे भी हालात हो और कुछ भी हो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और फैक्चुअल है, अब कोई माने या ना माने। कहते हैं कि सच सच होता है, पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो भी सच पर जरा बराबर भी असर नहीं पड़ता है। बस ऐसे ही कुछ इरादों के साथ में ये काम किया था भगत सिंह साहब ने, जिसका प्रमाण आज भी मिलता है उनकी इसी बात से, और शायद आज भी हम उन चीज़ों को फील कर पाते हैं। वैसे कैसा लगा ये जान करके कि आखिरी इच्छा जो थी वो क्या थी भगत सिंह साहब की, और पूरी क्यों नहीं हुई, और उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि आखिरी इच्छा उन्होंने अपनी ये बनाया ही क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी? आई होप कि आप शायद समझ ही गए होंगे।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं, क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 91.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो यस, कितनी सारी बातें आज हुई आज के मंडे स्पेशल शो में, और आज कुदरत ने भी कहीं ना कहीं आसमान को खोल दिया भाई, कि कुछ जो बादल थे खतरे के, कुछ जो बादल थे परेशान करने वाले, वो छट चुके हैं। और इसी छटी बिखेरा के बाद में हम वापस आए और कहीं ना कहीं इसको मिल करके हम साक्षी बने सुबह के। एंड बहुत अच्छे से आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया, बहुत सारा साथ दिया, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन, क्योंकि आप हमको सुनते हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ जब जुड़ना होता है मैसेजेस पर भी तो आप आ जाते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन पर, क्योंकि वहाँ मिलता है चैट का ऑप्शन और चैट पर जो कुछ लिखते हैं वो हम तक सीधे पहुँच जाता है। सो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्पेशल वाला थैंक्स। सो आज हमने कई सारी चीज़ों को बात किया, कई सारी अपडेट्स आप तक पहुँचाई, और कुछ चीज़ें तो सच में बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। एंड आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर अच्छा लगा होगा। वैसे भी जब कोई बात सोचने की होती है तो उस पर हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, फिर वो चाहे कोई थॉट हो या बातचीत में निकला कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिस पर शायद मैंने ध्यान ना दिया हो लेकिन आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है और ऐसा हो ही जाता है। आई होप कि भाई आज भी ऐसी कुछ चीज़ें आप ज़रूर अपने संग ले जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑफकोर्स अभी तक गुड मॉर्निंग गोंडा एंजॉय किया और अब एंजॉय करने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम्स। साथ ही साथ बाद में मैसेज आया है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी का, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ उन साथियों को जो चैट बॉक्स तक आते हैं और अपनी बातों को हमसे डायरेक्ट कहते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब हमसे यही कहना होगा हमें आपसे कि भाई अब लेते हैं आपसे इजाज़त इस शो से चलने के लिए, क्योंकि वक्त ने इशारा कर दिया है घड़ियों ने। तो चलिए, आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमको ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे हाँ, स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल

0: भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: नाव की गूंज, नाव की गूंज, नाव की गूंज।
5: अरे समता, क्या हुआ, क्यों इतना खांस रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ये थर्मामीटर ये क्यों रखा है? तुम्हें बुखार है क्या? अरे यार कुछ तो बोलो सही।
6: हाँ दीदी, राधे राधे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और खांसी भी आ रही है, लग रहा है थोड़ा बुखार भी है।
7: किरण दी, मैंने समता दीदी को काढ़ा भी पिलाया है और दवा भी दी है, अब शायद उनको आराम हो गया होगा।
8: अरे नन्हे

0: अरे दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे भी छींक आ रही है रात से और गले में दर्द भी है।
1: काढ़ा पियो काढ़ा। किरण दी, आज गांव नहीं चलेंगी क्या?
2: चलूंगी चलूंगी बाबा, पर समता और शिवानी को यहीं छोड़ दूंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो परेशान भी हो जाएंगी।
3: नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी गांव। मैंने दवा भी खा ली है और काढ़ा भी पी लिया है।
4: देखा मेरे बनाए हुए काढ़े का असर? किरण दी, जरा आप इन लोग को बता दीजिए मैंने काढ़े में क्या क्या डाला है।

0: जया ने काढ़े में अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और अमरूद की पत्ती, सहजन की पत्ती, तुलसी की पत्ती, गुड़ और हल्दी, ये सारी चीजें पानी में डालकर थोड़ी देर पकाया है।
1: अरे वाह, अब तो मैं भी बनाकर अपनी नानी को पिलाऊंगी, उन्हें बहुत खांसी आ रही है।
2: हाँ हाँ रचना, क्यों नहीं, उनको भी दे दो।
3: अरे किरण दी, एक बात बोलूं, आप क्यों ना यही गांव में ही छप्पर के नीचे किरण आयुर्वेदिक केंद्र खोल लीजिए, जिसमें आप अनेक बीमारियों से ठीक होने की घरेलू जानकारी और दवा दोनों ही दीजिए।
4: सवर रंग मोर पिया नीको न लागे, हे सवर।

0: हाँ किरण दी, इससे गांव वालों को कुछ घरेलू दवाइयों के बारे में जानकारी भी होगी।
1: हाँ हाँ, और तो और रोज शहर भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
2: हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम सब मिलकर मेरा शहर से पत्ता काटने में लगी हुई हो।
3: तो क्या दिक्कत है किरण दी, हम सब एक हफ्ते आकर आपसे मिल जाया करेंगे, क्यों जया?
0: हाँ बिल्कुल समता दी, क्यों नहीं।

0: तो बताइए किरण दी, आप अपना केंद्र कब खोल रही हैं?
1: हाँ हाँ शिवानी, बिल्कुल अपने नाम से ही खोलेंगे, किरण आयुर्वेदिक केंद्र। लेकिन थोड़ा सोच विचार भी कर लेने दो भाई।
2: हाँ हाँ, आप खूब सोच विचार कर लीजिए, आपको सोचने का पूरा मौका दिया जा रहा है। पर आपको कुछ तो करना होगा गांव वालों के लिए, क्यों दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, जो मुझे आता है और जो अपने लिए करती हूँ। देखो, घरेलू सामानों से अपनी परेशानी को कम किया जा सकता है। हमारे रसोई घर में तमाम ऐसे मसाले होते हैं जिनको हम सब्जी वगैरह में तो प्रयोग करते हैं, पर दरअसल सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें ये पता नहीं होता है।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं दी, अगर उसे हम सिस्टमैटिक ढंग से इस्तेमाल करें तो उसका कुछ और भी फायदा हो सकता है। तो अब आप बताइए कि हम लोग किस मसाले को कैसे इस्तेमाल करें, क्यों समता दी?

0: बताती हूँ, सुनो सब लोग गौर से। अरे अरे, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी हमारी काकी जी आ गई हैं।
1: का बताई बहन जी, हमारे लोग तो बहुत परेशान हैं। पेटवा तो हमेशा बगड़ जात है और खोखी दिन रात आवत।
2: काकी जी इधर आके बैठ जाइए, काका आप भी आइए, आइए आइए, इधर बहुत जगह है, बहुत सारे लोग बैठे हैं इधर।
3: हाँ दी, बताइए क्या बताने जा रही हैं आप।
0: तो सुनिए, सब लोग आराम से पहले बैठ जाइए। देखिए, मेथी का उपयोग आप सभी लोग सब्जी बनाते समय पहले डालती हैं, फिर सब्जी छौंक लगाती हैं। तो वही मेथी दाना अगर रात में सोने से पहले 25 से 30 दाना फाँक कर पानी पी लीजिए, इससे आपका पेट तो साफ ही होगा और आपको ताकत भी मिलेगी।
1: हाँ बहनी, हमार तो पेटवा नाय साफ होत है, दिनम कई बार सिवाने जायत है, का करी। अब सोवे से पहले मेथी खाए लेवा कर, अब तब देखी शायद फायदा कई जाए।
4: भाभी खोलो

0: किरण दी, एक बात मैं भी बता दूं कि अगर आपको सर्दी खांसी परेशान कर रही है, बार बार सर्दी जुखाम हो जाता है, तो अदरक घिसकर उसका रस निकाल लें और एक चम्मच शहद मिला लें और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर सुबह शाम उसे चाट लें तो बार बार सर्दी जुखाम नहीं होगा।
1: वाह समता दी, अब आप भी चप्पर छा लीजिए गाँव में।
0: अरे नहीं शिवानी, ये सब हमने किरण दी से ही सीखा है और अपने घर में इसे अप्लाई भी कर रही हूँ और इसका ज्यादा बहुत ज्यादा असर भी हुआ है।
2: अरे वाह समता दी, वेरी गुड।
1: बहिनी, अब हम सब वही करबे जो नाप कही हो। बताओ, दिना रतिया चोकोम रही थे, लेकिन इन आए जानी थे कि कौन मसलवा कब खाई कि इतना फायदा कही जाए।
3: काकी जी, आप जब सुबह टहलने जाती है तो ब्रश करके जाती है ना, तो रास्ते में अगर अमरूद का पेड़ मिल जाए तो दो पत्ती अमरूद की, दो पत्ती पीपल की, थोड़ी सी करी पत्ती, सब मिलाकर कूच कूच कर खा लें। फिर घर आकर आधा ग्लास गुनगुना पानी पी लिया करिए। ऐसा 15 दिन लगातार करिए, फिर देखिए

0: किरण दी, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सबके लिए है, चाहे कोई गांव का रहने वाला हो या शहर का।
0: ओके ओके। किरण दी, घर भी चलना है, मुझे शादी में जाना है, जल्दी चलिए ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जया, शीघ्र ही चलती हूँ।
2: बहने, और कुछ बताए दो हमें सबका।
3: काकी, इस बार जितना किरण दी ने बताया है उतना करिए, फिर अगले शिफ्ट में हम लोग आएंगे और बहुत कुछ बताया जाएगा।
2: ठीक है दीदी, चलिए, आपका ड्राइवर गाड़ी में हॉर्न बजा रहा है, चलिए आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ।
1: तो चलो चलते हैं, सभी को राम राम, राम।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात

वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंद प्यारा प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, जो कि आपको देता है इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन और उसके साथ एंटरटेनमेंट। और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का करती हूँ स्वागत आपके अपने वाले शानदार मंडे में। बिल्कुल, आज है हमारा शानदार मंडे, क्योंकि शानदार इसलिए होता है कि जब हम दिन भर होता है ना कि हम दिन भर काम करने के बाद छुट्टी इन्जॉय करते हैं, वैसा ही कुछ हमारे संडे के साथ भी होता है कि पूरा वीक काम करने के बाद में हम हमारा संडे इन्जॉय करते हैं। और इसलिए जो मंडे आता है वो तो खुद ब खुद शानदार हो जाता है, क्योंकि संडे की पूरी रेस्ट के बाद आप मंडे को इन्जॉय करने के लिए फिर से पूरे एनर्जी के साथ रेडी होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शानदार मंडे में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है उनका भी, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, और उनका भी जो कि हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं। तो आइए लिसनर्स, अब बात करेंगे आज वाले हमारे टॉपिक पर, जो कि आप सभी को पता है कि हमारा शानदार मंडे होता है काम वाला मंडे। काम वाला मंडे यानी कि हम बात करते हैं कुछ जॉब रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर कर, कुछ डिसीज़ को लेकर के, और साथ ही साथ बात करते हैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ एजुकेशन को लेकर के। लेकिन आज सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है हमारे काम से, क्योंकि देखिए एजुकेशन और हमारा काम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, एजुकेटेड होते हैं ताकि हम एक अच्छी सी जॉब कर सकें। सिर्फ जॉब पाना ही पढ़ाई का मकसद नहीं होता, ये मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। सभी का सपना होता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें और फिर जॉब करें, लेकिन कहते हैं ना कि डगर जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती। ठीक उसी तरह पढ़ाई जहाँ पूरी करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं काम ढूंढना, काम का मिलना और फिर उस काम को करना और धीरे धीरे उसमें एग्जिस्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हर दिन हम बात करते हैं काम से, आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जो कि हमारा मंडे सेक्शन होता है। तो आज भी हमारा मंडे सेक्शन है, और आज मंडे सेक्शन में बात होगी कुछ खास टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि मान लीजिए आपने अपनी कॉलेज को पूरा किया है, आप फ्रेशर हैं और पहली बार पहली जॉब के लिए आप अपना पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस होते हैं और किन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज इन पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लिसनर्स कि जब हमारा पहला जॉब होता है, यानी कि पहला जॉब इंटरव्यू होता है और हम कहीं ना कहीं फ्रेशर होते हैं, हमने पहले कभी नहीं किया होता है, तो थोड़ी सी घबराहट होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन सही तैयारी से आप अपना 100 नहीं बल्कि 200% दे सकते हैं। लेकिन सही तैयारी होती क्या है और कैसे होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू के एक दो दिन पहले ही सब ज़रूरी चीज़ों को पूरा कर लेना चाहिए, जैसे कि आप जिस भी कंपनी या जिस भी संस्था में काम करने जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनका हाल ही में कोई काम न्यूज़पेपर में है क्या, उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके बारे में सारी डिटेल्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी कंपनी, जिस भी संस्था, कहीं भी जा रहे हैं उसके बारे में एक बार उसकी वेबसाइट पर चेक कर इन्फॉर्मेशन ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा उस जगह के बारे में, उस जगह की अच्छी चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं अपनी पहली जॉब के लिए, तो हो सकता है कि आपकी कमेटी में जो लोग बैठे हों वो उस संस्था से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे पूछें। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा उस संस्था के बारे में पढ़ें, जानें, न्यूज़पेपर्स चेक करें, वेबसाइट चेक करें, देखें कि आखिर उसमें पहले क्या हुआ है, अब क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमारा रिसर्च करना ज़रूरी है। अब आते हैं कि जॉब की डिस्क्रिप्शन को समझें, यानी कि पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए उसमें क्या क्या मांगा गया है और आपकी स्किल्स उसके हिसाब से मैच करती हैं या नहीं मैच करती हैं। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस पोस्ट के लिए आपको जॉब ऑफर आया है और जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, उस पोस्ट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट दी गई है, क्या क्या वो रिक्वायरमेंट, वो स्किल्स आपके पास हैं और क्या

की स्किल्स उस जॉब की स्किल्स से मैच करती हैं या नहीं करती हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कि हमें अपने रेज्यूमे को कम से कम 2-3 प्रिंट आउट एक साफ फोल्डर में ज़रूर रख लें, साथ ही अपने आईडी प्रूफ और सर्टिफिकेट्स भी ज़रूर रखें। बिल्कुल, क्योंकि रेज्यूमे बहुत ज़रूरी होता है। 2-3 प्रिंट आउट आप एक अच्छे से फोल्डर में रखिए और साथ ही अपनी आईडी प्रूफ और सर्टिफिकेट्स भी रखिए। थर्ड आता है पॉइंट कि कुछ ऐसे ज़रूरी और कहीं ना कहीं नॉर्मल सवाल होते हैं जिनके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही होती है कि अगर आप अपनी पहली जॉब का पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। देखिए, थोड़ी सी घबराहट होना, थोड़ी सी बातों का ना समझ में आना, हड़बड़ाकर जवाब देना, या कई बार हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और हमें जो आता होता है वो भी हम भूल जाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं नॉर्मल है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं किया है। तो जब हम पहले पहले कोई चीज़ करते हैं तो हमें घबराहट होती ही है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आप उनका जवाब सही से दें। सही से देना इन द सेंस कि बिल्कुल भी घबरा कर जवाब नहीं देना है। हड़बड़ाहट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सवाल आपसे कुछ पूछा गया है और आपने हड़बड़ा कर उसका जवाब कुछ और दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपसे जो सवाल किया जा रहा है, जिस पॉइंट पर किया जा रहा है, आपको जवाब उसी पॉइंट पर देना है। कोशिश करें बातों को ज़्यादा डेप्थ में न ले जा करके पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना ही सबसे अच्छा होता है कि उन्होंने आपसे जैसे पूछा है आप पॉइंट टू पॉइंट उसका जवाब दीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। अभी हमारे पास इसी टॉपिक पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि हम बताएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपका ये जो पहले इंटरव्यू वाला पहला डर होता है ना फ्रेशर्स का, वो आज हम भगाएंगे। कि भाई देखिए, आज हमारा जो दिन है ना, वो मंडे है, हमारा शानदार मंडे है जिसको हमने टैग दिया है हमारा काम वाला मंडे। और काम वाले मंडे में काम तो तभी बनेगा जब आप बिना डरे अपना इंटरव्यू देंगे और अपने जॉब के लिए सिलेक्ट होंगे। तो आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि आप सभी को सुनाती हूँ और मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार। आप सभी सुनें और इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट फेवरेट फेवरेट वाले शो में जिसका कि नाम है ज्ञानस्त्री लाइव, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। फिर से एक बार आ चुके हैं बातें करने के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जब आप अपनी पहली जॉब यानी कि पहले इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे बुनियादी सवाल भी होते हैं जिनका जवाब हमें देना होता है। जैसे कि जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, और इसके लिए आपको एक टाइम भी दिया जाता है कि आपको एक मिनट या दो मिनट दिया जा रहा है जिसमें आपको अपने बारे में बताना है। अगर आपसे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपको अपने बारे में बताना है, बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं बताना होता है, बस कुछ ज़रूरी बातें जो कि हमारी पर्सनैलिटी को लेकर होती हैं हमें बस वही बतानी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि वो पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या जिस भी संस्था के में आप काम करने के लिए जा रहे हैं वो आपसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और दूसरा तीसरा सवाल होता है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताएं। इस पॉइंट पर हमें खुलकर जवाब देना चाहिए, आपकी जो भी ताकत है, जो भी आपकी कमजोरियां हैं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें बतानी चाहिए। और हाँ, एक बात और होती है कि हमें जो भी बताना है वो हमें फैक्ट्स बताने चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उनको लगे कि अरे ये तो अननेसेसरी थी, इसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी और बस बेकार में बता दिया। ऐसा कुछ नहीं, आपको वही चीज़ें बतानी हैं जो कि आपको लगती हैं कि बताने के लायक है। दूसरा आता है कि पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी, यानी कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो आपको कम से कम आपने आपका जो टाइम है उससे कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको अपने वेन्यू पर पहुंचना होगा। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो 10 मिनट पहले आप लॉगिन कर बैठ जाएं। देखिए 10-15-20 मिनट पहले जाने से क्या होता है कि जब हम पहुंचते हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में सोच लेते हैं, और थोड़ा रिलैक्स होना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप अपने सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है कि आपको अपने कपड़े बिल्कुल साफ, प्रेस किए हुए और फॉर्मल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा चमकीले या कैजुअल कपड़े नहीं होने चाहिए। हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन के ही, फॉर्मल कपड़े पहन करके ही आपको अपना इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आजकल कंपनी में सोशल मीडिया जो है वो हमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप एक बार कंपनी आपकी जो भी कंपनी है उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़रूर चेक करें। इसलिए ध्यान रखें कि उसमें कुछ भी ऐसी उस सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वहाँ का सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़रूर चेक करें, और अगर आपका अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो वो हो सकता है कि आपकी कंपनी आपका अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी ज़रूर चेक करे, इसलिए उसे भी अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये आता है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब नहीं देना है, और कभी भी उल्टे सीधे या आड़े टेढ़े जवाब देने से बचें, और झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें। अपने रेज्यूमे में ऐसी कोई स्किल या ऐसी कोई एक्सपीरियंस ना लिखें जो आपको नहीं आता है। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो साफ साफ आप कह दीजिए, सर मैम मुझे इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा जैसे भी है, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना या ऐसा कुछ बताना कि जो कि आपको नहीं आता है, या फिर ये कहना कि नहीं नहीं मुझे तो सब आता है, आई एम ओके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस जितना आपको आता है उसी का जवाब आपको कॉन्फिडेंस के साथ देना होगा। बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंटरव्यू के दौरान हमेशा रूम में एंटर करते ही इंटरव्यू आवर जो भी आपका इंटरव्यू ले रही है कमेटी, उसे स्माइल के साथ विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अब बात करते वक्त आँखों में देखकर बातें करना यानी कि आई कॉन्टैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो दिखता है। थर्ड पॉइंट आता है कि इंटरव्यू को बीच में ना काटें, उनका सवाल ख़त्म होने दें और फिर 2 सेकंड बाद अपना जवाब दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इंटरव्यू के बीच में कभी भी बातों को नहीं काटना चाहिए, उनका सवाल ख़त्म होने के बाद 2 या 3 सेकंड के बाद ही आपको जवाब देना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। अरे अगर आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये सभी को मालूम है कि भाई हम फ्रेशर हैं तो हमें पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पहले से तो ना पता है कि क्या होता है कैसे होता है।
तो इसलिए एटीट्यूड और लर्निंग एबिलिटी को आपको आगे रखना है। कोई भी ऐसी मुश्किल काम को देखकर आप डर जाते हैं या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह है, ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि हम हर गलती से सीखकर कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि हम कहीं ना कहीं एक चुनौती को पूरी तरीके से लेते हैं, वो होता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए हमें हमेशा चैलेंजेस को लेते रहना चाहिए। थर्ड आता है कि जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसे आप कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, ये भी एक पॉइंट है। कितने अच्छे से डिलीवर कर पाने का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत बेहतरी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन हम उसे सामने वाले को कितने बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात होती है और यही सबसे ज़रूरी बात होती है। आप समझ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या आप सामने वाले को समझा पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? इस पॉइंट पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सब कुछ आते हुए भी आपकी पूरी एक जो पर्सनैलिटी होती है वो तब दब जाती है जब आप सामने वाले को अपनी बात नहीं समझा पाते। इसलिए सामने वाले को अपनी बात समझाएं और चीज़ों को बेहतर तरीके से लें। आइए लिसनर्स, अब इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है उसे सुन लेते हैं और बस यूं गए यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद ही प्यारा प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञानश्री लाइव, जो कि आपको देता है इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन और उसके साथ में एंटरटेनमेंट। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

पहला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि अभी तक तो हमने बात की उन लोगों के बारे में जो कि जॉब करना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, अपनी फर्स्ट जॉब के लिए उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाली टॉपिक पर जो कि आज हमारा है लॉ के स्टूडेंट्स को लेकर के। हम हर दिन बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के। आज हम बात करेंगे लॉ स्टूडेंट्स को लेकर के। लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है या कहीं ना कहीं जिन चीज़ों पर आज हम उन पर बात करेंगे कि अगर हम नज़र डालें तो लॉ के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लॉ की पढ़ाई के लिए कई सारी ऐसी नेशनल लेवल पर पेपर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ऑल इंडिया लॉ एडमिशन टेस्ट और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप यूजी या बीएचयू जैसी कि किसी अच्छे कॉलेज में आपको प्रवेश मिले, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि क्लैट और यूजी के जो पेपर होते हैं वो कहीं ना कहीं दिसंबर में ही होती है और इसके ज़रिए देश में 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं दाखिला भी मिलता है। और AI भी ऐसी बहुत सारी कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए होता है। लॉ यूनिवर्सिटी और दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो लॉ यूनिवर्सिटी हैं वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि जबकि एलसेट इंडिया को भी कई लॉ स्कूल से मान्यताएँ प्राप्त होती हैं, इसलिए जो भी अपनी स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं पेपर्स के लिए कंसर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा देखते रहना होगा कि आपको कैसे पेपर्स आते हैं, कैसी उसमें क्वेश्चंस होते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, ये कहीं ना कहीं लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि जो भी यूथ जो हैं वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो स्वरोजगार से भी जुड़े। और साथ ही साथ में कई युवा जो लीगल कंसल्ट्स होते हैं उनमें भी ध्यान देना चाहिए, लीगल कंसल्टेशन भी होता है वो भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है कि पॉलिसी एडवाइज़र भी बन सकते हैं जो भी लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरा होता है कि फिलॉन्स लीगल सर्विसेज ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी जा सकते हैं। और कई सारे और भी बदलते समय में जो हमारा लॉ है वो एक ऐसे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस समय उभरा हुआ है कि उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि लॉ की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, इसलिए कुछ चीज़ों का ख्याल लॉ स्टूडेंट्स को ज़रूर रखना चाहिए। लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो तय करना है कि वो जो अपनी कोर्ट प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर लॉ फॉर्म का रास्ता अपनाना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए जानना, क्योंकि दोनों की तैयारी की जो दिशा होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर आप अदालत में मतलब कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करने के लिए इच्छुक हैं तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी, यानी नियमित कोर्ट रूम जाना होगा, वहाँ अपने सीनियर्स वकील के साथ काम करना होगा, उनसे वो कहीं ना कहीं बिहेवियर एक्सपीरियंस आपको सीखना होगा। और वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर करियर बनाने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लीगल रिसर्च, मजबूत कम्युनिकेशन स्किल पर ज़रूरी ध्यान देना होगा। और आज के दौर में केवल अच्छे नंबर ही ज़रूरी नहीं होते हैं बल्कि काम करने की समझ और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़ ज़रूरी होती है लगातार सोचते रहने, लगातार सीखते रहने की आपकी जो स्किल है वो कहीं ना कहीं आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे लॉ के हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, सबसे ज़्यादा जो आजकल ज़रूरी है वो है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि देखिए बुक्स हम पढ़ते हैं, तैयारियां करते हैं, पेपर देते हैं, हमें ये भी पता होता है कि हमारे कौन कौन से पेपर आएंगे, हमें उनकी कैसी तैयारी करनी है, कैसा पेपर देना है, सब कुछ मालूम होता है। लेकिन उन सब कुछ के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि हम कैसे करेंगे। और कैसे करने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपने पेपर की पूरी पूरी तैयारी भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है,
देखिए कई बार पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल नॉलेज की और उसको प्रैक्टिकल करने की, तो उसमें ज़्यादातर लोगों कई बार कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी उस डिग्री पर भी असर पड़ता है। इसलिए जहाँ आपकी पेपर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, डिग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, उसी के साथ साथ आपको आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो होती है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज। आप लॉ स्टूडेंट नहीं हैं, आप कुछ भी नया सीख रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में हैं, तो उसमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए आपके अपने प्यारे पसंदीदा प्यारे शो गानसली लाइव के साथ। तब तक के लिए सुने, इन्जॉय करें, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आपका अपना वाला प्रोग्राम जो कि है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और फिर से एक बार वापस आ चुके हैं आज के दिन की एक कहानी के साथ। आप सभी को पता है कि जैसा कि हमारा जो मंडे होता है वो होता है काम वाला मंडे, और साथ ही हमारा पर्सनालिटी वाला डे भी, यानी कि आज के दिन हम किसी एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में ज़रूर बताते हैं जिसकी कहानी आपको भी मोटिवेट करे और हमें भी। आज हमारी कहानी जिनके ऊपर है वो है सिद्धार्थ निगम। सिद्धार्थ निगम किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आप सभी जानते हैं। बहुत ही प्यारे अशोक और अलादीन जैसी बहुत ही प्यारे प्यारे शोज़ में इन्होंने काम भी किया हुआ है, और कई एक शो और है जो कि इनके नाम से ही जाना जाता है। सो ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं। आइए आज इनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनकी रियल लाइफ स्टोरी से। इनकी रियल लाइफ स्टोरी हमें जो एक मोटिवेशन देती है ना, वो इतना ही है कि कभी भी अपनी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सिद्धार्थ निगम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही छोटी उम्र में उनके पिता जो थे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने रोने के बजाय अपने हुनर पर हमेशा भरोसा किया। आज आपकी आज की परिस्थिति कैसी भी हो, पर आपकी कड़ी मेहनत, लगन और हौसला उसे बदल सकता है, यही हमें सिद्धार्थ निगम की कहानी सिखाती है। वो बताते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं सिर्फ 4 साल का था तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और उसके बाद मम्मी ने ही मुझे कहीं ना कहीं मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और एक्टिंग में आना भी उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल रहा। वो बताते हैं कि मैंने एक एडवर्टीज़मेंट से शुरुआत की थी, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऐसे कई साल गुजर जाते थे जब कोई भी ऑफ़र नहीं आता था, जल्दी काम नहीं मिलता था, और उस टाइम पीरियड में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि अब तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कैसे होगा, कैसे चलेगा। लोगों की बहुत सारी कहीं ना कहीं उन्हें कड़वी बातें भी सुननी पड़ती थी कि अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, इतनी जल्दी थोड़ी ना काम मिल जाता है, एक आध मिल गया तो मिल गया, ऐसे तुम थोड़ी ना आगे जा पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कड़ी मेहनत के पीछे से पीछे कभी नहीं रहा, कड़ी मेहनत की और हमेशा कद्र की। उन्होंने अपनी मम्मी की उन सारी तकलीफ़ों की, उनके सारे सेक्रीफाइसेस की उन्होंने हमेशा कद्र की और हमेशा आगे की तरफ देखा। इसीलिए कहते हैं लिसनर्स कि आज आपके पास जो है, आपका आज जो है, बस उसी पर ध्यान देना चाहिए। पीछे क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोचने के बजाय अगर हमारी आज पर मेहनत करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर हो सकता है। वो बताते हैं कि उन्हें खुद पर हमेशा ज़्यादा भरोसा रहा है। सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में ही रोज़ सुबह उठकर वो खुद से एक लाइन ज़रूर कहते थे, आई एम द बेस्ट। और ये पॉजिटिव माइंडसेट ही उन्हें हर मुश्किल से लड़ना सिखाता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को नीचे महसूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये महसूस किया कि आई एम द बेस्ट। बस इंसान ख़राब नहीं होता, उसका वक्त ख़राब होता है। उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के वो चलते रहे कि इंसान ख़राब नहीं होता या अच्छा नहीं होता, बस उसका वक्त ख़राब या अच्छा होता है, और वक्त की तो फितरत होती है बदलना। और ठीक उनके साथ उनकी जर्नी में भी ऐसा ही हुआ। अपनी कड़ी मेहनत और कहीं ना कहीं अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने अपने वक्त को बदल कर दिखा दिया, और आज वो हमारे इंडिया में लाखों यूथ्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हैं, जो कि सिखाते हैं कि हमेशा अपनी चीज़ों को, अपने हुनर को, अपनी स्किल को, अपनी टैलेंट को ताकत बनाओ। क्योंकि जिस दिन आपका हुनर, आपकी स्किल, आपकी ताकत बन जाएगी, उस दिन हर चीज़ आपको छोटी लगने लगेगी, हर प्रॉब्लम कम लगने लगेगी। लेकिन वो तब, जब हम हमारे अंदर लड़ने की ताकत को हमेशा ज़िंदा रखेंगे। तो यही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ख़राब चीज़ों को भी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं ढाल लेते हैं। बस चाहिए तो 2-3 चीज़ें चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, नज़रिया चाहिए, और उस नज़रिए के साथ में एक और चीज़ चाहिए होती है, जो है लड़ने की ताकत, जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आइए लिसनर्स, इन्हीं प्यारी सी कहानी के साथ में चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हमारा वेट कर रहा है, इसे हम सुन लेते हैं, और इस सॉन्ग के मिड में आऊँगी मैं आपसे बाय बोलने के लिए। तब तक के आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

चाहत में तेरे में दीवाना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में आज के लिए मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। लिसनर्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ रेडियो ज्ञानस्ती को सुनते रहिए। और हाँ, अब मैं आपसे मिलूंगी आपके अपने बहुत ही प्यारे और पसंदीदा शो में, जिसका के नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन। ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: तो ज्ञान स्थली रेडियो 89.6 FM के माध्यम से हमको ढेर सारी जानकारियां तो मिली, लेकिन किसी बहन ने ये नहीं बताया कि पहले मंथ में कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए।
4: बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में क्या होता है, जैसे पहले महीने में, दूसरे महीने में, जैसे होता है कि भ्रूण के अंग, गर्भाशय और अंडा होता है, प्रत्यारोपित होता है, उसमें उत्तक का निर्माण शुरू हो जाता है। उस टाइम पे माँ को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि शिशु के जो प्रमुख अंग होते हैं जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे और आंत, ये सारे विकसित होते हैं। इस टाइम पे बहुत सारी सावधानी, हरी साग सब्जी, ज़्यादा

0: बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लेते रहना चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में बने रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छे मात्रा में पानी पिएं, हरी सब्जियां खाएं, दही दूध सभी का प्रचुर मात्रा में सेवन करें, क्योंकि इस महीने से लगभग बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे बच्चे का वजन
1: की जरूरत है। फुल न्यूट्रिशन
0: जी,
1: की।
0: जी
1: जी जी
0: फुल न्यूट्रिशन और डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहें।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी। तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमें इस रेडियो के माध्यम से इतनी सारी जानकारी, और बड़ी इस बात की भी खुशी हो रही है कि आप लोग को जानकारियाँ हैं। तो चलिए विदा लेते हैं और चलते हैं अपने गंतव्य की ओर।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। कुष्ठ रोग ये कोई पिछले जन्म के पाप या बुराई का नतीजा नहीं, बल्कि एक बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका इलाज पूरी तरह संभव है। इसके प्रमुख लक्षण हैं त्वचा पर हल्के या तांबाई रंग के दाग धब्बे जिनमें सुन्नपन हो, त्वचा या चेहरे पर गांठ का होना, हाथ या पैरों पर सुन्नपन अथवा किसी प्रकार की विकलांगता, हाथ या पैरों में झंझनाहट का महसूस होना, नसों में दर्द या हाथ पैर पलकों की कमजोरी। अगर आपको किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण नजर आते हैं तो आप आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर उनका सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी हमारी ही तरह एक सामान्य और सम्मानित जीवन जी सकता है। आओ एक साथ कदम बढ़ाएं, कुष्ठ रोग मुक्त भारत बनाएं।
2: गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है। गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है।
1: राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे समुदाय में लोग गर्भावस्था को कितने हल्के में लेते हैं, और बहुत सी महिलाएं तो अपने खान पान में भी कोई बदलाव नहीं लाती।
3: हाँ, तो आप जान ही गए हैं कि आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM और उस पर एक खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे आकांक्षा, और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सेहत और लाभ से जुड़ी बहुत सारी जरूरी बातें लेकर आई हूँ।
1: जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे दूसरी तिमाही की, यानी गर्भावस्था के चौथे, पांचवे और छठे महीने की जरूरी देखभाल, पोषण टेस्ट और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में। और आपको तो याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जैसे ही महिला को अपनी गर्भावस्था का पता चलता है, उसे तो भाई तुरंत किसी नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण करा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसे नियमित स्वास्थ्य जांच, जरूरी दवाइयां और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
3: हमने अपने एक्सपर्ट से ये भी जाना था कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे कई शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजरना पड़ता है। शुरू के 1-2 महीने में कई महिलाओं को उल्टी, सुबह सुबह थकान और जी मचलाना तो आम बात है, और साथ ही शरीर को ज्यादा ऊर्जा की भी जरूरत होती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। कई बार तो मूड स्विंग हो जाता है और शुरू

0: में कई महिलाओं के वजन में गिरावट भी देखने को मिलती है।
1: जी हाँ, तो आज हमारे साथ है हमारी और आपकी दीदी टीकन देवी, जिन्हें आप सभी जानते ही हैं, और वो एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं और हमारे सेहतिया सिंह भैया की पत्नी भी हैं। सो आज टीकन भाभी हमें बताएंगी कि दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी देखभाल के बारे में जागरूक रहना आखिर क्यों जरूरी होता है।
2: तो सबसे पहले सब श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, जानकारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि महिला सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी उठाती है।
0: हाँ जी टीकन देवी जी, एक सवाल ये भी आया था कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो खुद को आयुष्मान आरोग्य मंदिर या आंगनबाड़ी या फिर कोई सरकारी अस्पतालों में कैसे पंजीकृत करा सकती है।
2: इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। कोई भी गर्भवती महिला अपनी जांच और पंजीकरण के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर जा सकती है। वहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता पंजीकरण की जानकारी लेंगी और गर्भवती महिलाओं के लिए खास योजनाओं और सेवाओं के बारे में बताएंगी। अगर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो तो अस्पताल में मौजूद अधिकारी से भी मदद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। और टीकन भाभी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी AAM क्या है और वहाँ गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है?
2: जरूर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू की गई एक पहल है, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। यहाँ मुफ्त में प्रसव पूर्व जांच ANCs होती हैं, जिनमें अनीमिया, गर्भकालीन मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच और प्रबंधन भी किया जाता है।
0: अच्छा, सुना है वहाँ गर्भवती महिलाओं को आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद भी की जाती है, ताकि उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सके। शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी को रोकने के लिए कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट भी प्रदान किए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए अल्ट्रासाउंड और अन्य डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे शुरुआती चरण में किसी भी असामान्यता का पता लगाया जा सके। यदि जरूरत पड़े तो समय पर अस्पताल में देखभाल की सुविधा भी सुनिश्चित की जाती है, जिससे गर्भवती महिलाओं के लिए ये सफर और भी सहज और सुरक्षित हो जाता है।
2: और बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ हर प्रकार की सुविधा दे जाती है।
1: वाह क्या बात है, यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो वाकई में बहुत ही काम की चीज है। लेकिन दीदी, मैंने देखा है कि कई महिलाएं आयरन और कैल्शियम की गोलियां नहीं खाती, क्या उन्हें इनसे कोई खास डर होता है?
2: हाँ होता तो है, कई बार महिलाएं सोचती हैं कि इन गोलियों से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा और उन्हें इनकी जरूरत नहीं। कुछ को जानकारी नहीं होती और कुछ बस लापरवाही में भूल जाती हैं। लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है कि दूसरी तिमाही में बच्चा माँ के खून और हड्डियों से ही पोषण देता है, इसलिए आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ जरूरी होती हैं, ताकि माँ का शरीर मजबूत बना रहे।
1: तो क्या उनके आयरन की गोली ना खाने के कारण या साइड इफेक्ट्स पर आप थोड़ा और विस्तार में बता सकती हैं?
2: देखिए, महिलाओं को एहसास नहीं होता कि आयरन की कमी से ही अनीमिया होता है और होने वाले बच्चे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ना खाने का कारण जानकारी की कमी तो है ही, लेकिन कई महिलाओं का टैबलेट लेने के बाद जी मचलाता है और उल्टी आने लगती है। कुछ को गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि टैबलेट खाने से अजीब स्वाद महसूस होता है, जिससे खाने का मन नहीं करता। टैबलेट लेने से मल काला हो जाता है, जिससे कई महिलाएं घबरा भी जाती हैं। गलत धारणा और भ्रांतियां भी बहुत बड़ा कारण है। ये सोच कि टैबलेट से बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा या शरीर में अधिक गर्मी बढ़ेगी, और फिर जैसा कि मैंने कहा, महिलाएं इसे नियमित रूप से लेना ही भूल जाती हैं या जरूरी ही नहीं समझती।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कहा। तो इनकी इन भ्रांतियों और गलत फहमियों को कैसे दूर किया जा सकता है?
2: अब हम तो महिलाओं से कहते हैं कि खाना खाने के बाद या रात में सोने से पहले टैबलेट लें, जिससे मतली या पेट में गैस और एसिडिटी की दिक्कत कम हो। अगर टैबलेट से समस्या हो रही है तो सिरप या च्युएबल टैबलेट का विकल्प अपना सकती हैं। ज्यादा पानी पीना चाहिए और फाइबर युक्त आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, दालें लें, जिससे कि कब्ज की समस्या ही ना हो।
0: बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता, खास तौर पर महिलाएं, IFA टैबलेट की अहमियत समझ गई होंगी और जान रही होंगी कि ये बच्चे के विकास और एनीमिया से बचाव के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और ये कार्यक्रम सुनकर जानकारी की कमी तो अब नहीं रही होगी। तो हमारी गर्भवती बहनें और भाभियां, कृपया गोली समय पर और नियमित रूप से लें और अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रखें। लेकिन टीकन भाभी, एक सवाल और याद आया, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि दूसरी तिमाही में कौन कौन से टीके जरूरी होते हैं?
2: ये किए आप बढ़िया सवाल। गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। दूसरी तिमाही में TD1 इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे टेटनेस डिप्थीरिया, जिसे टेटनेस डिप्थीरिया का टीका कहा जाता है। ये टेटनेस और डिप्थीरिया से बचाने में मदद करता है और नवजात शिशु को जन्म के समय इन बीमारियों से सुरक्षित रखता है।
0: मुझे याद है आपने पिछले एपिसोड में बताया था, लेकिन आपसे फिर एक बार पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं?
2: लाभ तो बहुत सारे मिलते हैं। भारत सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री वंदना योजना, PMMVY, पहली बार गर्भवती होने पर 5,000 रुपए की सहायता, जननी सुरक्षा योजना, अस्पताल में प्रसव होने पर 1,500 रुपए की आर्थिक मदद, आंगनवाड़ी केंद्रों से मुफ्त पोषण आहार, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और दवाइयां, 102 एम्बुलेंस सेवा आपातकाल में सुविधा के लिए।
0: अच्छा टीकन दीदी, आप हर बार बोल रही हैं 102 एम्बुलेंस सुविधा, इसके बारे में कुछ बताएं।
2: आप इसे ऐसे समझिए, 102 एम्बुलेंस सेवा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक सुविधा है। ये सुविधा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली निःशुल्क मातृ एवं शिशु परिवहन सेवा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और शिशु रोगियों को समय पर और सुरक्षित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।
1: तो टीकन भाभी, इस सेवा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या कोई भी गर्भवती महिला इसका इस्तेमाल कर सकती है और क्या ये सेवा एकदम निःशुल्क है?
2: जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। ये केवल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए पूरी तरह मुफ्त परिवहन सुविधा है, जो गर्भवती महिला को प्रसव के लिए घर से सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती है और डिलीवरी के बाद महिला और नवजात शिशु को घर तक सुरक्षित पहुंचाने की सुविधा भी प्रवहन करती है। मतलब जब छुट्टी हो जाए तो माँ और बच्चा दोनों इसी एम्बुलेंस में घर आ जाएंगे।
1: क्या बात है, तो गर्भवती महिला को देर रात में भी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या उस समय भी इसकी सुविधा उपलब्ध होगी?
2: ये सुविधा 24 घंटे और 7 दिनों के लिए उपलब्ध है। ये एम्बुलेंस दिन रात हफ्ते में 7 दिन उपलब्ध रहती है। ये विशेष रूप से सुसज्जित एम्बुलेंस होती है, जिसमें जरूरी चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। ये सेवा जननी सुरक्षा योजना JSY और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के तहत दी जाती है।
0: तो इसका उपयोग करने के लिए क्या करना होता है? मेरा मतलब है कि इसका प्रयोग कैसे कर सकते?
2: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 102 नंबर पर कॉल करना होता है। ये सेवा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है।
1: क्या बात है, इसको सुनने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया सेवा है। आप एक बात बताइए कि सरकार तो पूरी मदद कर रही है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान परिवार और पति का समर्थन आखिर कितना जरूरी होता है?
2: महोदय, आपके इस प्रश्न से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा है। घर के सभी सदस्यों का, खास तौर पर पति का समर्थन बहुत जरूरी होता है। सकारात्मक माहौल, अच्छा खान पान, हल्का व्यायाम, मानसिक शांति गर्भवती महिला के लिए बेहद फायदेमंद है। परिवार को चाहिए कि वो महिला का पूरा ध्यान रखें, उसे तनाव मुक्त माहौल दें, और पति तो पत्नी के काम में हाथ बटा सकते हैं, उन्हें भारी सामान उठाने से रोक सकते हैं, उनके मन पसंद का खाना बनाकर खिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर कदम पर उनका साथ दे सकते हैं।
3: टिकन दीदी, जब खान पान की बात हो ही रही है तो भाई मैं अपने सवाल को पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे ये बताएं कि दूसरी तिमाही में महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए।
2: दूसरी तिमाही वो समय है जब शिशु का विकास तेजी से हो रहा होता है, उसके अंग विकसित हो रहे होते हैं। पोषण के लिहाज से ये समय जरूरी हो जाता है। महिला को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पोषित आहार लेना चाहिए, साथ ही उनको हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए। कोशिश करें कि कुछ श्वास संबंधित व्यायाम करें ताकि आगे डिलीवरी के वक्त थोड़ी आसानी हो सके।
1: तो आपके हिसाब और अनुभव से एक महिला को दूसरी तिमाही के दौरान अपने और अपने बच्चे की देखभाल आखिर कैसे करनी चाहिए?
2: एक स्वस्थ माँ और बच्चे के लिए जरूरी है संतुलित आहार। आयरन, फॉलिक एसिड की गोली तो ले ही लें, साथ ही साथ पालक, चुकंदर, गुड़, अनार भी खाएं। इसमें आयरन होता है, विटामिन डी और कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर खा सकती हैं, और साथ में गोली भी खाएं। धूप सेकने से भी विटामिन डी मिलता है। प्रोटीन की पूर्ति दाल, अंडा, मूंगफली, सोयाबीन से मिल सकती है। अखरोट, अलसी के बीज, मछली से ओमेगा 3 मिलता है। पानी सही मात्रा में पिएं। छाछ, दूध, नारियल पानी या फलों का रस भी ले सकते हैं। घर का खाना खाएं, न ज्यादा नमक न ज्यादा मीठा खाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दूसरी तिमाही में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी सही पोषण, जरूरी टेस्ट और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में हमें जानकारी मिली।
3: तो अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो अपनी दूसरी तिमाही में हैं।
4: तो बहुत अच्छी जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? हमारी कोई बहन जवाब दे।
5: जो आपने बताया, जो टाइम ड्यूरेशन आपने बताया, तो वो मैं यही कहूंगी। तो अपने यहाँ गांव में पहले महिलाएं कहती थी खान पान का पहले ध्यान दिया जाए, और कोई भी भारी वस्तु जैसे बाल्टी भरी हुई या सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए मना किया जाता था। इन-लॉज बहुत मना करते हैं, जो हमारी दादी नानी होती थी वो मना करती थी। खान पान का विशेष ध्यान रखें शुरुआत के दिनों में। तो बस, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर अब तो बता ही देते हैं, और हरी साग सब्जियां खाएं, कैल्शियम के लिए जो है दूध, दही, घी का सेवन करें
4: जी।
5: और अब इसके आगे हमारी जो बहन हैं वो बताएंगी।
4: तो थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगी कि और कौन सी सावधानियां हैं जो हमको दूसरी तिमाही में बरतनी चाहिए।
6: तीसरी तिमाही में बहुत सारी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, एक गर्भवती महिला को बरतनी चाहिए। कोई भी वजनदार सामान ना उठाएं, कोई भी काम ऐसा बार बार झुककर कोई काम ना करें, बहुत लंबे समय तक खड़े ना हों, आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, पूरी नींद लें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेते रहना चाहिए, और डॉक्टर के संपर्क में बने रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छे मात्रा में पानी पिएं, हरी साग सब्जियां खाएं, दही, दूध सभी का प्रचुर मात्रा में सेवन करें, क्योंकि इस महीने से लगभग बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे बच्चे का वजन
4: की जरूरत है। फुल न्यूट्रिशन
6: जी,
4: की।
6: जी
4: जी जी
6: फुल न्यूट्रिशन, और डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहें।
4: तो ज्ञान स्त्री रेडियो 89.6 FM के माध्यम से हमको ढेर सारी जानकारियां तो मिली, लेकिन किसी बहन ने ये नहीं बताया कि पहले मंथ में कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए।
7: बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में क्या होता है, जैसे पहले महीने में, दूसरे महीने में, जैसे होता है कि भ्रूण के अंग जो गर्भाशय और अंडा होता है, गर्भाशय और अंडा होता है, प्रत्यारोपित होता है, उसमें उत्तक का निर्माण शुरू हो जाता है। उस टाइम पे माँ को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि शिशु के जो प्रमुख अंग होते हैं जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे और आंत, ये सारे विकसित होते हैं। इस टाइम पे बहुत सारी सावधानी, हरी साग सब्जी, ज्यादा झुकना नहीं, ज्यादा नीचे ऊपर करना नहीं, ये सारी सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है, और आगे का तो डॉक्टर हमेशा बताते ही रहते हैं।
4: तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मालूम है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमें इस रेडियो के माध्यम से इतनी सारी जानकारी, और बड़ी इस बात की भी खुशी हो रही है कि आप लोगों को जानकारियां हैं। तो चलिए विदा लेते हैं और चलते हैं अपने गंतव्य की ओर।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो हमें लिखे, यानी हमारे एड्रेस पर, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज के पते पर, या फिर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संपर्क करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और बात करेंगे तीसरी तिमाही के बारे में। तब तक सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। फिर मिलेंगे और तब तक आपको रखना होगा अपना ख्याल
3: और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद ले। इसी के साथ हम लेते हैं विदा।
1: अगली बार हम आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातें लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार।
8: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
9: कुष्ठ रोग ये कोई पिछले जन्म के पाप या बुराई का नतीजा नहीं बल्कि एक बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका इलाज पूरी तरह संभव है। इसके प्रमुख लक्षण हैं त्वचा पर हल्के या तांबाई रंग के दाग धब्बे जिनमें सुन्नपन हो, त्वचा या चेहरे पर गांठ का होना, हाथ या पैरों पर सुन्नपन अथवा किसी प्रकार की विकलांगता, हाथ या पैरों में झंझनाहट का महसूस होना, नसों में दर्द या हाथ पैर पलकों की कमजोरी। अगर आपको किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण नजर आते हैं तो आप आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर उनका सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी हमारी ही तरह एक सामान्य और सम्मानित जीवन जी सकता है। आओ एक साथ कदम बढ़ाएं, कुष्ठ रोग मुक्त भारत बनाएं।
10: गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है। गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है।
9: राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
9: क्या आप भी गोंडा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो भाई, घूम घाम के, घूम फिर के आ गई हूँ मैं अपने अपने स्टेशन पे, यानी जो ट्रेन थी वो घूम घाम के आ चुकी है अपने अपने जगहों पर। तो हम लोग फिर से आ गए हैं और अपनी जो कमांड है, जो हमारी एक कमांड होती है किसी पर, वो हमने फिर से ले ली है। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है सुन सहेली। और सुन सहेली में जब तक एक सहेली नहीं होती है उस प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ये आपको पता ही है, बहुत अच्छे से पता है। तो भाई ऐसा हम क्यों ही करें जब हमारी एक सहेली ना हो या दोनों में से कोई एक ना हो। तो फटाफट आ जाइए जल्दी से, क्योंकि आज होने वाले हैं हमारी बहुत सारी लजीज रेसिपीज का सिलसिला। यानी कि आज हम बताएंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जबकि पूरे पूरी चार रेसिपीज को और कुछ ऐसे किचन टिप्स, किचन हैक्स जिसकी जानकारी आपको फुल टास हम देते आए हैं। तो चलिए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं प्यारी सी दोपहर में शुभ दोपहरिया।
8: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, कैसे हैं आप? आपका अपना पसंदीदा शो आज आपकी दोनों सहेलियों के साथ जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था कि आई थिंक आप सभी भी मैम को बहुत मिस कर रहे थे और मैंने भी बहुत मिस किया चारों दिन। सो आज हमारा मंडे है, तो आइए मंडे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे सबसे पहले वाले मंडे में आज के दिन होती है प्यारी सी पोएट्री से शुरुआत। तो आज भी जैसे कि हर दिन आपको पोएट्री सुनने को मिलती है, आज भी आपको सुनने को मिलने वाली है।
6: चलो, तो ये अभी नींद में मुझे लग रहा है इसीलिए ये थोड़ा बहक के बोल रही है, इसको भी जगाते हैं। तो फटाफट चलिए, क्योंकि अब जब जैसे था ना कुंभकर्ण जो था, एक रामायण में कुंभकर्ण एक किरदार था, तो जब उसको खाने की महक जाती है तो वो नींद से उठ जाया करता था। तो ऐसे ही हमारे पास भी, हमारे फिल्म में भी एक किरदार है कुंभकर्ण नाम का, जिसे जब अभी खाने पीने की खुशबू जाएगी और वो खुशबू इस प्यारी सी पोयम के माध्यम से जाएगी तो फिर इनकी नींद खुल जाएगी। क्यों अंशिका?
8: बिल्कुल मैम,
6: चले शुरू करें।
8: जी तो आई थिंक मैं रास्ता दे दूँ।
6: बिल्कुल
8: शुरू करें। तो आइए लिसनर्स चलते हैं और रास्ता देते हैं कुछ लाइन्स के थ्रू। कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है लेकिन पुरानी बातों के साथ। कुछ नया शुरू हो रहा है पर पुरानी बातों के साथ। हम करेंगे आज भी कई सारी, हम करेंगे आज भी कई सारी नई नई बातें पर उन्हीं पुरानी मुलाकातों के साथ। तो आइए करते हैं बहुत ही प्यारी सी पोयम की शुरुआत आपकी अपनी आरजे समता के साथ।
6: भाई इतना प्यारा मौसम जो अभी तीन दिन पहले बीता है, भाई किसी के लिए तो प्यारा था, किसी के लिए बहुत ज़्यादा भयानक था। और हमारे किसान भाइयों के लिए तो मतलब क्या ही कह सकते हैं उनके लिए। और मैं बताऊं कि मैं गई थी बाहर एंड जब मैं ऑन द वे थी तो मैंने देखा कि अपने गोंडा का हाल बहुत ज़्यादा बुरा था। मतलब जैसे गोंडा स्टार्ट होता है, जैसे बालपुर आ गया और बालपुर के बाद से मैंने देखा कि कई जगह पर पेड़ और मतलब जो बिजली की तारें हैं, बिजली के जो पोल्स हैं, जो और कितने सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं, इतने ज़्यादा वो क्षतिग्रस्त हुए हैं कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मतलब मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वरीय दया होती है तो वो एक छोटी सी भी मतलब जैसे मॉर्निंग में इतना बड़ा तूफान और दिन में इतनी प्यारी सी धूप, मतलब उनके हाथ में सब कुछ है। तो कल का माहौल देख करके जो जहाँ पर लाइट नहीं थी, पानी नहीं था और बिल्कुल अंधेरा, मतलब 5 बजे ही लग रहा था कि जैसे इतना अंधेरा हो गया है। और मैंने तो कई घरों में देखा कि इन्वर्टर्स भी खत्म हो गए थे और हमारे घर में भी ऐसा ही था कि एक लाइट जल रही थी लेकिन लास्ट टाइम पर वो भी बिल्कुल खत्म होने वाली थी। और वो पुराना दौर फिर से मुझे किसी अपने अपने एरियाज में दिखाई दिया कुछ घरों में कि इन्वर्टर खत्म हो गए थे क्योंकि 3 दिन पूरे 48 घंटे लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती का सहारा लिया गया था, मतलब मोमबत्ती पे खाना बन रहा था, मोमबत्ती जला के लोग बैठे हुए थे, कुछ लोगों ने दिए जला दिए थे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ गई थी इन 3 दिनों में। मैंने तो एक दिन झेला क्योंकि मैं 2 दिन तो यहाँ थी नहीं, और फिर देखा कि ओ माय गॉड, मतलब ये कैसे जो पुराना दौर कि मोमबत्ती जला के खाना बना रहे हैं। कल कुछ ऐसा ही होने वाला था, मतलब मैंने कैंडल्स मंगा के रख ली थी अंशिका, बट ऐसा नहीं हुआ। एक इन्वर्टर का बस एक थोड़ा सा ही एक बल्ब जितना ही वो जल रहा था, वो सीटियाँ बज रही थी, लेकिन तुरंत ही तुरंत लाइट आ गई एंड थैंक गॉड किया कि हाँ भाई लाइट आ गई है। और पानी जो कि पानी नहीं था, हम लोगों ने बाहर से मंगवा के पानी को पिया है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस कुछ आ गई थी कि 3 दिन से ना पानी था ना लाइट था और उसके बावजूद ऐसा मौसम तो भयानक था, मौसम था ही, लेकिन आज ईश्वर की असीम अनुकंपा से ये हो गया कि फिर से धूप निकल आई है। सभी अपने कारों को फिर से अपनी उस रफ्तार पे आ गए हैं। और जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है अंशिका कि मैं गई थी और तूफान आया था, मैं आ गई हूँ और तूफान थम गया है।
8: कुछ ऐसा ही है मैम, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे बीते 4 दिन तो ऐसे गुजरे हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत पहले होता था ना कि लाइट चली जाती थी और 2-2 दिन रहना पड़ता था, कुछ वैसे ही लग रहा था कि पहले वाला टाइम है, बट सब ठीक हो गया।
6: चले अब पढ़ते हैं पोयम, क्योंकि ये हमारे गोंडा की जानकारियां थी। और जो कि खाना खजाना है, आज मंडे है, लजीज मंडे है, लजीज मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी रेसिपीज का एक दौर। सुबह की चाय से लेकर रात के पकवानों तक खाना ही तो लाता है रौनक हर एक मकानों तक। कढ़ाई में पकती हुई हर सब्जी एक कहानी कहती है, भूख मिटाने की यह चाह हर दिन हर दिल में जिंदा रहती है। कहीं तीखा समोसा है तो कहीं मीठी सी खीर, स्वाद के इस सफर में बदल जाती है हर तकदीर। माँ के हाथों के उस गरम फुलके में जो प्यार है वो दुनिया के सबसे महंगे होटल से भी असरदार है। ये सिर्फ पेट भरने का कोई जरिया नहीं जनाब, थाली में सजा हर निवाला है एक हसीन ख्वाब। दोस्तों के संग आधी रात को मैगी का वो प्याला यादों की डायरी में भर देता है एक प्यारा सा नया उजाला। कभी तीखा कभी मीठा कभी खट्टा सा ये स्वाद है, हर खास मौके पर छिपी उसकी ही एक याद है। ईश्वर का शुक्र है जिसने हमें दी ये सौगात, खाने की हर एक खुशबू में जिंदगी की नई बात, जिंदगी को नई दी बात।
8: वाह, बहुत ही प्यारी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे होता है ना कि पूरी एक थाली सामने आ जाती है।
6: हाँ, जिसमें समोसा भी होता है, खीर भी होती है, पूरी भी होती है, पकौड़ा भी होता है, लेकिन जब आप एक साथ सब ये खाएंगे ना तो एक चीज आपके साथ जरूर होगी, वो होगा आपका पेट खराब।
8: बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि ओवरडोज नहीं होना चाहिए, मतलब आप सारी ही चीजों को लें लेकिन थोड़ा सा अपने पेट का भी ख्याल रखते हुए।
6: सो आइए चलिए अब चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना लजीज सा रेसिपीज का दौर।
8: बिल्कुल, तो आइए आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जान लेते हैं। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हमारा जो है वो ये कहता है कि कभी भी इंसान अच्छा या खराब नहीं होता, सिर्फ वक्त अच्छा या खराब होता है, और वक्त की फितरत होती है बदलना। इसलिए अगर आपका वक्त खराब है या बहुत अच्छा है तो दोनों ही सिचुएशंस में आपको संभल कर रहना चाहिए। अगर वक्त खराब है तो भी संभल कर रहना चाहिए और उसे अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो भी बहुत संभलने की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कुछ चीजों को लेकर के हमेशा बेचैनी बनी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कुछ हो जाएगा।
6: हाँ।
8: कहीं ऐसा तो नहीं होगा कुछ हो जाएगा, सब अच्छा हो रहा है बट हमें वो बेचैनी रेगुलर बनी हुई है। तो आपको उस पॉइंट पर ध्यान देना है कि अगर आपके साथ सब कुछ सही चल रहा है तो आपको वो बेचैनी न हो, वो चिंता महसूस न हो। इसलिए अच्छे वक्त में भी खुद को संभालें और बुरे वक्त में भी। याद रखिए, जो बुरे वक्त में नहीं टूटते हैं वही आगे निखर कर आते हैं, और हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा जाता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा।
6: एग्जैक्टली तो चलिए अब चलते हैं फटाफट अपने प्यारे से एक गाने की ओर, उसके बाद आएंगे आज की पहली रेसिपी जो कि आपको सुनाएंगे आपकी आज अंशिका। तो चले
8: आइए लिसनर्स, चलते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और मैं हूँ आपकी RJ समता
7: और मैं हूँ RJ अंशिका।
6: जी हाँ, तो आइए चलते हैं आज की पहली रेसिपी को सुनते हैं, क्योंकि बारिश है तो भाई कुछ चटपटा सा चाय कॉफी के साथ खाने वाला ही आइटम अच्छा लगता है। तो वो आइटम क्या है? एनी गेस, यानी कि वाकई में वो है आपके लजीज से पकौड़े।
7: बिल्कुल, आज मैं आपको बनाऊंगी बताऊंगी
6: आपको बनाऊंगी
7: नहीं
6: आपको बनाऊंगी फिर मैं खाऊंगी
7: नहीं मैं कहने वाली थी बताऊंगी सॉरी स्लिप हो गया थोड़ा। आज मैं आपको बताऊंगी पनीर के पकौड़े। लेकिन नॉर्मली आपने जो पनीर के पकौड़े खाए होंगे उसमें क्या होता है कि पनीर जो कट किया होता है वो चौकोर मोटे मोटे टुकड़ों में कट किया होता है और उसी के पकौड़े बनते हैं। और उसमें फिर शिकायत होती है कि मसाले जो थे वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुए, अच्छे नहीं लग रहे थे। जब आप खा रहे हैं, कट कर रहे हैं तो सादा सादा सा लग रहा है। बहुत लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं, इसलिए आज हम आपको पनीर पकौड़े अलग तरीके से बताएंगे। अलग तरीके से यानी कि पनीर को मैश करके। तो सबसे पहले आइए इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में क्या है कि आपको लेना है 250 ग्राम पनीर। अगर आपके घर में चार लोग हैं तो आपको 250 ग्राम पनीर लेना है। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं तो उस हिसाब से आप उसको और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ले लेना है 1 कप बेसन और उसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा 2 बड़े चम्मच। इसी के साथ अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये तीनों ही चीज़ आपको आधा चम्मच ले लेना है। उसके बाद में 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला लेना है हमें, हरा धनिया लेना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, नमक ले लेना है और तेल ले लेना है आपको फ्राई करने के लिए। ये हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स। आइए बनाते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पनीर ले लेना है और पनीर को टुकड़ों में कट कर लेना है। कट करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसमें मसाले डालने हैं। मसालों में जैसे कि हरी लाल मिर्च हो गई, थोड़ा सा नमक हो गया, और नमक के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें डाल देना है थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, हरा धनिया, नमक, और नमक के बाद में सबसे लास्ट में हमें इसमें डालना है चावल का आटा और फिर इसे अच्छी तरीके से
6: चावल का आटा आपको पता है कि क्यों डालते हैं? चावल का आटा डालते हैं कि पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी हो जाए थोड़ा सा।
7: अब आपको क्या करना है कि आपको इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, मतलब कहीं भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इन सारे ही मसालों को डाल करके अच्छी तरीके से, जैसे आटे, जब हम आटे को तैयार करते हैं तो एक डो जैसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको डो जैसा इसको बना लेना है। जब आप उसको अच्छे से मैश करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा मिक्स होकर के डो बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। जब आपका डो रेडी हो जाएगा, इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दीजिए और उसके बाद में 10 मिनट बाद आप इसको फ्राई करने के लिए ये रेडी हो जाएगा। अब हमें फ्राई करने के लिए बेसन को रेडी करना है।
6: अच्छा,
7: बेसन रेडी करना है आपको, बेसन ले लीजिए। बेसन में भी आप चाहें तो थोड़ा सा चावल का आटा डाल सकते हैं, वैसे तो आपने उसमें डाला हुआ है लेकिन बेसन में भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ईनो का एक पैकेट ले लेना है और उसमें से आधा पैकेट से भी कम आपको ईनो जो
6: खमीर के लिए,
7: हाँ, वो इसमें डाल देना है तो फूले फूले अच्छे
6: स्पंजी वो बनते हैं,
7: स्पंजी बनेंगे।
6: सोडा अगर आप लोग डालते हैं पकौड़े में तो सोडा जो होता है ना वो घी और तेल को ज्यादा पीता है, तो आपके जो जो आप बनाते हैं पकौड़े ना वो ज्यादा ऑयली हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इनो डाल दिया है तो इनो ज्यादा जो ऑयल है ना वो पीता नहीं है, मतलब बहुत ही स्पंजी लगेंगे, पफी लगेंगे लेकिन उसमें ऑयल नहीं रहता है।
7: जी मैम, अब आइए आपको बताते हैं कि क्या करना है। आपने इसको डाल दिया और अच्छे से उसको आपको फेंट लेना है। थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दीजिएगा, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपने उसमें भी नमक डाला हुआ है जो आपकी स्टफिंग है, इसलिए इसमें आपको नमक थोड़ा सा कम करना है। नमक डाल दिया आपने, इनो डाल दिया, बेसन है आपका, उसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया आपने। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद में थोड़ा सा, मतलब सिर्फ 2-3 मिनट हमें इसे फेंटना है। 2-3 मिनट फेंटने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको अब ये घोल जो है आपका वो रेडी है। आपको क्या करना है अब कि जैसे छोटी छोटी हम पूरियों के लिए लोई लेते हैं ना, वैसे आपको छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं ज्यादा छोटी नहीं, मीडियम लोई आपको ले लेनी है। उसको अच्छे से गोल कर लेना है आपको हथेलियों पे तेल लगा करके, और फिर इसे एक एक डिप करके आपको पकौड़ियाँ तलनी है। सुनहरी होने तक आपको आपकी पकौड़ी फ्राई करनी है। जब वो पूरी सुनहरी हो जाएगी उसके बाद में आपको इसे अलग कर लेना है, लेकिन पहले टिश्यू पेपर पे रखिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सोप कर ले। लेकिन हमारी पकौड़ियाँ जो होती हैं वो अधूरी होती हैं
6: चटनी के बिना।
7: तो अब चटनी बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी पकी हुई इमली से मीठी चटनी बनाना, क्योंकि जब बात आती है पकौड़ों की तो हमें मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो आइए, मीठी चटनी के लिए भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो आपको बता देते हैं। जो कि पकी हुई इमली चाहिए हमें आधा कप पकी हुई इमली ले लीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा आप 1 कप, और उसके बाद में चीनी ले लीजिएगा 1 चम्मच से भी कम, क्योंकि गुड़ में अपनी अलग मिठास होती है। थोड़ा सा काला नमक ले लेना है आपको 1/2 छोटा चम्मच, सफेद नमक भी ले लेना है, और भुना हुआ जीरा ले लेना है 1 छोटा चम्मच, और अगर आपके पास थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है तो वो भी ले लीजिए, और गरम मसाला भी। ये दोनों ही चीजें हमें 1/2 चम्मच से भी कम लेनी है। अब आइए बताते हैं कि बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इमली को 1 कप गर्म पानी में कम से कम 1/2 घंटे के लिए आपको भिगो के रख देना है। उसके बाद में क्या करना है कि जब इमली पूरी सॉफ्ट हो जाएगी तो उसे अच्छी तरीके से आपको हाथों से मसल करके क्या करना है कि उसका पल्प जो है वो आपको निकाल लेना है और बीज है उनको अलग कर देना है। अब आपके पास उसका पल्प हो गया है, रेशे सारे आपको इसके फेंक देने हैं, और एक पैन लेना है, उसमें इमली का पल्प 1/2 कप पानी डाल के गर्म होने के लिए कुछ देर आपको गैस पे रख देना है, बस 5 मिनट तक। जब वो पूरा उबल जाए और आप देखें कि हल्का हल्का वो थिक हो रहा है, यानी गाढ़ा हो रहा है, तब आपको क्या करना है कि उसमें गुड़ और चीनी को डाल देना है। गुड़ को आपको पहले से उसको थोड़ा तोड़ के रख लीजिएगा, पर आपको उसमें डालना रहे, और इसी इस जो बैटर है गुड़ चीनी और इमली का, उसको आपको बिल्कुल धीमी आंच पर कम से कम 15-20-25 मिनट के लिए तो होने ही देना है। 20-25 मिनट के बाद जब आप उसको ढक्कन को हटाएंगे पैन से, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से पक चुका होगा। इमली की चटनी और ये जो गुड़ वाली होती है, ये कैसे हम जाने कि ये पूरी तरह पक चुकी है? तो इसकी एक टेक्निक है लिसनर्स कि ये नीचे पैन में लगने लगती है जब ये पूरी तरीके से पक चुकी होती है। तो वो जानने का तरीका है कि वो पूरी तरीके से पक चुकी है। अब जब ये पूरी तरह पक चुकी है, इसके बाद आपको इसमें काला नमक, सफेद नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला मिला देना है इसमें, मतलब मिक्स कर देना है। उसको मिक्स करने के बाद में फिर आपको इसे 5 से 6 मिनट पकाना है। अगर नीचे बहुत ज्यादा लग रहा होगा, जैसे आपको लगता है कि पूरा पक चुका है और फिर हमने ये मसाले मिक्स किए हैं, तो जो कि इन मसालों का जो एक ऑयल है वो भी उस चटनी में जाना जरूरी है, इसलिए आप क्या करेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल करके और ये सारे मसाले मिक्स करके 5 से 6 मिनट इसे फिर से धीमी आंच पे उसको होने देंगे, पकने देंगे। जब ये पूरा पक जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है कि अच्छे से वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपको इसे कटोरी में या किसी भी बोल में निकाल लेना है। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए,

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और आ गई आपकी RJ समता और आइए अब चलते हैं सीधे सीधे मास्टर शेफ यानी कि हमारी रंजना मैम की रेसिपी को सुनेंगे एंड देन हम आपको बताएंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट एक अपनी रेसिपी को भी। तो बस देर किस बात की, आइए सुनते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को।
4: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके लिए स्पेशल राज कचौड़ी और ढोकला लेके आई हूँ। यूँ तो ढोकले की जो है रेसिपी बहुत पुरानी है, एक दो बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन इस बरसात के मौसम में ढोकले का बहुत चलन रहता है और सभी लोग की डिमांड रहती है कि शाम के समय नाश्ता करते समय अगर ढोकला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और राज कचौरी जो है ये बड़ी पॉपुलर डिश है और इसको आप कानपुर में जो तिवारी रेस्टोरेंट है उसमें हम लोग जाते थे, वहाँ बिरहाना रोड पे है, उसमें खा के आते थे क्योंकि उनके यहाँ की स्पेशल राज कचौड़ी बहुत अच्छी होती थी। परंतु फिर धीरे धीरे हम लोग ने कोशिश की और अब हम आपके सामने राज कचौड़ी ला रहे हैं। ये आप ज़रूर बनाइएगा, थोड़ी सा सामान इसमें ज़्यादा लगता है, थोड़ी मेहनत भी रहती है, पर यदि आप एक बार बना लेंगी तो बार बार अपने मेहमानों को ये राज कचौड़ी ज़रूर खिलाएंगी और हमारा ख्याल है आप सबको अलग से भी इनविटेशन देके ये डिश खिलाएंगी। चलिए अब सामान लिख लीजिए। 1 कप मैदा लेंगे और 3/4 प्याला आप सूजी लेंगी और हल्का हल्का पानी का छींटा देकर इसको हम मुलायम मुलायम सान लेंगे और सान करके कपड़े से ढककर हम अलग रख देंगे। अब क्या करेंगे कि बेसन लेंगे हम 1/2 कप और इसमें खाने वाला मीठा सोडा 1/4 चम्मच डाल देंगे और इसमें अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा फूड कलर पीले रंग का डाल देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे हल्का सा पानी डाल करके मुलायम सान करके अलग रख लेंगे। इसके बाद अब इसके अंदर राज कचौड़ी में हमें क्या भरना है, हम सफ़ेद चना भी भर सकते हैं, सफ़ेद मटर भी भर सकते हैं और आलू आपने देखा है उबला हुआ आलू मसालेदार छौंका हुआ वो भी भर सकती हैं, हरा मिर्च हरा धनिया है, छोला जो है वो मसालेदार नींबू उबू निचोड़ के हरी मिर्च हरा धनिया डाल के जो बनता है वो बना सकती हैं। आप फिलिंग जो है आप जैसे भी रख लीजिए, इसमें आप अनारदाना भी डाल सकती हैं और सेव डाल सकती हैं, फ्रूट्स भी कोई डाल सकती हैं, दही और मीठी चटनी ये बिल्कुल अनिवार्य है। इससे एक तो राज कचौड़ी सुंदर बहुत लगती है और दूसरे खाने में स्वाद भी बहुत रहता है। अब आप क्या करेंगी कि जो आपने सफ़ेद आटा मतलब जो आपने आटा सान के सूजी के संग रखा है उसको हल्के हाथ से अपनी हथेली में रह के थोड़ा मुलायम करेंगी, इससे ये खूब अच्छे से सन जाएगा और एक सार होके कुछ ना कुछ तो फूल जाएगा। इसके बाद आपने जो पीला बेसन वाला स्टफिंग रखी है इसके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और अलग रख लें। अब आप क्या करेंगी कि जो आपने सफ़ेद आटे की पूड़ी है उसके अंदर ये गोली बेसन वाली भरिए। भरने के बाद इसको आप जो है उसको करें क्या कि अलग सब रख लें। उसके बाद एक एक पूड़ी आप सेकेंगी। इसके लिए आप एक टूथपिक रख लीजिए। आपकी कचौड़ी जैसे ही फूले वैसे ही आप बिल्कुल बीचों बीच जो है जरा सा छेद कर दें टूथपिक से। नीचे नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर एक परत में हल्का सा छेद कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी पूड़ी जो है वो फूली भी रहेगी, कुरकुरी भी हो जाएगी और खूब अच्छी फूलती है। आप जो है जैसे खस्ता कचौड़ी बनती है उतनी बड़ी बड़ी आप बना करके ऐसे सब रख लेंगी। और आप एक एक करके पूड़ी फुलाइएगा क्योंकि आपको टूथपिक से हल्का सा बीचों बीच एक छेद करना ही करना है। अब आप जो है जब सब बन जाए आप उसको तोड़ के खुद देखिएगा। एक आप सेकिएगा, सेकने के बाद हल्का सा ऊपर छेद करिएगा, छेद करने के बाद मध्यम आंच में इसे फिर से सेकिएगा और पलट करके फिर सेकिएगा। ये देखिएगा कि गुलाबी गुलाबी हो गई है, निकालिए देखिए। ये ठंडी होने पर भी मुलायम नहीं पड़ेगी, ये कड़ी ही बनी रहेगी, जैसे पानी के बताशे आपके कड़े रहते हैं। अब आप इसको क्या करेंगी, स्टफिंग आपकी तैयार है, नहीं तैयार है तो इन सबको सेकने के बाद आपने सब तैयारी कर रखी है, आप स्टफिंग बना लीजिए। इसको आप प्लेट में रखिए, कचौड़ी को फोड़िए, उसमें सब सामान भरिए। भरने के बाद ऊपर से मीठी चटनी, हरी धनिया सब डाल के सजाइए। अनार डालिए, दाना डालिए, सेब डालिए और आप अपने मेहमानों को खिलाइए। देखिएगा कि ये कितनी स्वादिष्ट और कितनी सुंदर आपकी राज कचौड़ी बन जाती है। तो मुझे आशा है कि ये वाली डिश आपको बहुत पसंद आएगी और पसंद आनी भी चाहिए क्योंकि ये बड़ी स्पेशल डिश है, हर कोई नहीं खाता बनाता है, पर आपके लिए मैं लेके आई।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स। तो आइए अब सीधे चलते हैं, अभी सुनी आपने मास्टर शेफ की एक रेसिपी, आइए अब चलिए सुनते हैं मास्टर शेफ की दूसरी रेसिपी और जानते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या है।
5: चलिए अब दूसरी डिश लिखते हैं हम, ढोकला बनाना। इसको खमण ढोकला कहते हैं। यूं तो बाजार में बने बनाए पाउडर आते हैं इंस्टेंट, आप घोलिए और बना लीजिए। पर मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, जो भी चीज़ बाजार में आती है वो प्रिजर्वेटिव होती है, उसमें कोई ना कोई इतने दिन रखने का समय सीमा रहती है, तो वो कोई ना कोई तो नुकसान करती ही करती है। तो आप जहाँ तक हों, अगर जो भी 89.6 FM सुन रहा है, मेरी तो उनसे दरख्वास्त है या अपील है कि वो मेरी डिशों को सुने और बनाए। तो उसमें कोई भी बाहर की चीज़ हम नहीं यूज़ करते हैं, और आपको भी मना करते हैं कि बंद पैकेट इंस्टेंट वाला मत यूज़ करिए। सरल तो बहुत रहता है और इजी भी है, पर एक बार थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो आप बाज़ार से अच्छा बना लेंगी। तो चलिए सामान लिख लीजिए। सबसे पहले तो हम एक कप पानी लेंगे और एक टेबल स्पून चीनी लेंगे, एक चौथाई चम्मच साइट्रिक एसिड जिसे हम नींबू का फूल भी कहते हैं वो ले लेंगे। इन सबको क्या करेंगे, उस जो प्याले में पानी लिया है उसमें चीनी डाल देंगे और साइट्रिक एसिड डाल देंगे और इसको घोलने के लिए रख देंगे। अब क्या करेंगे कि हम 6-7 हरी मिर्च लेंगे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे, जिसे कि हम सिल पर महीन अलग अलग पीस लेंगे और उसको अलग रख देंगे। बेसन हम 2 कटोरी लेंगे या 2 प्याला लेंगे। बेसन को हम छन्नी से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई गुलटी उल्टी पड़ी होगी तो वो हम छानने से निकल जाएगी, क्योंकि बरसात में अक्सर सब चीज़ सील जाती है और गुठली सी पड़ जाती है। सामान में आप हींग लेंगी 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, और 1 टेबल स्पून सरसों का तेल रिफाइंड तेल लेंगी आप। कोई भी आप तेल, सरसों का मत लीजिएगा क्योंकि वो कच्चा रहता है तो उसमें स्मेल आती है, आप कोई भी एक रिफाइंड तेल ले लेंगी। और अब आप क्या करेंगी कि एक बाउल में बेसन जिसमें छाना है वो रख लेंगी, उसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मिला देंगी, हींग मिला देंगी, हल्दी मिला देंगी, और जो रिफाइंड तेल है 1 टेबल स्पून वो आप मिला देंगी। और सबको अच्छे से मिलाने के बाद जो साइट्रिक एसिड का आपने पानी अलग बना के रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा डाल के बेसन में डाल के फेटेंगी और एक ही तरफ चलाइएगा। 10 मिनट तक आप उसको फेटेंगी और उसके बाद उसको अलग रख देंगी। अलग रखने के बाद उसको 10 मिनट तक रेस्ट देंगी। रेस्ट देने के बाद आप इसको अलग रख लेंगी। अब आप क्या करेंगी, कढ़ाई में पानी डालेंगी, उसको खोलने रख देंगी, और एक जिसमें आपको ये ढोकला बनाना है उसमें आप तेल लगाएंगी, ग्रीस करेंगी और उसको अलग रख देंगी। अब आप क्या करेंगी, कि जब आपको 10 मिनट हो गए हैं तब आप एक रेगुलर इनो का पैकेट इसमें डाल देंगी और नमक आप आधा चम्मच ज़रूर डाल देंगी। अब आप इनो डालिएगा तो एक चम्मच चाय का पानी भी डाल दीजिएगा। इससे ये होता है ये बड़ी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। आप इसको घुमाइए चम्मच से और तुरंत आप जो आपने टिन तैयार करा है उसमें आप इसको बैटर को डाल दीजिए। जब आप बैटर को डाल देंगी तब पोंछ करके आप तुरंत इसको ढक के और कढ़ाई में जिसमें या स्टीमर हो या ढोकला बनाने वाला हो आप उसमें जिसमें भी आपके पास सुविधा हो आप उसमें ढक देंगी और 10 से 15 मिनट तक आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगी। अब आपने देखा होगा कि जो ढोकला होता है उसके ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा तड़का पड़ा रहता है। तड़के के लिए क्या करेंगे, कढ़ाई में हम 3 या 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। उसमें जो है जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम बनारसी राई डालेंगे। बनारसी राई डाल करके उसमें आप हरी मिर्च चाहे लंबी लंबी चीर के चाहे छोटी छोटी काट के ये आपकी इच्छा पे है वो डाल देंगे। उसके बाद उसमें हम 1 टेबल स्पून चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी अगर बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। करी पत्ता डाल देंगे और 1 से 1.5 चाय का चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और 1 उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसे ठंडा होने रख देंगे। अब आप जो है 1 टूथपिक डाल के देखिए, आप खोलिए कढ़ाई को कि आपका ढोकला अगर हो गया है तो टूथपिक में चिपकेगा नहीं। अगर चिपक रहा है तो आप 5-7 मिनट और चढ़ा दीजिए। तैयार ढोकले को आप तुरंत कंटेनर से नहीं निकालेंगी, आप उसको थोड़ा ठंडा होने देंगी। तुरंत निकालेंगी तो वो टूट जाएगा। अब आप उसको ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद उसमें जो आपने ये तड़के वाला पानी डाला है थोड़ा डाल दीजिए। अपने हिसाब से कट का निशान बना दीजिए, जितने छोटे या बड़े टुकड़े करने। उसके बाद आप क्या करेंगी, फिर थोड़ी देर बाद 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। ऐसे करके 5-7 बार ये आप प्रोसेस करिएगा। इससे क्या होगा, पानी अंदर तक चला जाएगा और हमारा ढोकला बहुत मुलायम स्पंजी और बाजार ऐसा बनेगा। इसके बाद आप जो है इसको आप अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, बनाइए, सबको खिलाइए। अगर आप चाहती हैं तो छोटी छोटी कटोरियों में ये बैटर डाल के ऐसे भी बना सकती हैं। उसको कटोरियों को आप डाल दीजिए, उसके बाद प्लेट रखिए और पानी में खोलते हुए ढकते हुए रख बना लीजिए। ऐसे कटोरियों में अलग अलग अलग से सुंदर लगेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको बनाती हैं और कैसे प्रेजेंट करती हैं।
4: तो ये थी हमारे साथ हमारी मास्टर शेफ, जिन्होंने बताई बहुत ही अच्छी और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज। आई होप कि आप सभी ने भी इंजॉय किया होगा लिसनर्स। तो आइए अब चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, और बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
6: और मैं हूँ आरजे अंश।
5: तो भाई आ गए हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेक्शन में, यानी कि कुछ ऐसे किचन हैक्स एंड किचन टिप्स देने के लिए। सबसे पहले तो जो भी हमारे चैट बॉक्स में आ गए हैं, जैसे कि मनी शर्मा, अरविंद जी, धर्मेंद्र जी और हमारी जो ब्यूटीफुल सी हमारी फीमेल लिसनर्स हैं, वो अभी तक नहीं आई थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आया करिए, क्योंकि आज के दिन तो मुझे लगता है कि खाना खजाना जो किचन की बहुत ज़्यादा वाली फेवरेट चीज़ें होती हैं, वो हमारी महिलाओं की एक स्पेशल जगह होती है घर में, वो होता है किचन, जिसमें वो दिन में तीन बार तीन तीन घंटे बिताती हैं। तो बाकी ये कहना कि उनके लिए किचन जो है वो मायने नहीं रखता, ऐसा बात नहीं है, काफ़ी टाइम वो लोग किचन में बैठती हैं। तो आज के दिन का स्पेशल जो प्रोग्राम होता है हमारा खाना खजाना, वो हमारा मंडे के दिन होता है और स्पेशली फॉर वुमेंस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के कुछ किचन टिप्स जो कि हमारे क्या होने वाले हैं। देखिए, खाना बनाना एक अलग सी कला होती है, ये सभी को पता है, लेकिन उस कला को अगर हम थोड़े से जैसे कहते हैं ना कि
6: अलग तरीके से,
5: एक वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा था, मैं सोच रही थी उस वर्ड को यूज़ करूँ, अगर उस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं या उसको बनाते हैं तो वो एक उत्सव बन जाता है हमारे किचन में, एक मामूली सी चीज़ भी। जैसे कि अगर आप कुकर से पानी बाहर निकलने की ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये सबके घर में होती है, अगर दाल या चावल उबालते समय प्रेशर कुकर की सीटी को बार बार पानी बाहर आता है, तो कुकर में सामग्री के साथ एक छोटी स्टील की कटोरी डाल दें। इस कटोरी को डालने के बाद में आपकी दाल जो है वो उनफेगी नहीं और उसकी भाप बाहर नहीं गिरेगी।
6: ओके।
5: हल्की सी छोटी सी कोई स्टील की कटोरी ऐसी खाली उसमें डाल दो, ठीक है। दूसरा है कि दही फटने से उसको कैसे बचाना चाहिए, ये बताते हैं कि ग्रेवी वाली सब्जी में दही डालते समय अक्सर वो फट जाती है। कई बार देखा है कि दो प्याज़ा पनीर हो गया, शिमला मिर्च की सब्जी हो गई, आलू दम हो गया, जिसमें काफ़ी लोग क्या होता है ना कि वो दही दो चम्मच डालते हैं
6: जी,
5: तो दही को डालते ही दही फट जाती है और उसकी जब हम वो सब्जी बन जाती है तो वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स बन के उसमें हो जाती है सब्जी, वो दिखने में बड़ी ख़राब लगती है और खाने का टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए दही को सब्जी में मिलाकर पहले एक उबाल आने दें, उबाल आने के बाद ही नमक डालें और नमक डालते ही तुरंत दही फट जाती है, इसीलिए नमक को पहले ना डालें, पहले आपने सब्जी डालने के बाद में दही को डालने के बाद में उसको लगातार चलाते रहना है और सब्जी के एंड में आपको नमक डालना है, जिससे दही नहीं फटेगी। सब्जी का जला हुआ स्वाद को कैसे छुपाएं, अक्सर ऐसा होता है कि सब्जी जल जाती है और उसका स्वाद थोड़ा सा अच्छा नहीं रह जाता है। अगर दाल या सब्जी का तड़का थोड़ा जल गया है तो उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी मिला दें। घी की खुशबू से जले हुए तड़के का स्वाद महक काफी हद तक छुप जाती है।
6: वाह, ये तो काफी अच्छा है। मतलब अक्सर होता है कि लगता है कि अब क्या करें, अब तो स्मेल आ रही है, अगर गेस्ट को भी सर्व करना है तो होता है कि अब कैसे सर्व करें, तो ये तो अच्छी टेक्निक।
5: लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी कल से जो है ना वो श्राद्ध भी लग चुके हैं, तो हर घर में पूरी जरूर बनेगी, हर घर में पूरी जरूर बनती है। तो क्या होता है कि जब तक पूरी फूली ना हो तब तक उसे खाने का मजा नहीं आता है। तो क्या करना है कि जब आपको आटा गूंदना है, जब आप आटा, आप एक डो बनाते हैं आटे का, तो उसमें ना हल्की सी, मतलब जैसे अगर आपने 8-9 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच, इसमें क्वांटिटी बता रही हूँ, 1 चम्मच आपने चीनी डाल देनी है, जो चीनी होती है ना नॉर्मल, चीनी डाल देनी है और फिर आटे को डो बना लेना है। पूरी इतनी फूलेगी कि आप खाते खाते नहीं थकेंगे और पूरियां फूलते फूलते नहीं थकेंगी। ये मेरा हैक है, आप जरूर से उसको एक बार बनाइए, खाइए और फिर चैट बॉक्स में आके हम सभी को जरूर से बताइए।
6: बिल्कुल मैम, मैं तो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि अभी श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स बनेगी सभी के घरों में।
5: या ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल श्राद्ध में ही बनती है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब हर घर में पूरी जरूर ही बनेगी, तो अभी आपको मौका है इसको ट्राई करने का, जरूर ट्राई करिएगा और इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों को दे इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
6: दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में, क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब?
6: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे

हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:06 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो ज्ञान असली 9.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो शॉक की उन्होंने मौजूद है आप सभी के साथ लेकर के आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा यानी कि फरमाइशो वाला वो कार्यक्रम जिसके अंदर होते हैं आपके अपने डिमांडेड गाने, आपकी अपने फरमाइश, और फरमाइश करने के लिए करना पड़ता है आपको कॉल वही अपना पुराना स्टूडियो वाला नंबर 6393316429। आई रिपीट 6393316429। इस पे आप मिलाएंगे अपनी फोन को डायल करेंगे और भेज देंगे हम तक अपने गाने को। गाने को भेजने का सिंपल सा एक प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है, उसमें बस इतना ही करना है कि आपको ये नंबर डायल करना है, फोन वाले को बताना है यानी कि जो फोन उठाने वाला है, कॉल उठाने वाला है, उसको बताना है अपना नाम, किस जगह से आप बोल रहे हैं, कौन सा गाना है, गाने के बोल कौन से हैं, और अगर आप बता सकते हैं किस सिंगर ने गाया है या वो किस फिल्म से है तो और भी ज्यादा माशाल्लाह हो जाएगा। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे पहले गाने की ओर और हम इंजॉय करते हैं हमारे मोहम्मद मुजीब जी की फरमाइश जो सुनना चाह रहे हैं, मैं जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जोरू का गुलाम से आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गाना, गोविंदा और ट्विंकल खन्ना पर फिल्माया गया सॉन्ग। मिलते हैं इस गाने के बाद अगली फरमाइश को लेकर के जो कि हमारे रिजु जी की होने वाली है, तो बने रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे अभिजीत भट्टाचार्य और स्मृति चौहान की आवाज में समीर साहब के लिखे गए बोल हैं। आदेश श्रीवास्तव जी ने दिया है संगीत। जोरू का गुलाम 2000 में फिल्म रिलीज की गई थी एंड मोहम्मद मुजीब जी की फरमाइश थी। तो क्या ख्याल है, अब चलते हैं चैट बॉक्स में। इससे पहले कि हम अपना अगला गाना ट्यून कर लें, तो हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ गए इट्स कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं। रिजु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद मुजीब जी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून राजयुनति जी, कैसी हैं आप? मैं भली चंगी, आप बताइए आप कैसे हैं? वेरी वेरी थैंक यू, ओके, ऑल राइट, वेलकम। आपका गाना बहुत ही खूबसूरत था। एंड धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवास विकास जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं धर्मेंद्र जी। एंड लिखा है उन्नति जी, गुड आफ्टरनून टू यू। जारा खान हमारे साथ जुड़ गई, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो रिया, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप? एंड बाबू अंसारी अहमदपुर बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम जी, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गाना सबको झूमने वाला है, क्या बात है, मुझे आपके गाने का इंतजार है। मैं भी तो देखूँ ऐसी कौन सा गाना है जो सबको झुमाने वाला है। एंड इट्स कुमार जी लिख रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून आज हनोनी किन होनी या कुछ नहीं होनी, सब गाना बजा रहे हैं और वो भी आपकी फरमाइश पर। तो उठाइए अपना फोन, डाल कीजिए 6393316429, क्योंकि हमारा तो काम है आपकी फरमाइशों को ट्यून करने का। और इसी के साथ, क्योंकि हमें अपना काम याद आ चुका है, तो आइए एंजॉय करते हैं हमारे रिजु जी की फरमाइश, जान से गुजरते हैं धुरंधर दा रिवेंज से, एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगले गाने पर जो कि हमारे सुनील कुशवाहा जी की है। तो अगर आपकी फरमाइश हम तक नहीं आई है बॉस, तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वक्त है आपके पास सिर्फ 3 से 4। उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए और भेज दीजिए अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम और गाने का नाम।

और ये फरमाइश थी हमारे रिजु जी की, एनसी के साथ। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुनील कुशवाहा की, और वो सुनना चाहते हैं कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। अक्षय कुमार पे फिल्माया गया गाना है, इसी के साथ अश्विनी भावे भी है, कुमार सानू और सादा सरगम की आवाज है। इंजॉय करते रहिए। समीर साहब के लिखे बोल है और अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393 1649 पर, अपनी आशादी के पास रेडियो 89.6 FM पर।

हाँ जी, और ये फरमाइश थी हमारे सुनील कुशवाहा जी की, और ज़ारा खान ने जैसे ही हमसे कहा कि मैम हमारी पसंद का गाना बजा दीजिए, वैसे ही उनकी पसंद का गाना हमारे पास भी था, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही हमारी गुलफ़िशा जी और हमारी ज़ारा जी की तरफ से मैसेज आता है, ऑलमोस्ट हमारे पास गाना पहले ही उनका मौजूद होता है। तो फिलहाल सुनील कुशवाहा जी के बाद आइए पेश करते हैं आपके लिए हमारी ज़ारा खान की फरमाइश, इसके बाद हम चलेंगे हमारे शारदा प्रजापति के तरफ, और इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी, बाबू अंसारी जी, एहसान जी, रई साहब, बबलू यादव, मनीष शर्मा, राजू सलमानी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा पे, राजीव नदी, और ये है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज सुबह जब मैं जगी मस्त हवा कहने लगी, यही फरमाइश हमारी ज़ारा जी की, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, मैंने बेशक आपका नाम लिया है और आपका नाम है अरीबा शेख जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ और आपके दोस्त यार भी आई थिंक ठीक ही होंगे, वो खुद ही आपको जवाब देने वाले हैं बस कुछ ही देर में। एंड हमारे साथ पप्पू जी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून टू यू। मनीष शर्मा लिख रहे हैं, उन्नति जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करते हैं हम कॉल ट्यून गोना में। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास आया, यानी कि अगली डिमांड हमारे पास आई है मथुरा से, और ये फरमाइश हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी की, तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, जो हमारे गोंडा से आई है, यानी कि आवाज विकास से आई है, धर्मेंद्र मोहन जी की। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और ये फरमाइश थी हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति की जो हमें सुन रहे हैं मथुरा से, यानी कि ब्रज से। बहुत ही प्यारा सा गाना था जिहाल मस्किन, और हमारे अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड आते ही सवालों की झड़ी लगा दी है। पूछना था ये पहलू का होता है भैया। पहलू का मतलब होता है बगल में, पास में बैठना, यानी कि अगर आपके पास में कोई बैठा हुआ है तो आप कहेंगे हमारे पहलू में बैठे हैं वो। अक्सर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कुछ गजलों में, शायरी में, नगमों में, और अक्सर आपको वहीं सुनने को भी मिलेगा। तो अगर आपके कोई बगल में बैठा है तो आपके पहलू में बैठे हुए हैं। तो फिलहाल अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है ऑफकोर्स हमारे धर्मेंद्र मोहन जी का, तो आइए एंजॉय करते हैं। गोविंदा पर फिल्माया गया गाना, उन्होंने फरमाइश कर दी है। गाने का नाम है फिर तोते से बोली मैं ना क्या बोली। ये तो गाने में सुनकर देख लीजिएगा, हद कर दी आपने। फिल्म से एंजॉय कर रहे हैं, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

रखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

अनुराधा पॉटवाल, उदित नारायण, सुदेश भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश थी, हद कर दी आपने, फिर तोते से बोली मैं ना, क्या बोली क्या कहना। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है अहमदपुर से, बाराबंकी से, और जैसा कि हमारे बाबू अंसारी जी ने कहा था कि मेरा गाना सब सुन के झूम जाओगे, तो गाने का नाम भी है बेपरवाह झूम जा। जी हाँ, तो चलिए बेपरवाह हो जाते हैं। कभी कभी ना परवाह करना भी बहुत परवाह करना होता है, ऐसा हम ही कह सकते हैं आपसे। तो एंजॉय करते रहिए, कॉल अच्छी गुंडा, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और अगर आपने बेपरवाह होकर झूम लिया हो तो क्या ख्याल है आगे बढ़ा जाए, आइए बढ़ते हैं आगे के। और जबरदस्त शो लिखा है मनीष शर्मा जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गाना बहुत जल्द प्ले किया जाएगा अरीबा जी एंड मनीष जी, और इंतजार करते रहिएगा क्योंकि इंतजार का पल हम गाने देते हैं। एंड अगली फरमाइश हमारे पास आई है एहसान जी की, तो आइए एहसान जी की फरमाइश को इंजॉय कर लेते हैं और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। और किन किन की फरमाइश उसके बाद वो भी हम आपको बता जाते हैं ताकि पेट में तितलियां ना उड़े। रई साहब हैं, बबलू यादव हैं, मनीष शर्मा हैं, राजू सलमानी हैं, निशा जी हैं, अरीबा जी हैं, उस्मान खान हैं। तो अपनी बारी का कीजिए इंतजार और इंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा विद राजनीति।

हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे एहसान जी की फरमाइश, तो कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि कटरीना कैफ आ चुकी है, यानी कि आपकी अफगान चली भी आ चुकी है। रईस साहब की फरमाइश पर कॉल ट्यून गोंडा में मचाने के लिए धूम। हम मिलते हैं इस गाने की उस पार लेकर बबलू यादव जी की फरमाइश, तो जाइएगा नहीं कहीं इस शो को छोड़कर, नहीं तो हो जाएगा बहुत मसला। समझ गए ना हुजूर?

0: और ये फरमाइश थी हमारे रईस साहब की। एंड अरविंद जी का कहना है कि भैया कॉल कर लें, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन हम आपको इतना सा इन्फॉर्म कर दें कि आप काफी देर से आए हैं और काफी लेट हो चुका है आपकी कॉल के लिए। अगर आप चाहते तो कॉल कर लीजिए, वक्त रहता है तो हम आपके गाना जरूर से प्ले करेंगे। गुलाबशाह सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई है। हम आ गए बानी, आइए आइए, आपका स्वागत कर तानी। वैसे भोजपुरी मैं भी सीख रही हूँ गाइज। एंड गुड आफ्टरनून उन्नति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड उन्नति मैम, जलेबी खाने में व्यस्त है। देखो, भूखे बच्चे को ऐसे जलेबी दही याद नहीं दिलाया जाता है, ये बहुत गलत बात होती है। और स्पेशली बरेली वालों को तो दही जलेबी का नाम भी ना लेना उनके सामने, हमें भूख लगाती है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। पंजाब चली जाऊंगी, महाराष्ट्र चली जाऊंगी, पंजाब जाके लस्सी पी के आऊंगी और महाराष्ट्र जाके बड़ा पाव खा के आऊंगी। अगर आपको चलना है तो ट्रेन की टिकट बुक कराइएगा, अपनी भी मेरी भी। और ये फरमाइश तुम्हारे बबलू यादव जी की। आइए एंजॉय करते हैं, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: कहां जाएगी छमक छल्लो।

और ये फरमाइश थी हमारे बबलू यादव जी की। और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है जुबिन नौटियाल की आवाज में इमरान हाशमी पर फिल्माया गया गाना। ऑफ कोर्स फरमाइश हमारे मनीष शर्मा जी की है, लुट गए। अब गुलाब शाह जी का कहना है कि हम करें कॉल, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपसे भी वही कहना चाहेंगे कि अगर वक्त रहेगा तो ही हम आपका गाना बजा पाएंगे, नहीं तो तहे दिल से माजरा चाहेंगे।

एन जी, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। चाइना टाउन से आप सुनने जा रहे हैं वो सोता हुआ गाना, जिसको अनु मलिक साहब ने अपने संगीत से जगाया था। गाने का नाम है छम्मा छम्मा। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। राजू सलमान जी की फरमाइश है, हम मिलेंगे निशा की फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अंजी, और ये वही गाना है जिस पर ना हमारी एक्ट्रेस रेडी थी डांस करने के लिए और ना हमारा राइटर रेडी था गाने को लिखने के लिए, लेकिन मनाया गया है, बहुत ज्यादा मनाया गया है कि भैया डांस कर दीजिए, तब जाकर कहीं उर्मिला जी ने तैयार हुआ है कि चलो हम डांस कर देते हैं। एंड अलका जी ने इसको गाया है और हमारे समीर साहब ने इस गाने को लिखा है, क्योंकि अनु मलिक साहब ने उनसे कहा था कि भैया तुम गाना लिखो, गाने में जान डालना मेरा काम है, और इस तरह से ये गाना आपके सामने पेश हुआ है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं हमारी निशा जी की फरमाइश सुन सोनियों, और इस गाने के बाद मिलेंगे हम लेकर के हमारी अरीबा जी और उस्मान खान की फरमाइश, जो कि हमारी आखिर की दो फरमाइशें होने वाली है। सुनते रहिए कॉल ट्यून को नेक्स्ट ट्यून।

अंश जी तू ही खुदा तू मेरा संसार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। और ये फरमाइश थी हमारे निशा जी की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। और ये फरमाइश है हमारे अरीबा जी की एंड डेडिकेटेड है हमारे अरविंद जी को, उनके सारे फ्रेंड्स को, रोशनी रावल जी को और हमारी जारा जी को, गुलाबशाह जी को और आप सभी लिसनर्स को। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और आप सुन रहे हैं हमारे अरिबा जी की फरमाइश को, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की ओर, जो कि हमारे उस्मान खान जी की है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, सुन रही है, मुस्कुराते रहिए। और जाने से पहले आज एक गाना मेरी तरफ से होने वाला है आप सभी के लिए, डेडिकेटेड सॉन्ग, जो ऑफकोर्स हम देते हैं जब भी हमारे पास वक्त रहता है। तो ये उन लोगों के लिए डेडिकेट होने वाला है जिन्होंने आज भी फरमाइश हम तक नहीं भेजी है, जिसमें हमारी गुलफशा जी शामिल है, रोशनी जी शामिल है, इसके अलावा शामिल है हमारे पास मुसीफ जी, और सॉरी मुस्तफ़ा जी फ्रॉम सऊदी, एंड उसके अलावा हमारे अरविंद जी, ये सारे लोग और हमें जो सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, जो हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, वो लोग शामिल होने वाले हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा बस इस गाने के उस पार, हम मिलते हैं आपसे डेडिकेटेड सॉन्ग के साथ।

हाँ जी, और ये फरमाइश तुम्हारे उस्मान खान जी की, और अब हमारी तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड गाना है जो कि बहुत ही प्यारा सा है। रानी मलिक साहब ने बोल लिखे हैं। गाने का नाम है छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता। आप सभी को डेडिकेटेड है। एंड हमारी रीना शर्मा जी जो उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनके मैसेजेस तो हमें मिले हैं लेकिन आज फरमाइशी गीत नहीं मिला है, तो ये आपके लिए भी डेडिकेटेड है आज की तरफ से। यानी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, वक्त है आपसे विदा लेने का। तो फिर मुलाकात होगी, रखिएगा अपना ख्याल। कल मिलते हैं कॉलेज गोना में यही इसी वक्त, यानी किसी प्लेटफॉर्म पर, रेडियो 96.6 FM पर आपकी अपनी रेलगाड़ी के साथ। तो अपने अपने फोन तैयार रखिएगा, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी थीम, एक ऐसी बातचीत जो आज ना सिर्फ गोंडा वासी कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश, और देश तो छोड़िए जनाब, पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है उसके बारे में। वो है बहुत खास। वो आखिर इतना खास क्यों है? क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी को बदल देने की ताकत उसमें है। सच कह रहे हैं वो ना, आज के हमारे बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे निकालने के लिए वो बहुत ही ज्यादा सक्षम है। आज ना शांति के लिए उसी की तलाश है। चलिए अब पहेलियां नहीं बुझाते, हम सीधे आपको बताते हैं कि दरअसल आज की बातचीत किस विषय में है। तो दरअसल आज वापस से आपके अपने शो गोधूली में आरजे अदनान मौजूद हैं गोंडा की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के साथ में। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो है योग, और योग पर बातचीत करने के लिए हमारे योग प्रशिक्षक मौजूद हैं मिस्टर अंजनी कुमार दुबे, जो कि योग इंस्ट्रक्टर हैं CHC पंडरी कृपाल योग वेलनेस सेंटर से। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंजनी कुमार दुबे, ज्ञानस्थली के इस कार्यक्रम में बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। और जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को बता दिया कि आज का ये मुद्दा यानी योग, ये कितनी बड़ी बात है, ये हमारी जिंदगी में कितना दखल देता है, और कितना कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सोल्यूशन है आज पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया इस पे बातचीत कर रही है। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 जून से 21 जून। क्यों? क्योंकि 21 जून को विश्व योग दिवस है, और विश्व योग दिवस के मौके पर हम योगा के बारे में बात ना करें ऐसे कहां हो सकता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, पहले अपनी पर्सनैलिटी के पास चलते हैं, यानी आज के हमारे जो खास मेहमान हैं मिस्टर अंजनी कुमार जी के पास में, पहले उनके बारे में जानते हैं, और उसके बाद चूंकि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो योग से जुड़ी हुई बहुत जरूरी जानकारियां, जिसमें हमारे BP से लेके शुगर और हमारे स्ट्रेस को, जो सब कुछ प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करने की क्षमता रखने वाले योग के बारे में भी हम जाने की कोशिश करेंगे। अपनी डेली की जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको दूर करने के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम आपकी तरफ आते हैं, तो हमारे श्रोताओं को पहले अपने बारे में बताइए, आपकी आप कहाँ के रहने वाले हैं, परिवार के बारे में, और अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में।
2: मैं इसी जनपद का निवासी हूँ, और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं योग के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, और महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र के प्रतिपादक थे, प्रणेता थे, उनकी जन्मभूमि कोंडर है। कोंडर इसी गृह जनपद गोंडा का ही एक क्षेत्र है, और मैं तुलसी जन्मभूमि राजापुर गोंडा के निकटस्थ गांव ग्राम नारायणपुर साल का निवासी हूँ। मैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हनुमान प्रसाद दुबे हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट विद्वान हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में गोंडा जनपद का योगदान नाम से एक शोध किया था, और पर उनको PhD की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा आगे प्रारंभ किया, और बचपन में पिताजी ने ही स्काउट गाइड की ट्रेनिंग के समय योग की तरफ उन्मुख किया। मैंने BEd किया है, शिक्षा स्नातक किया, पश्चात कला अभिरुचि पाठ्यक्रम में मैंने अपना अध्ययन किया, और डिजर्टेशन में फर्स्ट

0: मेरे मन में आया कि मैं अपने गृह जनपद चलूं और उसी परिपेक्ष से मैंने यहां पर योग वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की है।
1: वाह क्या बात है, इतना अच्छा और इतना सधा हुआ जो आपने अपना परिचय दिया है, उससे हमारे श्रोताओं को पता चल गया कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी इंस्पिरेशन आखिर कौन रहे इस योग की दुनिया में आपको लाने वाले, एंड दूसरी बात कि कहाँ कहाँ आप प्रशिक्षण दे चुके हैं, कहाँ कहाँ आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वापस से आखिर गोंडा आने का मकसद क्या था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब चूंकि मुद्दे की बात पर भी आते हैं, बातें बहुत सारी होने वाली हैं, एंड दरअसल अच्छी बात ये है कि बातें सिर्फ ऐसी नहीं होंगी जिनको हम सुन करके सोचे या उसके ख्यालों में रहें, बल्कि जरा सा भी अगर हम उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमको दिखने लग जाएगा और बहुत बदलाव हमारी जिंदगी में भी आता हुआ हमको खुद भी नजर आएगा। तो शुरुआत करते हैं, चूंकि अब आप अपने गृह जनपद में हैं, आप सेवा यहाँ दे रहे हैं, तो एक बात तो होती है, मैंने भी ये देखा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिन्होंने हमसे रेडियो पे बातचीत किया है और उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे थे तो हमको लगा कि गोंडा ने अगर हमको इतनी बड़ी चीज दी है तो क्यों ना हम भी कुछ दें अपने शहर को, अपने जनपद को या इस समाज को दें, इस समाज से सीखा है आपने। तो आप वापस आए हैं गोंडा में और आप योग इंस्ट्रक्टर भी हैं CHC पंडित कृपाल योग वेलनेस सेंटर पर, तो अभी यहाँ पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल है, यानी आप अपने पद पर कार्यरत रहते हुए किन किन चीजों को करते हैं?
0: मेरा जो दायित्व है वो ये है कि जो भी रोगी आते हैं उनकी काउंसलिंग करना और उन्हें उनके रोग से संबंधित योगोपचार बताना, योग के माध्यम से कैसे वो अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं, अगर उन्हें ज्वर है तो ज्वर को ठीक करने में क्या भूमिका है योग की, उससे संबंधित प्राणायाम और योग आसन बताए जाते हैं, किन्हीं को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है इस समय और डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम योग के अभ्यास बताते हैं। सुबह से हमारी दिनचर्या शुरू होती है, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हम लोग योग पार्क में अपनी सेवाएं देते हैं, योग का अभ्यास कराते हैं सामूहिक रूप से, वो एक सामान्य योगाभ्यास होता है। उसके पश्चात हम लोग 8 बजे के बाद में, जैसे गर्मी में तो 8 बजे से शुरू हो जाता है OPD और ठंडियों में 9 बजे से शुरू होता है, 3 बजे तक ये OPD हमारी चलती है, तो जो डॉक्टर्स भी हम लोगों को भेजते हैं मरीज को कंसल्ट करने के लिए, तो मरीज को उनके अकॉर्डिंग उनकी जो फिजियोलॉजिकल सिचुएशन है, जो उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग उनको हम योग बताते हैं।
1: जी, तो आपने कहा कि योग वेलनेस सेंटर पर आप जो है वो पेशेंट्स को देखते हैं
0: जी,
1: और उनकी बीमारियों के अकॉर्डिंग आप उनको कहीं ना कहीं उनका सॉल्यूशन बताते हैं थ्रू योग, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड साथ ही साथ हम यही जानना चाहेंगे कि उस योग वेलनेस सेंटर पर जो पेशेंट्स आते हैं, क्या वो डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं या फिर कोई भी आ सकता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के?
0: डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और कोई भी डायरेक्ट आ सकता है, और मैं खुद भी कोशिश करता हूं उन्हें काउंसिल करके, जो भी मरीज आते हैं उन्हें बताने का प्रयास करता हूं, एक बीच बीच में मैं कार्यशालाएं करता हूं कि ये रोग है, इन रोगों का उपचार योग में संभव है, आप मेडिसिन के साथ में यदि योग को करते हैं तो दवाओं की जो इफिशेंसी है वो डेवलप होती है, मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है और उसका साइड इफेक्ट कम हो जाता है।
1: एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जहां तक हम भी जानते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं और इस बात को सीधे कहते हैं कि जितना आप अंग्रेजी दवाइयों का खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप कोशिश करें कि छोटी मोटी बीमारियों में, दिक्कतों में आप ना ही लें। आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाओं के, उसको कम करने का काम करते हैं, तो कितने हद तक अगर हम कहें कि कोई बीमारी है उसके लिए उसका अगर योगा भी किया जाए तो कितना बचत करता है उन दवाओं से हमको खाने से बचाने के लिए योग?
0: यदि हम साइड इफेक्ट की बात करें कि साइड इफेक्ट कैसे योग बचाएगा, तो हमारे यहाँ योग में सटकर्म कराया जाता है जिसमें 6 क्रियाएं होती हैं, धोती वस्ती नली त्राटक कपाल भाती, तो इस तरह से जो हम अभ्यास कराते हैं 6 क्रियाएं, तो उनके द्वारा हमारा जो हमारी शरीर की जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसको हम प्यूरिफाई करते हैं और उसके बाद में हम उनको आहार के बारे में ही बताते हैं, तो इस तरह से बताने के बाद में योगाभ्यास जो आसन है प्राणायाम है कैसे करना चाहिए, उसको सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से कैसे करना चाहिए, कैसा वातावरण हो, पूरा उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसके अनुरूप यदि कोई व्यक्ति करता है तो साइड इफेक्ट मान के चलिए कि 90% कम हो जाएगा।
1: ओह माय गॉड, 90% तक मतलब साइड इफेक्ट कम हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात आपने बता दी।

है, इवन मुझे खुद भी इस बात की नॉलेज नहीं थी, और मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है अपनी फैमिली में भी मुझे बताना पड़ेगा, जिन भी हमारे परिवार के सदस्यों की रेगुलर दवाइयां चल रही हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। और ये सत्कर्म, आखिर ये 6 क्रियाएं कौन सी होती हैं, किस तरह की जाती है दोस्तों, इसको भी हम जानने वाले। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, क्योंकि आज चर्चा चल रही है योग पर, जिस पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है मिस्टर अंजनी कुमार दुबे जी, जो कि CHC पंडरी कृपाल योग वेलनेस सेंटर पर योग इंस्ट्रक्टर हैं। सो आइए मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने RJ अदनान। आपने ट्यून किया हुआ है गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। चूंकि बातचीत चल रही है योग के बारे में, और जाने से पहले ब्रेक पर हमने आपसे कहा था कि आने के बाद हमने अपने एक्सपर्ट से जानना है कि भाई ये सत्कर्म क्या है जो आप लोगों को बताते हैं, और 6 क्रियाएं कौन कौन सी है, प्लीज सारी क्रियाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सत्कर्म, जैसा इसका नाम है, 6 कर्म। हमारे यहाँ हठ योग में इस क्रिया को अपनाया गया है। योग में एक हठ योग है जो हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को स्वस्थ करता है, स्वच्छ करता है, और उसे संयुग्मित करके सुषुम्ना नाड़ी की तरफ ऊर्जा का प्रवाह पैदा करता है। जब हमारी नाड़ियाँ मल से आच्छादित होती हैं, जैसे टॉक्सिन्स मैटर एक्यूमुलेट होता है नर्व्स के ऊपर, आइसोलेट होती हैं, तो उसमें हमारे न्यूरॉन्स के एक्टिवेशन में दिक्कत आती है। इसका साइंटिफिक है, आध्यात्मिक यह है कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह मल के कारण सुचारू रूप से प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंचता है। तो हमारे अंग तक जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारे सेल्स की जो कम्युनिकेशन वेव्स हैं, वो प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कहते हैं, विद्युत रासायनिक प्रेरणा। उनको व्यवस्थित करने के लिए, उस पथ को साफ करने के लिए, जैसे आप नालियों को साफ करते हैं, ठीक उसी तरह शरीर की जो रस, रक्त और विद्युत तरंगों के प्रवाह का पथ है, उसे साफ करना होता है। उसके लिए हम 6 क्रियाएं करते हैं, धौति, वस्ति, नेत्र, नौली, त्राटकम तथा कपाल भातिस चेतानी सटकर्मणा समाचरित। धौति ये ऐसा क्रिया है जिसमें हम स्टमक को प्यूरिफाई करते हैं, उदर क्षेत्र के ऊपरी भाग को, उदर क्षेत्र के ऊपरी भाग को साफ करने की क्रिया है। विशेष रूप से धौति के अंतर्गत वस्त्र धौति, दंड धौति, हृदय धौति आदि क्रियाएं होती हैं, और जो हम प्रैक्टिकल में रूप में लाते हैं, उसमें हम लोग गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला करके 1 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाते हैं और उसे उकड़ू कागासन में बैठ करके पिलाते हैं, फिर खड़ा कर देते हैं उसे, तो 90 डिग्री के एंगल पर झुकाते हैं कमर से, और नाभि केंद्र पर अपनी 2 उंगलियों को मध्यमा और अनामिका उंगली, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से प्रेस करते हैं, और जिह्वा को बाहर निकाल करके तालु क्षेत्र पर अपने 2 उंगलियों से उसे रगड़ते हैं, तो जो पानी हमने पिया है वो पानी निकलता है, साथ में जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे उदर क्षेत्र के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा है वो भी बाहर निकल जाता है, अम्ल बाहर निकल जाता है, तो हमारा पूरा पेट साफ हो जाता है। ऊपरी उदर क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। आहार नाल को भी ये स्वस्थ करता है, तो एसोफेगस रिफ्लेक्स में बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। धौती हुआ, वस्ति क्रिया है एक तरह से एनीमा। इसमें जलाशयों में खड़े होकर के अश्वनी मुद्रा में हम जल को सक करते हैं गुदा मार्ग के द्वारा, फिर नौली की भांति अपने पेट को चला करके फिर निकालते हैं बाहर जाके। लेकिन अब जो चिकित्सालयों में वस्ति क्रिया है वो एनीमा है, तो एनीमा देते हैं, गुनगुने पानी के साथ भी देते हैं, और कुछ औषधियों को मिक्स करके भी दिया जाता है। इस तरह से वस्ती क्रिया होती है। वस्ती के बाद में आता है नीति। नीति वो अभ्यास है जो नित किया जाए वो नीति है, और नीति आपको नियत की तरफ एक ऐसी नियत डेवलप करती है आपके अंदर जो आपको व्यवस्थित करती है, सामाजिक रूप से स्वस्थ करने की प्रक्रिया बनाती है। तो नीति में जल नीति है, सूत्र नीति है, गृहित नीति है। हम विशेष रूप से जल नीति का प्रयोग करते हैं। एक लोटा लेते हैं जिसमें टोटी लगी होती है, उसके नोक को अपनी नाक पर बैठाना होता है, उसमें इतना गुनगुना पानी लेते हैं जो हमारी स्किन को सह सके, और उस एक लोटे में इतना नमक डालते हैं, एक चुटकी या दो चुटकी नमक डालते हैं, जितना आंसू का खारापन होता है, जो स्वाद उसमें नमक जैसा लगता है, ठीक उसी तरह आपके पानी का स्वाद होना चाहिए। उसको जब आप नेजल ट्रैक में एक नासिका में लगा के दूसरे नासिका की तरफ से निकालते हैं, थोड़ा सा झुक करके जब करेंगे तो आपका नेजल ट्रैक पूरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, जो भी म्यूकस है वो डाइल्यूट होकर के बाहर निकल जाएगा। आपके जो नेजल ट्रैक में रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड को रिसीव करने लगते हैं। जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड आपकी रिसेप्टर रिसीव करते हैं तो ब्रेन को एक मैसेज कन्वे होता है, और मैसेज कन्वे होने के साथ ही ब्रेन रिस्पांस करता है और आपके मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, और सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, और आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस दूर होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन प्रॉपर होने लगता है और आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। ये तो नीति का लाभ है। और इसमें कभी कभी जैसे इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो हम घृत नीति या तेल नीति का भी प्रयोग करते हैं, षडबिंदु तेल अणु तेल का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें जुकाम जुखाम है, खांसी आ रही है, तो उसमें लाभ करता है। इस तरह से नीति का अभ्यास करने के बाद में नौली का अभ्यास करते हैं। नौली में आप अपने नाभि को घुमाते हैं, तो वाम नौली और दक्षिण नौली दो तरह से होती है, दोनों को पहले अभ्यास किया जाता है, पहले वाम नौली चला करके अभ्यास करते हैं, फिर दक्षिण नौली का अभ्यास करते हैं। लेकिन ये सभी जितनी भी क्रियाएं हैं एक प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के ही निर्देशन में करनी चाहिए, ये YouTube पर देख करके नहीं करना है आपको। आप जो भी ये षटकर्म का अभ्यास है बिल्कुल ये साइंटिफिक है और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। जो इस पथ से गुजर चुका है वही आपको इसी ऐसी शिक्षा दे सकता है। अनभ्यासेन विषम विद्या, अगर उसका अभ्यास नहीं है, वो पढ़ा है तब भी वो आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए नेति का अभ्यास, नौली का अभ्यास, धौती का अभ्यास आप अच्छे तरीके से करें। त्राटक, त्राटक इसके बाद में आता है। आपको धौती बताया, वस्ती बताया, नेति बताया और नौली बताया। नौली करने से आपका जो उदर के समस्त अंगों में वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसकी स्मूथली मसाज होती है, और आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्टिमुलेशन आता है, और आपकी खास करके लार्ज इंटेस्टाइन की मोबिलिटी बढ़ती है, उसमें जो मल संचित है वो बाहर निकल जाता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे अग्नि उद्दीप्त होती है, अग्नि उद्दीप्त होगी तो जो भी आप खाएंगे पच जाएगा। उसके बाद में आता है त्राटक। त्राटक आपके नेत्रों के प्यूरिफिकेशन का अभ्यास है, आपके विजन पावर को डेवलप करता है। त्राटक किसी अंतर त्राटक भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके आप अपने आज्ञा चक्र पर, आप अपने किसी एक अंग पर, किसी भी स्थिति में आप किसी का ईश्वर का ध्यान कर लें आंख बंद करके, तो उस पे बार बार आपका मन केंद्रित करना है। आपका मन हटेगा बार बार, उसको आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो स्थिर होने लगेगा। ये अंतर त्राटक है। और वाय त्राटक किसी ज्योति पुंज पर, किसी मूर्ति पर, किसी वृक्ष पर, किसी जलाशय में, चंद्रमा पर, सूर्य उदित होते हुए सूर्य पर मन को केंद्रित करने और दृष्टि को केंद्रित करने का अभ्यास त्राटक है। त्राटक के अभ्यास से आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स उत्तेजित होती है, आंसुओं का सिक्रेशन प्रॉपर होने लगता है, और जो टीयर डक्ट्स है वो खुल जाती है। उसके खुलने के साथ ही साथ आपके आँखों का सूखापन दूर होता है, आंखों की ज्योति अच्छी होती है। आपकी क्रेनियल नर्व पर इसका विशेष इम्पैक्ट आता है, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, ऑक्लो मोटर क्रेनियल नर्व, इन सब में स्टिमुलेशन आता है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और छठा कर्म जो इसका है कपालभाति, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, स्वामी रामदेव जी अक्सर इसको कराते रहते हैं। और कपालभाति कपाल रंध्र के शोधन का अभ्यास है। कपाल अर्थात आपका जो फ्रंटल लोब है, तो उसको ये स्टिमुलेट करता है, उससे संबंधित अंगों को उत्तेजित करता है। भास अर्थात उसको प्रकाशित करना, कपाल को प्रकाशित करने का जो अभ्यास है, अर्थात आपका जो फोरहेड है उस पे एक शाइनिंग आती है, ग्लो आती है, जो आप ब्यूटी पार्लर में भी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सुंदर उसमें से किरणें निकलती हैं जो आपके मन को प्रसन्न करती हैं। आप जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो योग का अभ्यास कर रहा होता है, उसको देख करके आप उससे बात करने की इच्छा कहती है। तो कपाल रंध का केवल ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक या धार्मिक लक्ष्य के लिए ही केवल है, वह कपाल रंध्र का जब आप शोधन करते हैं तो आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। जो भी आप पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो सब आप अपने अंदर धारण कर लेते हैं। आपकी मेमोरी पावर बहुत डेवलप हो जाती है। साइनस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है कपालभाति, साइनोसाइटिस को दूर करता है। इस तरह से षटकर्म आप करते हैं, लेकिन जब भी आप करें तो किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करें।
2: तो ये सत्कर्म के बारे में जो आपने बताया, इसमें तो सारी चीजों को आपने डिफाइन कर दिया और बहुत ही एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में आपने किया है, यानी बड़े ही अच्छे तरीके से आपने सब कुछ समझा दिया। साथ में एक बात कही थी कि YouTube पे देख करके और स्टार्ट कर देना ये सत्कर्म नहीं है जब तक कि किसी ने प्रैक्टिकली वो किया ना हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी योग, चाहे हम आपसे आज बात कर रहे हैं, शायद लोग सर्च करेंगे, देखेंगे, सर्च करना देखना गलत नहीं है, लेकिन चाहे जिम की कुछ एक्सरसाइजेस हो या हम योग की बात करें, तो आजकल एक मैगी बनाने से लेकर के और शायद हवाई जहाज को बनाने तक की सारी वीडियो इंसान ने यूट्यूब से देखता है, तो उसको लगता है योगा की भी कई सारी वीडियोस जो है पड़ी हुई है और एक्चुअल में पड़ी हुई है। बट ये कोई कैसे जाने कि ये ऑथेंटिक है, ये सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उसमें आपने गलत किया तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसको हमारे श्रोताओं को जरा बताइए कि वो ऑथेंटिसिटी कैसे इंश्योर करे कि जो वो वीडियो देख रहे हैं, जो वो अपना रहे हैं क्रियाएं, वो सही है, शुद्ध है।
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसी के समाधान के लिए हमारा आयुष विभाग कार्य कर रहा है। हमारा जिला प्रशासन आयुष विभाग गोंडा भी इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। हमारे जिला अधिकारी महोदया नेहा शर्मा जी, मुख्य विकास का अधिकारी महोदया अंकिता जैन जी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत जी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक आयुष मिशन डॉक्टर अमित सिंह जी के कुशल निर्देशन में योग प्रशिक्षक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट पर जाकर के लोगों को योग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ही निर्देशन में कार्य करता है और केंद्र सरकार की अनेक जो साइंटिफिक लैब हैं, CSIR की लैब हैं, उन सब में योग का कोलेब्रेशन करके हमारा मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट कार्य कर रहा है। और साथ ही के साथ बहुत दिनों लगभग 1924 से केवल धाम में योग का अनुसंधान हो रहा है और कल्याणानंद जी ने उसकी स्थापना की थी और उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट पे उसे रिसर्च कराया है। वहाँ की वेबसाइट पर आप जा करके अथेंटिक यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर देख सकते हैं, CCRYN की वेबसाइट पर देख सकते हैं, आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं आप, और आप गोंडा के जो आयुष विभाग की वेबसाइट है उस पर भी देख सकते हैं, और लगभग भारत के कोने कोने में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, बड़े चिकित्सालयों एवं CSC आदि केंद्रों पर योग प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं जो ऑथेंटिक रूप से पढ़े लिखे हैं और प्रशिक्षित हैं और वर्तमान परिपेक्ष के जो रिसर्च आ रहे हैं उनको अपडेट करते हैं। जैसे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं, वहाँ भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। झलकारी बाई अवंतीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में, वहाँ पे एम्स में जितने भी एम्स हैं सब में योग चिकित्सक नियुक्त किए जा चुके हैं, आप वहाँ मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं वर्तमान में यही गोंडा में कार्य कर रहा हूँ तो आप गोंडा में भी आ सकते हैं। आप अपने प्रॉपर जो भी आपने टेस्ट कराए हैं उनको दिखाइए और उनको दिखाने के बाद में जो आपने पढ़ा है, जो देखा है, उसको समझिए, आकर के मार्गदर्शन लीजिए। आप केवल यही नहीं, जहां आप हैं वहीं पर आप पता करिए कि ऑथेंटिक रूप से आयुष विभाग की वेबसाइट देखेंगे तो आपको वहां की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि वहां कितने योग प्रशिक्षक हैं। आप उन योग प्रशिक्षक से कंसल्ट करिए, उनसे बात रखिए, अपने जो भी परीक्षण कराए हैं उस परीक्षण प्रपत्र को लेके जाइए, टेस्ट के पेपर को लेके जाइए, उन्हें दिखाइए और उनसे बात करिए। बात करने के बाद में यदि आप सहमत होते हैं, आप लगता है कि नहीं ये आपकी चिकित्सा अच्छे से कर पाएंगे, तब आप उसे योग का प्रशिक्षण लीजिए और आपको निश्चित रूप से योग का पूरा लाभ मिलेगा।
2: क्या बात है। तो ऑथेंटिसिटी की बात हुई थी और आपने बड़ा अच्छे से डिफाइन कर दिया कि आयुष मंत्रालय है और जितने भी ये योगा सेंटर्स हैं, योग वेलनेस सेंटर्स वहां पर, या मोरारजी देसाई योग इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे भी, उसकी वेबसाइट पे भी जा करके देख सकते हैं। कवच ऐप पे भी आपने बताया कि वहाँ आयुष कवच ऐप है। तो मतलब आपने बताया बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ के जरिए आप जाएंगे और वहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिलेगा। ये बहुत जरूरी सवाल था। अगला आता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेस दूर करने के लिए ध्यान करने हैं और किया भी जाता है, तो क्या ध्यान जो है वो योगा ही है या योगा का एक पार्ट है या दोनों अलग अलग चीज है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान वस्तुतः योग का एक अंग है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 7वीं सीढ़ी है योग को प्राप्त करने की, तो वो यह है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जब आपका मन किसी विषय विशेष में इतना तल्लीन हो जाए कि आपको देह का भी ध्यान ना रह जाए और स्वयं का भी। ध्यानम निर्विषयम मना, आपका मन विषयों से रहित हो जाए, अर्थात आपके मन में जो फ्लक्चुएशन आता है, थिंकिंग पावर आपकी डेवलप होती है, फ्लक्चुएशन आते हैं जो थॉट्स में बार बार फ्लक्चुएशन आते हैं, उनमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक आपको निर्णायक क्षमता की अभिवृद्धि हो जाती है आपके अंदर, एक एनालिटिक पावर डेवलप हो जाती है, वह स्थिति ध्यान होती है। जब ध्यान की स्थिति स्वतः घटित होती है, और ध्यान के बारे में कहा गया है ध्यानम हे स्तद वृत्तयः, ध्यान के अभ्यास से आपकी वृत्तियाँ धीरे धीरे स्थिर हो जाती हैं और जो वृत्तियाँ क्लिष्ट हैं वो क्षीण होने लगती हैं।
2: जी, तो ये आपने बताया कि एक पार्ट है योगा का ध्यान लगाना, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और एक और बात है कि भाई अक्सर लोग कहते हैं व्यायाम बहुत कॉमन साधारण सा शब्द है, तो क्या ये व्यायाम भी योगा का ही पार्ट है यही कुछ अलग है?
1: योग तो एक समग्र जीवन पद्धति है, वो हमारे इस विषय पे करती है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और विकार व्यक्ति के विकारों को दूर कर उसकी स्वास्थ्य का संवर्धन करना ही योग का मूल लक्ष्य है। व्यायाम क्या है? व्यायाम उसका एक पार्ट है, जिसे आसन को आजकल लोग व्यायाम मान लेते हैं। आसनों का जब द्रुत गति से प्रयोग करते हैं, जबकि आसन स्थिरता प्रदान करता है, सुखमय स्थिति लाता है, स्थिरम सुखमासनम, लेकिन जब हम उसे गतिमय कर देते हैं, रिदिमिक गति करने लगते हैं या और द्रुत गति से करने लगते हैं, तो व्यायाम हो जाता है, उसमें ऊर्जा क्षय होती है। लेकिन योग ऊर्जा क्षय की मान्यता को खारिज करता है, वो कहता है कि योग कहता है कि हमें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना है, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, मांसपेशियां जाम होने लगती हैं और आपको थकावट आने लगती है। उसी थकावट को दूर करने के लिए, ऑक्सीजन डेड की स्थिति को कम करने के लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। इसीलिए योग के 8 चरण निर्मित किए गए हैं, बहुत साइंटिफिक है। आसन के तुरंत बाद हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम इसलिए करना है कि हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं और प्राण शक्ति को उद्दीप्त करके प्राण को एक सर्किल में लाएं, अपनी ऊर्जा को एक सर्किल में लाएं। तो वो कैसे होगा? लैक्टिक एसिड का जारण होगा, वो ATP में कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की स्थिति में, तब हमारे शरीर में एक स्टेबल माइंड पैदा होगा। हमारा शरीर हमारी इंद्रियों के साथ तादात्म्य स्थापित करेगा, हमारे सेंस ऑर्गन्स में, हमारे एक्शन ऑर्गन्स में एक प्रॉपर हेल्दी कोऑर्डिनेशन होगा, और उस हेल्दी कोऑर्डिनेशन के कारण हमारा जो ब्रेन है बहुत ही स्टेबल होगा और बहुत ही अच्छा होगा, हमारा हेल्दी माइंड होगा। और इसी माइंड को आगे डेवलप करते हुए हम अपने सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर पाएंगे, और जब सोशल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो हमारे हमको सोशल रिकग्निशन और एक सामाजिक प्रतिष्ठा की अनुभूति होगी, हमें सामाजिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि में हमारा योगदान होगा, समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर पाएंगे। इसलिए व्यायाम और योग को एक न समझें, व्यायाम उसका एक पार्ट हो सकता है।
2: जी, तो बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया कि जिस तरह ध्यान एक पार्ट है, उसी तरह योग का व्यायाम भी एक पार्ट है और इसको अलग उससे नहीं किया जा सकता। फिलहाल चूंकि अब दौर बदला है, चीजें बदली हैं, पीढ़ियां बदली हैं, बहुत हद तक हम बदल गए हैं, हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति, हमारी बोलचाल बहुत हद तक चेंज हुई है, तो चलिए इस बात में भी जानेंगे कि आखिर योग कितना बदला है, कितना हम योग को मॉडर्न कह सकते हैं या योग आज भी उतना ही प्राचीन है, ये एक जरूरी सवाल है। लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, फिलहाल सुनते रहिए गोंडा FM 89.6 FM।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने आरजे अदनान, और हम बात कर रहे हैं योग पर। हमारे साथ में आज योग प्रशिक्षक मिस्टर अंजनी कुमार दुबे जी मौजूद हैं, जो कि CHC पंडित कृपाल योग वेलनेस सेंटर पर योग इंस्ट्रक्टर हैं। तो जाने से पहले अभी चूंकि हमने अपने श्रोताओं से कहा कि आने के बाद हम आपसे पूछने वाले हैं कि आखिर बदलते दौर, वक्त और समय के साथ में योग में कितना बदलाव आया।
1: योग तो वही है जो पुरातन में था, वही आज भी है। योग हर काल हर स्थिति में आधुनिक ही है। हम इसे प्राचीन ओल्ड का पहनावा नहीं पहना सकते। योग चूंकि साइंटिफिक है और साइंस कभी पुरानी नहीं होती
0: जी,
1: साइंस अपडेट होती है।
0: करेक्ट,
1: ठीक उसी तरह से हमारा योग भी अपडेट हो रहा है। हम योग को जैसे पहले हम हिमालयों में, हिमालय की कंदराओं में जाकर के योग ध्यान करते थे। कुछ विशिष्ट लोगों को योग के लिए प्रतिष्ठित किया जाता था। गुरु गोरक्षनाथ का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने देखा जन समुदाय को योग की आवश्यकता है, और उन्होंने एक नई क्रांति योग में लाई। और उन्होंने कहा आसन दृढ़, आहार दृढ़, जो निद्रा दृढ़ होए, अब गोरख कहे सुनो रे पूता, मरे न बूढ़ा हो। आसन को उन्होंने सबसे महत्व दिया, 84 लाख योनियों से 84 लाख आसन लिए। उनकी अलग अलग क्वालिटीज को उन्होंने आसनों के रूप में परिभाषित किया, अनेकों ग्रंथ लिखे और नाथ योगियों को तैयार करके जन जन तक एक योग की क्रांति पहुंचाई, एक अलग एक मसाल पहुंचाई कि लोग योग को जाने। लोगों ने हमारे रिचुअल्स में उन्होंने उसको डाल दिया
0: जी।
1: इस तरह से योग वेस्ट हो गया अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशनल नॉलेज पे, और जिसका रिचुअल्स और ट्रेडिशनल नॉलेज साइंटिफिक होता है वह संस्कृति बहुत उत्थान करती है। हमारी भारतीय संस्कृति में ट्रेडिशन पर और रिचुअल्स पर बहुत फोकस किया गया। हम अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशन को केवल इसलिए न माने कि वह मानना है, अपितु उसको इसलिए माने कि वह साइंटिफिक है और उसका परीक्षण भी करें। हमारा शास्त्र हमें यह निर्देश देता है कि हम अपनी प्राचीन विरासत का शोधन करें, उसका परीक्षण करें और उसे मॉडर्न बनाएं। तो यदि आप मॉडर्न बनना चाहते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब इस क्षण के पूर्व ओल्ड ही है। जिस क्षण में हम बात कर रहे हैं ये वर्तमान है, लेकिन इसके पहले जो हमने बातें की हैं वो सब भूत है, वो इतिहास है।
0: सही बात है।
1: और इस इतिहास के ही न्यू पर हमारा मॉडर्निटी टिका हुआ है, और जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वह सब कुछ हमारे पूर्वजों की देन है। हमको उसमें और इनपुट डालना है, उससे और अच्छा करना है। तो ठीक उसी तरह योग बदला है। योग में एक आंधी भी आ रही है इस समय। योग को जो मन में आता है परिभाषित कर देता है,
0: जैसे
1: कोई हार्ट योगा, कोई न्यूड योगा, कोई कपल योगा, इस टाइप का उन्होंने इसको अपभ्रंश कर दिया है, इसको साइंटिफिक वेस से हटा रहे हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, और खास करके ये हमारा सौभाग्य है, हम उस कालखंड में है कि जब इस अनुसंधान पर ही विशेष महत्व दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योग पर रिसर्च कर रहा है और ये देख रहा है कि योग कितना लाभकारी है और योग में कौन कौन से नुकसान भी हैं। अगर योग हम किस तरह से करें कि योग लाभकारी हो, किस नेचुरल एनवायरनमेंट में करें, या आप कहीं जैसे मीलों के पास में हम योग कर रहे हैं, कहीं रावी सुड़ रही है, अगर वहाँ योग कर रहे हैं तो आपके लंग्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या लंग्स आपके अच्छे काम कर पाएंगे। लेकिन अब क्या है कि पोल्यूटेड वातावरण है, पूरा प्रदूषण है, और उसमें भी हमको योग करना है, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। तो कैसे करें, तो योग कुटीर का निर्माण कराया जा रहा है, उसमें इनोवेटिव आइडियाज डाले जा रहे हैं जिससे कि हवा छान करके आए, ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे कि जो भी टॉक्सिन से एलिमेंट्स हैं उसको सोख लें। तमाम एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं इस पर काम कर रहे हैं। हमें इन सबसे जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने जो मॉडर्न साइंस है उसको और अपने रिचुअल्स को दोनों को मिला करके काम करना है, तभी हम इस बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि जब हवा चलती है तो प्राण ऊर्जा का उत्थान करती है, जो मंद मंद पवन बहती है तो हमारा मन शांत होता है, हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब आंधी आती है तो अपने साथ बहुत कुछ उड़ा ले जाती है, बहुत कुछ विध्वंस करती है। तो ज्ञान की तो हरदम पवन ही चलती है, लेकिन ज्ञान का भ्रम जो है आंधी का निर्माण करता है। इस समय योग की आंधी भी चल रही है, योग की पवन भी चल रही है। तो जो योग की आंधी चल रही थी उस आंधी को ठीक करने का कार्य कर रहा है हमारा आयुष मंत्रालय। उसने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष विभाग का गठन किया और आयुष विभाग के निर्देशन में हमारे पूरे विश्व के जो इमिनेंट पर्सनालिटी थे योग के, जो योगी थे, रिनाउंड योगी थे, उन सबको इकट्ठा किया और कहा कि भाई हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जगह हम कौन सा ऐसा योग करें, कौन सा प्राणायाम करें कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सबको कुछ ऐसा दे पाएं कि जो कैप्सूल फॉर्म में मिल जाए, फिर इसके प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो खुद ही खोज लेंगे। तो उसी परिपेक्ष में उन्होंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल का निर्माण किया। उस कॉमन योगा प्रोटोकॉल को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आयुष मंत्रालय का कर रहा है और इसमें हमारा जो गोंडा जनपद है वो भी बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य कर रहा है। हमारी जो डीएम मैडम है, जो सीडीओ मैडम है, वो बहुत ही एक्टिव हैं और इतनी एनर्जेटिक हैं कि वो प्रत्येक योग शिक्षक से, योग प्रशिक्षक से संवाद स्थापित करती हैं और प्रेरित करती हैं कि आप जाएं अपने सेंटर्स पे, रोगियों का उपचार तो करें ही, आसपास के गांव में भी योग के बारे में बताएं, अवेयरनेस कैंप चलाएं, और ऐसा किया जा रहा है।
0: तो आपने कहा कि भाई बहुत हद तक हम गोंडा में भी अब बदलाव को देख पा रहे हैं क्योंकि जिला प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा रुचि रख रहा है और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहा है। तो ये तो एक बात समझ में आई कि किस तरह से बदलते दौर के साथ में आपने कहा कि खुद को अपडेट करना, चाहे और भी जिंदगी की कोई अलग पहलू की बात हो या योग की बात हो, सब में जरूरी होता है। लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स पे ही बात करें कि किन किन आखिर बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, स्पेशली जब हम योग कर रहे हो, बैठने का, वातावरण का, किस माइंड स्टेट के साथ बैठा जाए, आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं और नहीं करनी चाहिए, हम चाहेंगे कि आप कुछ पॉइंट्स बताएं।
1: पहला तो आपको ये ध्यान देना है कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, जहां भी आप योग करना प्रारंभ करें, समतल जमीन हो
0: जी,
1: आप जमीन पर या तखत पर कहीं भी कर रहे हैं लेकिन उसके पास का जो परिवेश हो, शोरगुल ना हो, कोई गंदगी ना हो, मच्छर आदि, कीड़े आदि ना हो, साफ सुथरी जगह पे आप बैठ करके एक कंबल बिछा लीजिए या योगा मैट बिछा लीजिए
0: जी,
1: कोई चादर बिछा लीजिए जो विद्युत का कुछ अलग हो, उस पर बैठ करके योग करना है, खाली पेट करना है। यदि आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको वीकनेस महसूस होती है, तो आप गुनगुने पानी के एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, एक चम्मच शहद डालिए, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाइए और उसको पी लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके बहुत अच्छे पैरोकार हैं, वो बताते भी हैं अपने अनुभव को। फिर आप जो है साफ कपड़ा हो, पुराना हो चलेगा लेकिन ढीला हो, जिससे आप जब कोई भी अभ्यास करें तो आपके शरीर में कहीं खिंचाव ना आए। फिर जब आप शुरू करें तो पहले मन को शांत करें, रिलैक्स करें, अपने ईश्वर को ध्यान करें, आप अपने जो भी इष्ट देवता है। योग में कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि यह क्या धार्मिक है, धार्मिक नहीं है। आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि योग का प्रादुर्भाव तो मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ है। तो मानव शिशु जो है अपनी माँ की प्रथम संवेदना से ही योग का प्रारंभ करता है। योग का अर्थ ही है जोड़ना, युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ ही है जोड़ना, तो उस जोड़ने की कला को योग कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण हो, ढीला ढाला कपड़ा हो, उस पे बैठ करके करना है और अपने इष्ट देव का, बात चल रही थी कि इष्ट देव जो आपके भी, जिनके प्रति आपकी आस्था हो, प्रकृति के प्रति आस्था हो, किसी देवता के प्रति आस्था हो, उनका ध्यान करें क्योंकि उनके गुणों को अपने अंदर अवतरित करना है आपको। फिर उसके बाद में आता है कि पहले हम मांसपेशियों को ढीला करें, तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल में सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास है, अंग संचालन की क्रिया है, फिर आसन करना है, स्ट्रेचिंग करना है, कुछ खड़े होके करना है, कुछ बैठ के करना है, कुछ लेट करके करना है, पेट के बल, कुछ पीठ के बल लेट करके करना है। तो आपको सभी डायमेंशन में आपकी मांसपेशियों को गति देना है। तो जब आप गति देते हैं तो आपकी रक्त संचार प्रबल होता है, मांसपेशियां लचीली बनती हैं। अब आपका आता है, इतना करने के बाद में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है, तब आप प्राणायाम करते हैं, 3-4 प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ऊंचाई प्राणायाम है, उसको कर लेते हैं। गर्मी में आप भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करते हैं, ठंडी में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है, गर्मी में शीतली और शीतकारी प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आप आसन का अभ्यास करें, बैठने वाला अभ्यास, तो रेट सीधी होनी चाहिए, जो प्रॉपर उसका गाइडेंस है कि पैर खुले होने चाहिए तो पैर सीधे ही होने चाहिए, पैर को आप अपने हिसाब से उसे छूट नहीं दे सकते। हाँ, आपके शरीर में कहीं अकड़न है, जकड़न है, तो आपका योग प्रशिक्षक आपको बताएगा कि कैसे इसको चेंज करके, मॉडिफाई करके योग के अभ्यास किए जाएंगे। उसमें आपको तकिया लगा करके भी अभ्यास कराया जा सकता है, आपको सपोर्ट देके अभ्यास कराया जा सकता है, कुछ इक्विपमेंट का सहारा लिया जाता है। तो जो मॉडिफिकेशन है वो आपका प्रशिक्षक तय करेगा आपके डिजीज के अकॉर्डिंग। लेकिन कॉमन, यदि आप कॉमन मैन हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ रहने के लिए योग कर रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देना है कि योग के जितने भी अभ्यास हैं, वो जो नियम बताए गए हैं कि कैसे झुकना है, यदि आपको पेट की तरफ झुकना है, आगे की तरफ झुकना है, पेट पे बल आ रहा है तो सांस निकाल देना है, पीछे जाना है तो सांस भर लेना है, ये सावधानियां आपको रखनी चाहिए। और अति उत्साह में आपको किसी की देखा देखी शीर्षासन, हैंड स्टैंड, वृश्चिक आसन जैसे एडवांस स्टेज के आसन नहीं करने हैं। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, आपको अभ्यास करना है। तो अभ्यास जैसे दृढ़ हो जाएगा वैसे आपकी काया की संपत्ति बढ़ेगी। बल, वज्र, तत्व की भावना, लावण्य और रूप की भावना, ये चार काया की संपत्तियां महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। वो आपको प्राप्त हो।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों को अवॉइड करना है। एक और प्रश्न जिसका हम इन शॉर्ट में आपसे आंसर चाहेंगे, क्योंकि माइंडफुलनेस मैंने सुना था कि जापान और कोरिया में चलाया गया और इसको योग से जोड़ा गया, तो ये माइंडफुलनेस क्या है और क्यों आखिर जापान और कोरिया को जरूरत पड़ी इसकी, और क्या भारत में भी ये कहीं चल रहा है?
1: ये माइंडफुलनेस एक तरह से योगिक अभ्यास ही है। ये है योग निद्रा, ध्यान और आसन की समन्वित प्रक्रिया है। इसमें माइंड को हैप्पी हार्मोन्स की तरफ, जो माइंड में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उनके स्टिमुलेशन के लिए, उनके सिक्रेशन के लिए काम किया जाता है। जब अत्यधिक तनाव होता है तो विचारणा शक्ति कमजोर हो जाती है। विचारणा शक्ति जब कमजोर होती है तो हमारे एक्शंस अच्छे नहीं होते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो निगेटिविटी की तरफ चला जाता है और एक तरह से वो क्राइम को जनरेट करता है। क्राइम को कम करने के लिए इन देशों ने, अनेक देशों ने रिसर्च किए, जिसमें कोरिया, जापान लोगों ने विशेष इस पर अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में माइंडफुलनेस नाम की एक ऐसी कैप्सूल फॉर्म में एक्सरसाइज डेवलप की, जिनमें योगी सूर्य व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और ध्यान की और योग निद्रा की प्रक्रिया थी, जिसमें हम करते क्या हैं, कॉन्शियसनेस पावर को डेवलप करते हैं, सब कॉन्शियस से मिला देते हैं, अनकॉन्शियस में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रेन को एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है कि हमको क्या राइट वे में करना है। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो कैसे रिएक्ट करना है, ये माइंडफुलनेस आपको सिखाता है, आपके ब्रेन को तैयार करता है कि आप कब कैसे रिएक्ट करें और पॉजिटिव वे में रिएक्ट करें। जैसे आपकी एग्रेसिवनेस है उसे आप कैसे रक्षात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तित कर सकते हैं, आप आतंकवादी न बन करके सैनिक बन सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को रेसलर के रूप में, धावक के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको क्राइम से दूर करती है और इसकी आवश्यकता भारत में भी है और भारत इस पर कार्य कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में और रिस्पायरेटरी डिपार्टमेंट में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, फिजियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका इंटीग्रेटेड एक रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। हमारे गोंडा में भी कारागार में हमारे प्रशिक्षक योग सिखाने जाते हैं और माइंडफुलनेस पे तो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से माइंडफुलनेस वाला ही कार्य कर रहे हैं।
0: तो मतलब माइंडफुलनेस पे अभी डायरेक्ट इस तरह इस थीम के तहत नहीं किया जा रहा, लेकिन वो फायदा उसी का हो रहा है। और माइंडफुलनेस आखिर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया जापान एंड कोरिया के जरिए, ये भी आपने बखूबी बताया। अब चूंकि हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रश्न क्या है बल्कि आपसे गुजारिश है, क्योंकि हमारा वक्त हो गया है विदा लेने का, लेकिन आपकी तरफ से अपील, चूंकि इस वक्त आपको बहुत सारे श्रोतागण सुन रहे हैं, गोंडा से गोंडा के बाहर से भी सुन रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी सुना जाता है अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम को, उसकी एप्लीकेशन रेडियो गार्डन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: हम तो केवल इतना कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल योग डे 21 जून को आ रहा है, उसकी तैयारी आप करें और पार्कों में जाएं जहां पर योग का अभ्यास कराया जा रहा है, वहां सीखें, उसके बाद में योग के अभ्यास से हुए फायदे को आप एनालाइज करें और उसके बाद में योग को अपने जीवन में उतारें। और एक और बात कहेंगे कि आपको योग करते समय गीता के इस महावाक्य को ध्यान रखना है, सर्वभूत हितेरता। हमारे घेरण संहिता में भी कहा गया है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माले कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमय जगत। यह समस्त जगत विष्णुमय है, विष्णु वह है जो समस्त जगत में व्याप्त है। तो उस परम ब्रह्म को अपने ध्यान में रखें, जन जन में अपनी प्राण भावना को रूपित करें। शायद इसी लिए इस बार इंटरनेशनल योग डे पर जो थीम ली गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रेरित करते हुए, और हमारा वेद भी कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है जिसको हम प्रणव कहते हैं, एकमेव तत्व अभ्यासा। तो आपको प्रणव उस नाद को अपने अंदर अंगीकार करना है, योग करते समय एक दूसरे के मन को एक दूसरे के विचार को अपने अंदर अपनाना है, उसके प्रति मैत्री करुणा मुक्ता की भावना लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से कहेंगे, तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान निबोधयत, सादर नमन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था योग, जिसके लिए आज हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर अंजनी कुमार दुबे जी, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं CHC पंडित कृपाल योग वेलनेस सेंटर गोंडा के। सो कैसा लगा दोस्तों आपको प्रोग्राम, हमको आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, और योग से अब जुड़ने का सच में वक्त आ गया है। सुनते रहिए गोंडा FM 89.6 FM, क्योंकि यह है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416, जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आवास के बगल गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: अरे सुना?
4: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

सुरीली शाम के जितने भी सुनने वाले हैं, जिनको जिनसे दिल मिलने की उम्मीद रखने वाले हैं, उन सभी के साथ शाम की शुरुआत बेहतरीन हो, इसी आगाज के साथ आरजीबीना है लाइव। और मौसम ने आज रुख बदल के हमें राहत दी है, और भाई शहर थोड़ा सा ज़्यादा परेशान था, जगह जगह जल भराव, पेड़ गिर गए और शहर पूरा मतलब अस्त व्यस्त हो गया था भाई। मतलब एक चीज़ ये है कि कुछ भी हो बदलता ज़रूर है, समय अच्छा हो या ख़राब हो वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद दूसरा जो कहते हैं ना टाइम पीरियड है वो शुरू हो जाता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के शहर में आपके यहाँ बारिश ने क्या क्या गुड़ दिखाए, क्या क्या गुल खिलाए, एंड रियली आज का मौसम काफ़ी सुहाना सा है और अच्छा रहा, धूप भी निकली, सबके जो कहते हैं ना गीले कपड़े या जो भी थी सब चीज़ें वापस अपनी जो कहते हैं ना कि सिचुएशन पे आ गए। और आज देखते देखते सितंबर भी ख़त्म होने को है, और यार साल जो है ना टाटा बाय बाय करने वाला है। हाँ भाई, साल टाटा बाय बाय करने वाला है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने शेष इस साल में बचे हैं, और देखिए क्या होता है, क्या होता है। आज है साल का 271वां दिन और साल में बचे हैं 94 दिन शेष। वेल, आप लोग को बता दूं कि आज का दिन क्यों खास है, हमारे इतिहास में या हमारे लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि आज वर्ल्ड रैबीज डे है, और यूनेस्को की बात करें तो आज इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो कि यूनेस्को के द्वारा प्रोक्लेम किया गया है, यानी कि अपनी जानकारी के लिए आपका जन्म सिद्ध नहीं, दुनिया में कह सकते हैं कि अपनी पहचान बनाने वाला अधिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो जहां जहां से सुन रहे हैं फटाफट से अपनी अपनी जगह के बारे में बता दे, कौन कहां कहां से है। तो भाई सार्वभौमिक पहुंच अपनी बना के रखिए अपनी ज़रूरत से जुड़ी जानकारी लेने के लिए, और कभी भी किसी भी जानकारी पे भरोसा मत करिए, ये बात भी, क्योंकि आजकल जो ज़माना है ना वो सोशल मीडिया टाइप का ज़माना आ गया है, और हमें हर दूसरी जगह कोई ना कोई जानकारी ही मिलती है। एक ज़माना था जब जानकारी की सोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, और आज एक ज़माना है कि मतलब सोर्सेज इतने हैं लेकिन ऑथेंटिक कौन सा वाला ये नहीं पता चल रहा, हर दूसरा आदमी ज्ञान देता मिल जाता है। वेल, आपको बता दूं कि आज है शहीद भगत सिंह की जयंती, पुण्यतिथि, सॉरी जयंती है और पुण्यतिथि में तो बड़ा अंतर होता है, मेरे मतलब क्या था ना दिमाग से निकल गया। तो हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो सोच समझ के ना बोले जाएं तो गलतियां ही गलतियां आपसे हो जाएंगी। 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था ऐसे महान योद्धा का, जिसने अपने एक एक दिन को माँ भारती के नाम किया। उनके बलिदान और उनके देश प्रेम को जितना भी याद करें उतना भी कम होगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बताना चाहती हूँ। आज नेशनल फैमिली डे भी है भाई, कहते हैं ना कि परिवार को लेके हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमारा परिवार, हमारा ये वो सब चीज़ें, और अगर हम अपने परिवार को लेके थोड़ा सा मतलब ध्यान ना दें तो कभी भी कोई भी समस्या हमारे सामने आ सकती है। हर चौथे मंडे को सितंबर के हम मनाते हैं नेशनल फैमिली डे, और एक अच्छी फैमिली और अच्छी तब हो जाती है जब उसका कोई अच्छा सा नेबर हो, नेबर यानी कि पड़ोसी। तो आज नेशनल गुड नेबर डे भी है। आप बताइए, आप एक अच्छे पड़ोसी हैं या आप खराब पड़ोसी हैं। वैसे और बहुत सारी चीजें जो आज से जुड़ी हैं मैं बताऊंगी आप लोग को, लेकिन चलिए गाना सुनते हैं। देश प्रेमी के नाम और भगत सिंह के लिए ये प्यारा सा गाना हमारी तरफ से भगत सिंह को समर्पित। आप लोग बताइए, आपके मन में भगत सिंह को लेके अगर कोई भी पंक्ति है जो आप कहना चाहते हैं अपनी आवाज में, तो निश्चिंत
होके कह सकते हैं। तो भगत सिंह को याद करते हुए चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आरजे बीना के साथ आपके वाले शो को नब मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। आप लाइव हैं तो आप सुन रहे 89.6 FM के साथ, ये है गोंडा शहर की धड़कन 11:89.6 FM।

0: ये क्या जिद लगा रखी तुमने? क्यों करनी है तुम्हें छठ की पूजा?
1: तुम्हारी नहीं है, मेरी आस्था तो है। मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया हमें आशीर्वाद जरूर देंगी।

0: प्यारे लिसनर्स, आ जाओ भाई, आज मंडे है, लाइव गाने गाने का दिन है। ऐसे कौन क्या क्या गाने वाला है तो सब बता दो फटाफट से। तो आज मैं स्पेशली एक, जैसे कहते हैं ना कि डे की करेक्टरिस्टिक्स को बताया आप लोग को, जैसा कि आज नेशनल प्रॉप ट्रेडिंग डे है, नेशनल नॉर्थ कैरोलिना डे है, और भाई आसपास से खबरें जो हैं वो बड़ी अजीब अजीब सी आ रही हैं। भाई नेपाल में फिर से लैंडस्लाइड हो गई है, और हमें बस ईश्वर से दुआएं करनी चाहिए कि आसपास जो क्षेत्र है वो किसी भी तरह की आपदा से प्रभावित ना हो, सब अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहें। एंड यस, हम सभी मनाएंगे कि इस मुश्किल समय को किसी तरह से बीट किया जाए और प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए छोटे छोटे प्रयास किए जाएं। और आप से उम्मीद है कि आप लोग इस बात को मतलब गंभीरता से समझ रहे होंगे कि हम कितना, मतलब कहते हैं ना कि एक्टिव हैं इस चीज को सोचते हुए। वैसे आप लोग बताइए, आज का दिन आप लोग के लिए क्यों खास है? भाई आज जैसा कि मैंने बताया है, नेशनल फैमिली डे है, और फैमिली को लेके हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी मतलब चीज़ें शेयर करते हैं। और मैं चाहूँगी कि आज आप लोग जो भी गाने सुनाएं वो अपनी फैमिली को डेडिकेटेड सुनाएं। और परिवार जो होता है ना, हर इंसान की विल पावर होता है, जीने की वजह होता है। कई बार ऐसा सुना होगा हम लोगों ने कि कुछ ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं जिनके बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो उनकी फैमिली ही नहीं है, या कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनकी फैमिली किसी एक्सीडेंट की वजह से छिन गई है। तो हमें सबसे पहले तो ईश्वर से मतलब प्रे करना चाहिए कि हमारी फैमिली जहाँ भी हो, जैसी भी हो, एकदम ब्लेस्ड हो, ठीक है, हमारे पास हो, दूर हो, पर जहाँ भी हो खुश हो, हमारे साथ हो, हमारे साथ हो तो ये तो वेल एंड गुड है। और आज फैमिली को लेके इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली के लिए हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली के लिए इंसान कहीं दूर चला जाता है परदेसी बनके, और फैमिली के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। अच्छा, फैमिली में हर इंसान की अपनी अपनी भूमिका होती है कि नहीं? हर इंसान में मतलब फैमिली होती है। और मैं सच बताऊं, मेरी फैमिली आप लोग हैं। 89.6 FM पिछले 4 सालों में एक बड़ा परिवार बन चुका है, और इस फैमिली के अलग अलग मेंबर की अलग अलग भूमिका है। कोई अपने को ना तो छोटा समझे, ना कोई अपने आप को बड़ा समझे। एक फैमिली की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर मेंबर को इक्वली इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए, और उसे फील कराना चाहिए दैट यू हैव दिस कैपेसिटी एंड दैट्स वाई यू एंड वी आर फैमिली, है कि नहीं? तो ये बताइए आज आप लोग क्या गाना सुनाने वाले हैं। वैसे मैं अपनी फैमिली को लेके कुछ गाना सुनाना का सोचूं, मेरी तो फैमिली बहुत बड़ी, 89.6 FM मेरी खुद की फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है। तो पूरी फैमिली को डेडिकेट करते हुए कोई गाना सोचना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं सोचूंगी एक प्यारा सा गाना जो फैमिली को डेडिकेटेड हो। और आप लोग भी सोच के बताइए और सोच के सुनाइए। आज डे है आपका, मंडे है, तो मंडे को कॉलिंग डे होता है, तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सुनने का मतलब मौका मिलता है मुझे भी। आप कविता सुना सकते हैं फैमिली को अपने सपोर्ट करते हुए, आप गाना सुना सकते हैं, आपके पास कोई प्यारी सी कहानी है वो सुना सकते हैं, डेफिनेटली कुछ भी जो आपके मन में है, जो आप कहना चाहते हैं बहुत दिनों से अपनी फैमिली के लिए, तो बिल्कुल कह सकते हैं। मैं तो एक कविता भी सुनाऊंगी और एक गाना भी, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत कुछ रहता है कहने के लिए, सुनाने के लिए। फिलहाल एक कॉल आ रहा है, चलिए देखते कौन है हमारे साथ। हेलो, हेलो, हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम। हेलो,
0: गुड इवनिंग, योर गुड नेम, आपका नाम?
1: आपका निशा।
0: निशा, कैसी हैं आप, क्या हाल है निशा?
1: मैम बिल्कुल अच्छी हूँ। आज तो मंडे है।
0: आपके यहाँ भी बारिश हुई खूब? हाँ आज तो मंडे है।
1: मंडे में बारिश हुई, तीन दिन लाइट नहीं थी।
0: हाँ हमारे शहर में भी लाइट नहीं थी और मतलब पूरा गोंडा अस्त व्यस्त था कहा जा सकता है। ये बताइए निशा, आज मंडे है तो मंडे को आप क्या सुनाना चाहेंगे? पहले तो आज वर्ल्ड मतलब नेशनल फैमिली डे है, तो अपने परिवार को लेके कोई गाना आप सुनाना चाहती हैं जो आप अपने परिवार को डेडिकेट करना चाहें?
1: जी मैम, सब लिसनर को भी और परिवार को भी।
0: हाँ हाँ स्वागत है जी, बिल्कुल।
1: मेरी आवाज आ रही है?
0: जी बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है।
1: क्या तुम्हें पता मेरे दिल बैठाने वाली,

पहली बार कमला भी तो कितना पागल कर देता है।

0: थैंक यू मैम,
1: क्या बात है ओनिशा, बहुत अच्छा आपने गाना सुनाया। हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: अंदरिया वाले आ रही है।
1: हेलो निशा,
0: हेलो मैम,
1: हेलो
0: सुना चुकी मैम।
1: हाँ गाना
0: सुना चुकी,
1: मैंने गाना सुना आपका और मेरी आवाज़ शायद आपके पास नहीं जा रही थी। हेलो
0: मैम, थैंक यू मैम सुनने के लिए,
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके मैम, आप ठीक हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज़ सुन के और आपका गाना सुन के और खुश हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई निशा
0: मैम। आप खुश रहे हमेशा, जिंदगी भर खुश रहे
1: ये तो तभी पॉसिबल है जब आप ऐसे मुस्कुराते हुए कॉल करेंगी। इंसान को खुशी खुशी से मिलती है। थैंक यू। तो भाई निशा ने कितनी सारी दुआएं भी दी और गाना भी सुनाया, और ये एक परिवार के सदस्य की तो जिम्मेदारी होती है सामने वाले की खुशी का ख्याल रखना। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के लिए जीते हैं और हम सब एक परिवार है। मैंने एक बार एक दफ़ा एक कार्टून देखा, मोगली, आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें मोगली कहता है कि हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता तो ऐसे मोगली की तरह मैं भी बोल रही हूँ। और देखिए शाम की जो इवनिंग, मतलब शाम का जो ये खूबसूरत समय है, वो चिक चिक के कह रहा है यार, म्यूज़िक हो, आवाज़ हो, मज़ा आ जाता है। और ख़ास तौर पे मंडे को तो और मज़ा आता है, क्योंकि मंडे को सिर्फ अर्जबीना के आवाज़ नहीं सुनने को मिलती, अर्जबीना के साथ साथ पूरा गोंडा गाता है, पूरा गोंडा सुनाता है, पूरा गोंडा जो लिखता है वो कह के जाता है। ना सिर्फ गोंडा, मैं पूरे शहर की बात करूँगी, पूरे देश की बात करूँगी, क्योंकि मेरे शो में मुझे लगता है मेरे गोंडा शहर के बाहर से भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो ये बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है। जल्दी से उठने का समय हो गया, क्योंकि लाइट आज आ गई थी, तो कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं दे पाएगा कि लाइट नहीं दे मारे यहाँ। आज की शाम वैसे भी खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जहाँ लौटकर इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो पर फिर से बच्चा बन के जाना चाहता है, वो है फैमिली, परिवार। और परिवार की बात करूँ तो दुनिया में हज़ारों रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन परिवार जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता, क्योंकि परिवार वो जगह है जहाँ हमारी कामयाबी से पहले हमारी सलामती पूछी जाती है। Am I right? सच में परिवार ही वो जगह है जो हमारी कामयाबी से पहले हमारी सलामती की दुआएं करता है, इसीलिए फैमिली हमेशा ऊपर होनी चाहिए। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना हमारी फैमिली को डेडिकेटेड, ये प्यारा सा गाना आप लोग के नाम। तो मेरे सारे लिसनर्स को डेडिकेटेड, उनकी फैमिली के लिए ये प्यारा सा गाना, और आरजे बीना की बड़ी सी फैमिली को डेडिकेटेड ये गाना।

हमने सुना प्यारा सा गाना, लेकिन अभी बीच में कॉल और देखते हैं किसकी आवाज, और कॉल हो गया है डिस्कनेक्ट। ये कैसी है बात? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग के कॉल्स, और आप लोग के कॉल से ही बात करने का मन है। अभी देखते हैं किसका कॉल अभी आता है और किससे बात करने का मौका मिलता है। अभी फिलहाल एक कॉल जो कि डिस्कनेक्ट हो गया, उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले गाना सुनते हैं, कॉल के आने का इंतज़ार करते हैं।

0: हेलो,
1: नमस्कार वीणावान।
0: नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं? राष्ट्रीय परिवार दिवस की आपको शुभकामनाएं। सुरेश जी, क्या हाल है?
1: ठीक है, फर्स्ट क्लास। आज दो तीन दिन बारिश हुआ, बहुत भयंकर। और बुधवार को अंताक्षरी में नहीं शामिल हो पाया स्टोव का, आज मंडे है, आज मौका मिल गया तो एक गीत
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज में गाना सुनना मतलब एक समय को जीने जैसा होता है। क्या बात है, स्वागत है।
1: तेरे दर्द से दिल आवादुरा, तेरे दर्द से दिल आवादुरा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नसीबा भी क्या रंग लाया, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, अपनी वफा से गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, बेखुदी में हम खो गए।
0: पुनः प्रयास करें।
1: हाँ, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, अपनी वफा से गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहें, दूर भी हम कैसे रहें, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जाने वफा तुझको क्या दे, जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे, अपनी वफा से हम मिल न पाए।
0: कोई बात
1: जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे, अरमा बुझे है तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे, अरमा बुझे है दुआ है, रिश्तेदार तुझसे हो गए, चाहत का जहाँ बर्बाद रहा, चाहत का जहाँ बर्बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। सॉरी मैम,
0: क्या कोई बात नहीं, पर गाने ने दिल को छुआ बस यही काफी है। इतना खूबसूरत गाया आपने और जो फीलिंग उस समय ऋषि कपूर ने इस गाने के माध्यम से दी थी वो अभी हमें आपके गाने से महसूस हुई। हाँ, आवाज़ उस समय किसी और की थी, भले फिल्म में जो ऋषि कपूर का रोल था और ये गाना उस समय जो फिट हुआ था फिलहाल यहाँ भी उसी तरह फिट हुआ है। क्या बात है,
1: कुमार सानू की आवाज में था, कुमार सानू ने इसको गाया है लेकिन बहुत खूबसूरत निभाया था पर्दे पर ऋषि कपूर के ऊपर। हमको बहुत अच्छा लगा था उस वक्त जब भी हमने देखी थी दीवाना।
0: क्या बात,
1: दिन बाद आया हमने सोचा, मगर अब इतने दिन बाद अचानक वो थोड़ा लाइन लंबी है यार, लेकिन अब एक बाइक नहीं आ रहा है।
0: गाना बहुत चलो ये बहुत बहुत खूबसूरत सुन के मतलब अच्छा महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो सुरेश जी की आवाज में हमने सुना गाना, वही गाना जो सबकी फेवरेट लिस्ट में होता है यार, जिसको कोई भी भूलना नहीं चाहता है। मतलब क्या कहूँ इस गाने को, शब्द एक एक ऐसा है जिसको फील करना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं। चाहत का जहाँ बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। क्या बात है इस गाने की। कुमार हमारे साथ, क्या हाल है कुमार जी, कैसे हैं? वंशिका गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? अरविंद जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत भाई, आज कॉलिंग डे है और मेरी आज फैमिली से बात हो रही है, मतलब मेरी आज पूरी 89.67 की फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज दिन है सेलिब्रेशन का, यानी कि आज है नेशनल फैमिली डे। तो मेरी फैमिली तो आप लोग हैं, तो अपनी फैमिली को तो डेडिकेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिलहाल ये कॉल आप लोग के लिए, देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
2: हेलो हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
2: हाँ गुड इवनिंग जी, मेरा नाम सुपूजा है।
0: पूजा जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका 89.67 पे, आज जबीना के साथ आप लाइव हैं गोंडा मैसेज मसाला में। और सबसे पहले बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: जी मैं गोंडा से ही बोल रही हूँ।
0: गोंडा से बात कर, ओके। तो आज नेशनल फैमिली डे है, तो एक सवाल सबसे पहले, जैसे कि हम सभी फैमिली अपने अपने परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में ऐसा कौन सा सदस्य है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं? ऐसे तो अभी ये कठोर क्वेश्चन हो जाता है किसी भी इंसान के लिए, पर
2: नहीं नहीं मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि माँ सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा नजदीकी होती है और हर दुख दर्द उससे शेयर कर सकते हैं, वो हर तरह की गाइडेंस हमें देती है। माँ से पापा से बढ़ के और कोई नहीं हो सकता है।
0: अरे बात क्या बात है, मतलब सबसे ज्यादा प्यार आप मम्मी से करती हैं।
2: जी जी
0: क्या बात है। तो ये बताइए अपनी फैमिली के लिए आप क्या सुनाना चाहेंगी, गाना कविता मतलब कुछ क्या?
2: जी जी गाना गाऊंगी मैं, मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो ही तो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं हमेशा हर जगह, चाहे वो बाबा दादी के रूप में हो या नाना नानी के रूप में या मम्मी पापा हो, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं और वही सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है पूरी फैमिली के लिए।
0: बिल्कुल, इस दुनिया में एक परिवार देने का काम उन्होंने ही हमें किया, तो डेफिनेटली स्वागत है।
2: जी जी ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विभाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है,

धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो।

0: विधाता की पहचान है। थैंक यू।
1: क्या बात है पूजा जी, आपने बड़ा सुरीला गाया और हम लोग को भावुक सा कर दिया, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आप अपनी फैमिली से प्यार करते रहे, आपकी फैमिली सलामत रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू पूजा।
0: थैंक यू।
1: तो भाई पूजा जी ने बड़ा प्यारा सा गाना गाया, मजा आ गया। और आपकी बारी भी आने वाली है, फटाफट से डायल करिए अपना वाला नंबर 6393-31-64-29। कोई कहां व्यस्त है फिलहाल 89.6 FM लाइव ऐप के लिए। तो चलिए सुनते हैं वही गाना जिसको कंटिन्यू करने की बारी अभी है।

हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड यस कौन कहाँ है जल्दी जल्दी से बता दीजिए। और अभी तक कॉल करने वालों का ताता नहीं लगा, बहुत सारे कॉल आए लेकिन अभी बहुतों के बाकी। गुड इवनिंग सबलू सावंत जी, कैसे हैं? स्वागत है आपका। शुभ संध्या धर्मेंद्र, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? तो भाई अब फैमिली की बात हो रही है तो मेरी फैमिली आप लोग हैं, मेरी खुद की भी फैमिली है और बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हैं भाई वो मुझसे मेरे साथ अपना यही समझें कि वो मेरी फैमिली की तरह ही हैं, तो अपने को बिल्कुल भी अलग ना समझें। तो चलिए एक गाना आप लोग के नाम मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, मतलब जो सिर्फ सिर्फ सिर्फ सिर्फ सिर्फ आपको डेडिकेटेड है और किसी और को नहीं। ठीक है, आई होप मैं आप लोग के दिल तक पहुँच पाऊँगी। महसूस कीजिएगा इस गाने को। एंड हर इंसान अपनी फैमिली के लिए यही सोचता है तो मैंने भी सोचा कि मैं यही सोच के आप लोगों को कुछ कह दूँ।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार, शुभ संध्या। आपका शुभ नाम?
1: सबलू सावंत बोल रहा है।
0: सबलू जी, स्वागत है। कैसे हैं, क्या हाल है?
1: मैं बढ़िया हूँ, और बताएं आप अपने बारे में, आप कैसे
0: बस
1: हो?
0: हमारे गोंडा शहर और यूपी में तो भाई मुंबई वाला हाल था। इधर बीच काफी बारिश हुई, 3 दिन लगातार मौसम बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में चला गया था।
1: तो है।
0: और अर्णव चक्रवात ने पूरा मतलब अपना रुद्र रूप यहाँ भी दिखाया अच्छे खासे तरीके से।
1: जी,
0: चलिए आज आप बताइए अपने परिवार को लेके क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो आप अपने परिवार से दूर हैं, मुंबई में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे परिवार के लिए?
1: देखिए, तो सच है कि दुनिया में माँ बाप का दर्जा कोई नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं ले सकता। भगवान का दर्जा तो माँ बाप ही दूसरा रूप होता है।
0: ये बात तो सही है। तो आज आप क्या मतलब कविता डेडिकेट करना चाहेंगे फैमिली को अपने या गाना?
1: कविता ही है, छोटा सा।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: जब हम आते हैं तो कविता ही लेके आते हैं ना।
0: जैसे कहते हैं ना, हर परिवार के सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है, और आप अपनी भूमिका हमेशा बखूबी निभाते हैं। जैसे कविताएं लिख के सुना देना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी कविताएं एकदम फिट होती हैं, तो स्वागत है आपकी कविता का।
1: बिल्कुल। दुनिया मुझसे रूठ जाती, लेकिन कविता मुझे मनाती है।
0: क्या बात है।
1: कभी मैं गम में सो जाऊं तो कविता मुझे जगाती है।
0: आहा, क्या कह दिया, क्या कह दिया, मजा आ गया।
1: जब दिल में दुखों की साया छाता है तो कविता ही मुझे हौसला देती है।
0: क्या बात।
1: टूटे हुए ख्वाबों में ओ सजाती है, बिखरी उम्मीदों को फिर से बनाती है। लोग जब ताने देते हैं मुझे, कविता चुपके से पास आती है। आंसुओं की स्याही से ओ खुशियाँ की कहानी लिख जाती है।
0: क्या बात, क्या बात।
1: मैं जब खुद से हार जाता हूँ, कविता मुझे फिर संभालना सिखाती है। अंधेरे की रास्तों में दीपक बनकर मेरी राह रोशन कर जाती है। दुनिया की महफिल में मैं अकेला सही, कविता महफिल में मैं राजा बन जाता हूँ। हर दर्द की दावा है मेरी कविता, यही मेरी सच, यही मेरी वफा। दुनिया मुझसे रूठ जाती है, लेकिन कविता मुझे मनाती है। गम कभी भी मैं गम में सो जाऊं तो कविता मुझे जगाती है। जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, आपने अपनी कविता को सब कुछ डेडिकेट कर दिया। क्या कहना है, क्या कहना है।
1: ऐसा कोई बात नहीं है मैम, थोड़ा मोड़ा कविता के अनुसार एक वर्ड मिलने से भी हम लोग थोड़ा मोड़ा कोशिश कर देते हैं कि बना लेते हैं।
0: मैं तो यही कहूंगी, आप थोड़ा मोड़ा कोशिश नहीं, आप लिखते ही इतना खूबसूरत हैं कि कोई भी दीवाना हो जाए। क्या बात है।
1: तो एक छोटा सा आज के दिन में सॉन्ग है।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: और अगर आपकी इच्छा हो तो पूरा कर देते हैं।
0: बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है।
1: शायद आज तो हिंदी प्रोग्राम है और इसे हम भोजपुरी में तैयार कर दिए।
0: चलिए कोई बात नहीं, आज नेशनल फैमिली डे है, तो परिवार के लिए दिल से कुछ भी।
1: जी बिल्कुल। जात बार पढ़े बेटी छोड़ के दुवड़िया, गिरे मत दी है बेटी पापा के पगड़िया। बाउर भइल बाटे सब का तो नजरिया, गिरे मत दी है बेटी पापा के पगड़िया। दुनिया रंगीन बाटे लोग बहकाई, सबका से बच के खाली करी हा तू पढ़ाई। अतता जमाना सबके मुंह करिया करिया, गिरे मत दी है बेटी पापा के पगड़िया। जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और दिल की बात आपने कही। और आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जो अभी न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि मतलब एक पिता ने अपनी बेटी का श्राद्ध कर दिया क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। मतलब उन्होंने
1: ऐसा कोई बात नहीं, बहुत कुछ दिखने को मिलता है। लेकिन देखिए आजकल मोबाइल के जरिए हम लोग बहुत कुछ देखने को मिलता है, जो जहाँ वहीं पे रहने देते हैं हम लोग ना।
0: और बस ये देखिए बात ये है कि हमें अपने फैमिली को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हाँ, मैंने इस बात को कहा इसलिए क्योंकि परिवार को लेके हम लोग पॉजिटिव तो होते हैं लेकिन कभी कभी परिवार को बहुत इग्नोर कर देते हैं।
1: हम भी सहमत है कि अपने फैमिली को थोड़ा चाहिए,
0: मुझे लगता है थोड़ा सा तवज्जो थोड़ा ज्यादा, हम किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा ना करें। मैं ये नहीं कह रही दुनिया में हर इंसान गलत हो सकता है या सही हो सकता है, इसके तो मतलब जजमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक मौका अपने परिवार को भी दें कि हमारी जो पसंद है या ना पसंद है जो भी है उसको वो अपने स्तर पे मतलब उसे परखे, क्योंकि कभी कभी परिवार भी बहुत
1: बात बोली है। सुनिए आपने भरोसा की बात बोला है तो आजकल सात फेरा सात वचन में आपकी सात पत्नियां भी आती है, उसमें भी भरोसा नहीं की जा सकती।
0: ये बात भी सही है, आपने क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा बात करके। और फैमिली को भाई बस हमारा ये मतलब आज का दिन जो है फैमिली को डेडिकेटेड है, तो परिवार के महत्व को समझे, परिवार से कभी भी किसी बात को लेके मतभेद हो तो ये बात याद रखिए कि पिछले कई सालों से हमारे परिवार ने हमारे लिए क्या किया, बस यही याद रखिए। थैंक यू सो मच सबलू जी, मज़ा आ गया गाना सुन के भी और कविता सुन के भी, है कि नहीं? आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? देखिए परिवार को लेके हम लोग जजमेंटल कभी भी ना हो, मेरे हिसाब से बस एक बात को ध्यान रखिए कि परिवार को लेके हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। परिवार हमारा हमारी मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए। कभी कभी परिवार हमारा किसी ज़रूरत को पूरा ना करे तो हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है परिस्थितियाँ विपरीत हों, पर अभी ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से परिवार हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि कामयाबी के बारे में सब पहले पूछेंगे लेकिन परिवार है जो हमारी सलामती के बारे में पूछेगा। तो चलिए सुनते एक और प्यारा सा गाना जो है आपके और हमारे नहीं सबके लिए।

वैसे भाई कहाँ चले गए आप लोग के कॉल सभी, मतलब मुझे पता है सारे लास्ट मोमेंट वाले जो लोग हैं ना, अरिबा शेख गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, क्या हाल है, और सभी का स्वागत। गीता जी शुभ संध्या, कैसी हैं। नागेंद्र भारती गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, स्वागत है। और वैसे गाने तो सारे आज आप लोग की जो प्लेलिस्ट वाले हैं वो ही चल रहे हैं, कोई ऐसा गाना नहीं है। पर हाँ, मतलब एक गाना जो मैं और फैमिली को स्पेशली डेडिकेट करना चाहूँगी, और मतलब ज़रूरी नहीं कि किसी एक रिश्ते को कोई गाना डेडिकेटेड होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि कुछ गाने ऐसे हैं जो पूरी फैमिली के लिए भी डेडिकेटेड हो सकते हैं। तो आज ये गाना मेरी सारी लिसनर्स फैमिली के लिए, आप लोगों को पसंद आएगा। और जो अभी तक कॉल नहीं कर रहे हैं ना, उन्हीं की जगह मैं गा रही हूँ, क्योंकि उन्हें तो अपनी फैमिली से प्यार नहीं है बट मुझे है, तो इसलिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ ये गाना।

0: एक लाइन मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ आप लोगों के लिए. आप लोग सोच रहे हो कौन सी ऐसी लाइन जो मैं मॉडिफाई करने वाली हूँ. चलती हूँ मैं फ्रीक्वेंसी पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, क्योंकि मैं तो आप लोगों से फ्रीक्वेंसी से ही मिलती हूँ ना, 89.6 FM. तो चलिए कौन आ रहा है सुनाने अपनी आवाज में. अरे यार तुम मतलब आप लोग के कॉल्स के बीच में तो मुझे धूम ताना नाना करना ही पड़ता है. मुझे तो इतना गाना नहीं आता, पर हम क्या करें, आज फैमिली डे तो मैं फैमिली के बारे में बात ना करूं तो मतलब क्या मतलब है, मेरी प्रेजेंस वेस्ट हो जाएगी. और मैंने तो वही गाना डेडिकेट कर दिया, दो गाने डेडिकेट किए अपनी रेडियो फैमिली को एंड माय फैमिली, बोथ, दोनों फैमिली मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आप लोगों से भी मिलना रोज़ है, आप लोग के साथ बातें रोज़ करनी है, आप लोग के साथ दिन रात एक कहते ना कि जज्बात है, तो उसको साथ में साकार करना है. उस्मान गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और श्रीदेवी हेलो, कैसी हैं आप? और आई होप आपका मोबाइल चार्ज हो गया होगा. थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, मैंने तो बस ऐसे ही कोशिश थोड़ी सी कर दी आप लोग के लिए. फिलहाल आप लोग को अपनी फैमिली से मोहब्बत नहीं है, मुझे पता चल गया. अब मेरी तरफ से एक गाना आप लोग सुनिए अपनी फैमिलीज के लिए और एंजॉय करिए. कोई तो है जिसे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, वो आ गया है कुछ सुनाने, देखते कौन है. हेलो
1: हेलो मैम, शुभ संध्या.
0: शुभ संध्या. और देखिए प्रीति जी हैं जो हमसे भी प्यार करती हैं और अपनी फैमिली से भी प्यार करती हैं, इसीलिए देखिए कॉल भी कर दिया इन्होंने टाइम से. तो प्रीति जी आज क्या सुनाएंगे? वैसे तो आप कविताएं लिखती हैं लेकिन आप सुनाती नहीं हैं, पता नहीं क्यों बचा के रखती हैं. एनीवे
1: मैम सुना रहे हैं तुम्हारे जीवन का
0: क्या
1: है, तुम्हारे जीवन का.
0: अच्छा एक सवाल पहले कर लूं मैं आपसे, कविता तो सुनूंगी मैं आपसे, ये बताइए आपकी फैमिली में कौन ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है?
1: मेरे पति देव.
0: मुझे पता था, पता था. मतलब क्या बात है. लेकिन
1: पहली बात वकील भी है, मैं बहस फालतू का बहस करते हैं घर पे आके.
0: हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब आपने इनडायरेक्टली लड़कों को ये दे दी सलाह कि अगर आपको बनना है एक आइडल पति तो कर लो लॉ और बन जाओ वकील, तभी आप बहस कर पाओगे.
1: हम तो लड़कियों से कहेंगे करे ना शादी वकील से.
0: हाँ लड़कियों, बिल्कुल सही, लड़कियों जनहित में जारी, कोई भी वकील लड़के के जैसे भी रिश्ता है तुरंत मतलब प्रोफाइल देख के रिजेक्ट. ये बताइए. अच्छा ये बताइए प्रीति जी, जैसे किस बात पे ज्यादा बहस होती है, कौन सी ऐसी मतलब बात है जिसपे अक्सर बहस होती
1: है? मैं अपना तो करते हैं अपने मन की और हमारे पे लगाते हैं पाबंदियां में.
0: हाँ हाँ अपना तो करते हैं अपने मन की और हम पे लगाते हैं पाबंदी, ये तो पूरी मतलब क्या कहते हैं मुखड़े का अंतरा बन गया. तो हमें आपके मतलब क्या कहते हैं वकील साहब की आवाज कब सुनने को मिलेगी, इंटरव्यू लेना पड़ेगा?
1: मैं वो अपने आप में मस्त पूरा मस्ती में रहते हैं आग लगे बस्ती में.
0: कितनी तारीफ आपने आने कर दी, अभी सुन ले तो फिर आगे मैं ऐसा तो नहीं हूँ.
1: मैं उनके मुँह पे कहते हैं.
0: चलिए अब आप कविता सुना दीजिए, ज्यादा तारीफ हो गई.
1: तो अस्तित्व मानो जीवन का
0: क्या बात.
1: अलग अलग होता है अपना अस्तित्व हर एक मानव जीवन का, अलग अलग होता है अस्तित्व हर एक मानव जीवन का. कोई आसानी से पा लेता है अपने जीवन में सब कुछ, कोई आसानी से पा लेता है अपने जीवन में सब कुछ, तो कोई संघर्ष करता रहता अपने जीवन में ताउम्र. प्राकृतिक का खेल है बड़ा ही अनोखा, प्राकृतिक का खेल है बड़ा ही निराला, किसी के दामन में आता है फूल और किसी के दामन में आता है सूल अर्थात बेशुमार काटा. लेकिन इंसानी मन भी बड़ा है निराला, लेकिन इंसानी मन भी बड़ा ही है निराला, क्योंकि फूलों से तो सभी प्यार करते हैं, क्योंकि फूलों से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन जो काटों से प्यार करके अपना जीवन व्यतीत करता है उस मानव का एक अलग ही अस्तित्व होता है इस धरा पे. मैम बस यही है मानव जीवन का अस्तित्व.
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बात तो सही है.
1: फूलों से सभी करना जाने प्यार, लेकिन कांटों से तो क्या खाली होता है परिस्थिति, बस सब लोग करते ही हैं।
0: ये बात सही है,
1: फूल रहते हैं कांटों के पास पास लेकिन फिर भी रहते हैं उदास, फूल कांटे रहते हैं फूल के पास ही मैं लेकिन फिर भी रहते हैं हमेशा उदास उदास।
0: क्या बात है, ये बात तो सही है, इक्वली इम्पोर्टेंस कहाँ लोगों को मिलती है, इक्वली इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। दो लाइन सुनाइए फैमिली के लिए भी, गाना कोई भी जो आपको लगता है कि मेरी फैमिली, मतलब रेडियो फैमिली को भी अपनी फैमिली आप मानती हैं, तभी तो इतने सालों से हमारे साथ प्यार से बनी हुई है।
1: तो मैं उन्हें सुना चाहूँ, मेरे घर बार को सुखी संसार को मेरे दाता उनके नजर ना लगे, मेरे मालिक किसी की नजर ना लगे, बहुत कुछ ना दें प्रभु लेकिन थोड़ा सुख शांति दे फैमिली में।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक।
0: तो भाई प्रीति जी ने अपनी आवाज में एक कविता सुनाई और फैमिली को बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि प्यार से समझा दिया कि क्या है। तो चलिए अब एक गाना सुनते हैं और देखते हैं अब किसकी कॉल आते हैं, अब कॉल्स पे आपकी आवाज सुनेंगे और मेरे लिए और आप सभी के लिए गाना जिसको सुन के आपका भी दिल भावुक हो जाएगा। दुनिया एक तरफ

मेरे हिसाब से बेस्ट फैमिली है। मैं अपने हिसाब से लड़ाई किए बगैर नहीं रह सकती हूँ। लड़ाई सिर्फ 10 मिनट की होती है, फिर हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ होता है। बिल्कुल, फैमिली यही होती है जहाँ पे हमें सिर्फ अच्छी मेमोरीज को तवज्जो देना चाहिए और आर्ग्यूमेंट्स को हवा में उड़ाना चाहिए। Am I right?

तो चलिए अब इसी के साथ आरजे बीना को भी दीजिए इजाज़त। ये आखिरी गाना आरजे बीना की तरफ से मेरी पूरी रेडियो फैमिली के लिए, और ये गाना एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव से है, और ये बड़ा प्यारा सा मतलब मूवी है एक रिश्ता, जिसमें आपको अमिताभ बच्चन राखी के साथ इनकी पूरी मतलब जो कास्टिंग टीम है बहुत अच्छी सी है, और ये गाना है और क्या जिंदगानी है। आप लोग बताइएगा कि ये गाना कैसा है। और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और कुछ ही देर में सुनिए अपने पसंद के गाने आरजे सिंपल के साथ सीधे सीधे सीधे अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी पर 89.6 FM।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: अरे सुना
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है।

0: स्वागत है आप सभी का आपके अपनी फरमाइशी की महफिल में। और जिन लोगों ने अभी तक फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपके अर्जेंट सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है? गीता श्रीवास्तव जी का कहना है, दो दिन बाद ये स्वीट धमाकेदार आवाज सुनने को मिली है। ओ माय गॉड, और फाइनली दो दिन बाद मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ दोस्तों। सैटरडे को मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों से कांटेक्ट करने की, आप लोगों के पास आने की, लेकिन वो शायद इम्पॉसिबल था और मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाई, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। और कल तो मेरा वीक ऑफ था ही, और फाइनली आज मैं आप लोगों के पास हूँ। ओह माय गॉड, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों से मिले बिना मेरा दिल नहीं लगता सही में। वो क्या है ना कि कुछ दोस्त होते हैं ना जिनसे डेली बात होती है, और जिनसे डेली बात होती है उनको आपके डेली के मूड के बारे में ऑब्वियसली पता चल जाता है। तो उन दोस्तों की लिस्ट में आप लोग आते हैं मेरे। मेरी क्या आदत है कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा टॉकी टॉकी नहीं कर पाती हूँ ना, मेरी मतलब लाइक मैं उतनी फ़ोन पे सोशल नहीं हूँ। तो क्या है ना कि मेरी दोस्तों से बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट बात होती है, लेकिन आप लोगों से मैं रोज़ बात करती हूँ, रोज़ बात करती हूँ। तो आप लोग सच्चे वाले, उन दोस्तों से भी ज्यादा खास वाले दोस्त बन गए हो। तो इसलिए मैं आप लोग को संडे को भी मिस करती हूँ, या फिर जिस भी दिन नहीं आती हूँ उस दिन मिस करती हूँ, रोज मिस करती हूँ इसी टाइम पे, 7-8-9 के बीच में आप लोग की मुझे बहुत याद आती है। मैं कोई मक्खन पॉलिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, आप लोग से मेरी दोस्ती बहुत तगड़ी हो गई है। 2-4 दिन की दोस्ती नहीं है, 3-4 साल की दोस्ती है। अब इतनी गहरी दोस्ती कि भाई मिसाल तो देनी पड़ेगी, क्यों सही कहा ना मैंने। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, मोहित मालवे नगर गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी गोंडा से, अरीबा शेख गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, और इसी के साथ में जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, नागेश्वर धाकड़, जारा खान, ओ माय गॉड, माय स्वीट स्वीट अनुष्का वंशिका, ओ माय गॉड, अनुष्का श्रावस्ती से आपका भी स्वागत है, लेकिन आप मुझे चैट बॉक्स में दिख नहीं रही हैं। गीता श्रीवास्तव जी नमस्कार एंड इस्तकबाल है आपका आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सबका स्वागत है आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में इस महफिल में। सो क्या ख्याल है? चले पहली फरमाइशी गीत की तरफ, तो चलते हैं एकदम फटाफट से भागते पहुंच गए हैं हम इट्स कुमार की फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में आज पहली फरमाइश आई है इट्स कुमार की एमपी रीवा से, और उनको सुनना है गाना पागल। ओ माय गॉड, सो एंजॉय करते हैं ये पागल गाना सिर्फ और सिर्फ हमारे सो स्वीट से पागल इट्स कुमार की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आर्ज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड। बहुत बोल दिया ना, लग रहा है दोस्तों थक गई, स्टे ट्यून्ड।
1: आज 14 साल बाद मुड़िया हां उन आरामां ते।
0: अच्छा, 2 साल से मैं आई हुई हूँ, 3 साल से आप आए हुए हैं, 2-3 साल हो गए ना, थोड़ा तो लॉजिक लगा। हां, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है दोस्तों।

खूबसूरत सा रोमांटिक सा पंजाबी सा नगमा हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर जो की है एमपी रीवा से। अब बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ जो की है जग्गू दादा की और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना हम तो थे अनजाने। सो एंजॉय करते हैं अनुराधा जी की आवाज में जंगल लव का ये गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सिफारिश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइशी गीत भी है एकदम से अलग से हट के अतरंगी सी। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। और धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना अरबिक कुथुत। सो एंजॉय करते हैं थैलापैथी विजय का ये अतरंगी सा गाना हमारे अतरंगी से धर्मेश।

हमने एंजॉय किया ये अरबिक गाना विजय थलापति का, सिर्फ और सिर्फ हमारे थलापति धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नवीन राजपूत जी एमपी से आपका तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल है आपकी अपनी महफिल में। सो दोस्तों

चलते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और फाइनली हमारे पास माँ नहीं नहीं नहीं दोस्तों, फाइनली हमारे पास में है एक बहुत ही सूदिंग सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पारिवारिक सा, बहुत ही अच्छे शब्दों वाला, बहुत ही सुरीला सा, दिल को छू जाने वाला नगमा। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवे नगर गोंडा से, और मोहित को मालवे नगर गोंडा से सुनना है गाना ये तो सच है कि भगवान है, और है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। सो एंजॉय करते हैं हम साथ साथ हैं पिक्चर का ये बहुत ही सुरीला सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पे, जो कि मालवे नगर गोंडा से, और आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल डेडिकेट करती है ये सॉन्ग हमारे ज्ञान स्थली के मेंबर्स को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आई लव दिस सॉन्ग, डोंट नो व्हाई।

song. I really appreciate this song. I love this song and thank you so much. It means really, really, really a lot. Thank you so much, Mohit from Malve Nagar Gonda. ये थी फरमाइश मोहित की मालवे नगर गोंडा से. दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश. इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को. और अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की गोंडा से. सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना रांझे अवे. सो एंजॉय करेंगे सोनिया तिवारी की फरमाइश पर ये नगमा. लेकिन उसके पहले इट्स कुमार का कहना है कि माँ माँ होती है जो वो होती है, आप होते हुए भी नहीं होते. अगर आप हुए तो माँ नहीं होती है. कुछ लोग की नजर में माँ माँ नहीं होती, ये सच है, क्योंकि वो होते हैं. मैं अपनी मम्मी के सामने मिट जाता हूँ इस तरह से. ओ माय गॉड, कौन है इस दुनिया में जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता. एक बार को पिताजी से विचार न मिलने की वजह से भले थोड़ा सा बातें कम हो, लेकिन माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर माँ बचपन में स्ट्रिक्ट है किसी की, बाय चांस बचपन में क्योंकि पापा स्ट्रिक्ट नहीं है तो मम्मा को ना चाहते हुए भी स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है. और उसके बाद लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं एक टाइम के बाद में, वही स्ट्रिक्ट मम्मा भी तो दोस्त बन जाती है. जैसे मेरी मम्मा तो हम बच्चे थे तब भी मेरी दोस्त ही थी, बड़े हुए तब भी मेरी दोस्त थी. मेरी मम्मा कभी स्ट्रिक्ट नहीं थी क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे बचपन में. लेकिन अब मेरे पिताजी भी स्ट्रिक्ट नहीं है. ऐसे सबके साथ होता है. एक टाइम पे डिसिप्लिन के लिए, बच्चों के वेलबींग के लिए मम्मा पापा को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. और वो जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए बोलते हैं. भाई उनको हमसे क्या लेना देना. तो जो भी अगर ये सोचता है कि ना मम्मा अच्छी नहीं है, ओ प्लीज पापा अच्छे नहीं, ओ प्लीज, सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं, सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं. उन्होंने हमें जन्म दिया है अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया था, ठीक है. हमें जन्म दिया, फिर उसके बाद में हमारे लिए जो कुछ भी किया वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया. भाई वो चाहे तो हमें एक किनारे रख सकते हैं. हाँ, एडुकेशन चाहिए, एडुकेशन दे दिया, खाने को दे दिया, पहनने को दे दिया, रहने को दे दिया. लेकिन फिर उसके बाद में वो अपने बारे में सोचते ना. लेकिन मैंने आज तक किसी के भी मम्मी पापा को ये नहीं देखा है कि वो अपने बारे में पहले सोचते हैं. उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनके बच्चे, उनके बच्चों के बाद में वो फिर अपने बारे में सोचते हैं. इनफैक्ट उसके बाद में पिताजी अपनी बीवी के बारे में सोच लिया, चलो बच्चों के बाद में. अपने बारे में पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं सोचते. कोई अपने बारे में नहीं सोचता है, ना मम्मा ना पापा. सो मम्मा पापा कहते हैं ना कि भगवान कहीं भी नहीं होते हैं, सब जगह नहीं अवेलेबल हो सकते, इसीलिए उन्होंने मम्मा पापा को दिया है ना. तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का भी और मम्मा पापा का भी, है ना दोस्तों. सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश. फिलहाल इतना मतलब ज्ञान देने की मुझे जरूरत नहीं थी. आई नो सब अपनी मम्मा पापा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं. स्टिल करना चाहिए ना. अगर थोड़ी सी अच्छी बात बोल दी तो क्या जाता है. इलॉजिकल बातें तो मैं दिन भर करती रहती हूँ ना. सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, मींस सोनिया तिवारी की फरमाइश. स्टे ट्यून्ड एवरीवन.

लगेगा करांगी रांझे आवे। सोनिया तिवारी की थी ये फरमाइश और ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था। मेरे बहुत ही सारे लिसनर्स को ये गाना बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और बहुत पसंद आया। सो थैंक यू सो मच सोनिया तिवारी। और इसी के साथ में सोनिया तिवारी का कहना है कि इतना प्यारा गीत सुनाकर दिल को छू लिया। अरे आपने हमारे दिल को छू लिया सोनिया तिवारी जी, हर सुर ने जैसे प्यार का एहसास दिया, आपकी मधुर आवाज ने शाम सजा दी, आज इस सिंपल इस खूबसूरत गीत के लिए दिल से धन्यवाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट सोनिया तिवारी जी। और आपका गाना बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत था। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश गीत को एंजॉय करने के लिए? इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना दिल तो दिल है। सो इंजॉय करते हैं कब क्यों और कहां पिक्चर का ये गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में, धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आशु मिश्रा जी लखनऊ।

वाह मोहम्मद रफी जी, लव यू सो मच, क्या आवाज और क्या मजेदार एकदम। इन्होंने कितने मजे में गाना गाया भी ना दोस्तों, कि अगर आप ये सोचो कि हाँ चलो ओल्ड इज गोल्ड गाना है उसी अंदाज में होगा, तो ना ना ना बाबा, नहीं नहीं, कितना मजेदार गाना था, मुझे तो सुन के मजा आ गया। और आज से ये गाना मेरी प्लेलिस्ट में तो जरूर ऐड होने वाला है, चाहे हाँ कहिए या ना कहिए। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज विकास गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार सिंह जी की मालवे नगर गोंडा से। उनको सुनना है गाना मैंने प्यार किया तो ठीक किया, जो प्यार करता है वो ठीक ही करता है। मैं भी यही कहती हूँ कि प्यार करो तो एकदम सही किया, एकदम करेक्ट किया। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में प्यार करने वाला गाना ओल्ड इज गोल्ड, सुनहरा नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारे राजेश सिंह जी की फरमाइश। बस एवरीवन, कुछ भी बोलने को मिल जाए, बस मुझे बोलना होता है ना दोस्तों। ये सब आप ही लोगों का रहमो करम है, आप लोग के बीच में इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ तभी बोलती हूँ मैं, जिसके बीच में कंफर्टेबल रहती हूँ मैं वही ज्यादा बोलती हूँ। सो लव यू सो मच वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड।

प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, जो की है गोना से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश गीत को। लेकिन राजेश सिंह जी, मैं कहना चाहूंगी आपसे एक लाइन। दीदार का तलबगार हूँ, नजारे की आरजू है। दीदार का तलबगार हूँ, नजारे की आरजू है। मैं ढूंढता हूँ उसको जो मुझ में ही छुपा है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरीबा शेख की। अरीबा शेख को सुनना है गाना रब ने बनाया तुझे किस लिए। सो एंजॉय करते हैं ये गाना सिर्फ और सिर्फ हमारी अरीबा शेख की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: एंजॉय किया है ये गाना रिवश की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ एंड ओ माई गॉड अगली फरमाइश हमारे पास में है वंशिका की एंड वंशिका आई रियली लव दिस सॉन्ग सो एंजॉय करेंगे हम लोग वंशिका की फरमाइश पर एक पंजाबी हाउ रोमांटिक वाला नगमा जी हाँ दोस्तों ये गाना मुझे बहुत पसंद है और ये इस गाने से पता नहीं क्यों मैं अभी तक बोर नहीं हुई हूँ सो एंजॉय करते हैं वंशिका की फरमाइश पर एमी का ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा स्टे ट्यून्ड एवरीवन ओहो वैसे मुझे भी लोगों की आंखें ही पसंद हैं और ये गाना सिर्फ आंखों पे ही
1: जो
0: है
1: मैं
0: ना
1: पिछले दिनों तो तक रहा है चेहरा खो
0: स्टे ट्यून्ड ये फरमाइश है वंशिका की फ्रॉम गोंडा

चांद सितारे की करने मनो इश्क हो गया अखियां नाल। ओ माय गॉड, हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा वंशिका की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश गीत की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है जारा खान की। जारा खान को सुनना है गाना जारा खान, आपका गाना मिस आउट हो गया, कोई बात नहीं। जारा खान की फरमाइशी गीत को दोस्तों हम लोग एंजॉय करेंगे और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं किया फटाफट से पेट पूजा करके आना। अगर आप लोगों ने पेट पूजा कर ली तो समझ लेना कि मेरा भी पेट भर गया है। ओके, डन डन डन डन। सो आप लोग पेट पूजा करके आना और फिर इंजॉय करेंगे आप लोग की फरमाइशी गीतों को आपकी बकबकल सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। इंजॉय करते हैं जारा खान की फरमाइश। दूर वादियों से आ रही है पायलों की छम छम। सो इंजॉय करते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गाना और मिलते हैं सीधे 9 बजे स्टेज।

0: साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
6: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
7: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
6: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश के माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
8: So if you want to make more export,
9: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
8: 1 year before.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
10: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
11: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
10: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
11: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
12: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई।
11: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान, प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Once again, welcome back in your show for my Shibi Deo, just simple who is not so simple, और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन. Stay tuned.

डुपर डुपर हिट गाना यो यो हनी सुनकर एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके पहले इस्तकबाल और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो क्या हाल चाल है पब्लिक, मजा आया ना? वैसे मैं चाहती ही थी कि मज़ा आए आप लोग को, इसीलिए तो ये गाना बजाया था मैंने दोस्तों से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है गीता श्रीवास्तव जी की। गीता श्रीवास्तव जी को सुनना है गाना हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। सो एंजॉय करते हैं लता जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी बहुत ही खूबसूरत सी गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर।

तुम हमारे लिए हमने एंजॉय किया ये हाउ रोमांटिक ओल्ड इज गोल्ड, सुनहरा सुनहरा सुनहरा नगमा हमारी गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से। नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में रंग पिक्चर का गाना, वो भी झनकार बीट्स के साथ में। नाउ लेट्स गो टू एंजॉय द सॉन्ग। हम तुम पिक्चर देख रहे हो और बिजली चली जाए, और आजकल तो गोंडा में इतनी बिजली जा रही है, इतनी बिजली जा रही है जिसका जवाब ही नहीं है। फिलहाल आजकल मैंने फोन से ब्रेक रखा ले रखा है, तो जब मुझे फोन ही नहीं चाहिए होगा, जब मेरे पास फोन ही नहीं होगा तो मुझे चार्जर की क्या जरूरत होगी, और चार्जिंग की क्या जरूरत होगी, तो फिर मुझे लाइट की क्या जरूरत होगी, है ना दोस्तों। सही टाइम पे मैंने फोन से ब्रेक लिया है। हाउ

तेरा हो। हमने एंजॉय किया है ये गाना हमारे ग्रेट ऑपरेटर एमपी के, मध्य प्रदेश के ग्रेट ऑपरेटर नवीन राजपूत जी की फरमाइश थी ये दोस्तों। आए हाय क्या कनेक्शन है, बिजली का काम भी और बिजली का गाना भी। और आजकल जान रहे हैं ना कि ये चक्रवात की वजह से सब लोग कुछ ज्यादा ही बिजली से प्रताड़ित हैं, तो और आप एकदम से मजा ले रहे हैं। जब से आए हैं ऐसा लग रहा है चैट बॉक्स में ये खाली प्रमोशन कर रहे हैं नवीन राजपूत जी की, सबसे यही कह रहे हैं सोलर लगवा लो, सोलर लगवा लो, सोलर लगवा लो। जैसे लग रहा है कि सोलर इन्हीं की कंपनी का है जो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इनको या तो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं। वाओ, वेरी गुड, वेल एंड डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं सोलर का। और आपके कहने से मैं अभी जा रही हूँ, अभी खरीदूंगी और अभी सोलर प्लेट लगवाऊंगी पक्का। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। झूठ बोल रही हूँ, नहीं लगवाऊंगी अभी। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है एक बहुत ही खूबसूरत सा हरियाणवी गाना। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जेके शाह जी, आपका स्वागत है। आई लव दिस सॉन्ग नागेश्वर धाकड़।

सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को, लेकिन उसके पहले जेके शाह का कहना है कि हम मां भीख भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अच्छा जी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बहुत खूब बहुत उम्दा एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है दोस्तों? अगली फरमाइश हमारे पास में है तेरे लिए गाने की, और इस गाने की फरमाइश हमारे पास में आई हुई है सबिया की तरफ से, जो की है पटेल नगर गुंडा से। स्टे ट्यून्ड। अहा, तेरे लिए। अच्छा जी,

बहुत ही खूबसूरत नगमा एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, जो कि होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। निब्बर जी की फरमाइशी गीत को एंजॉय करेंगे और अब इसी के साथ में आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेंगे अलविदा। जी हाँ मित्रों, लेकिन उसके पहले जी के शाह का कहना है, तुम्हारा नाम किसी अजनबी के लब पर था। अच्छा, तुम्हारा नाम किसी अजनबी के लब पर था, जरा सी बात थी दिल को मगर लगी है बहुत। आए हाय, ये जरा सी बात में कत्ल हो जाते हैं जनाब, सिर्फ दिल पे लग गई तब भी बहुत कम लगी। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेहिंता बेताशा प्यार आपकी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय करते हैं ये गाना। आई लव दिस सॉन्ग निब्बर जी। दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, जिसको दिल तोड़ना होगा ना वो कसम खा के भी दिल तोड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बाय।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल, और मैं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नींव के ईंटों की, वो ईंट जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अंदर से बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम वो ईंट ही करती है। जी हाँ, वही हमारे दानिश्वर होते हैं, वही कलमकार होते हैं जो गज़लें लिखते हैं, नगमे लिखते हैं, गीत लिखते हैं और फिर संगीतबद्ध करके जब उनको गायक कलाकार गाते हैं, आहा, तो वो एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आपके कार्यक्रम में आपका एक खैर मकदम है, इस्तकबाल है, और जब हम बात करते हैं कलमकारों की, तो कल बात जहां पर छोड़ी थी और वहीं से बात आज शुरू करेंगे। संपूर्ण सिंह कालरा साहब उर्फ गुलजार, अभी उनके बारे में बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। चलिए आपको ले चलते हैं, पहले तो गुलजार करते हैं। जिंदगी में शायद अगर दर्द ना हो तो इंसान कलम ना उठा पाए, शायद ये वो पूंजी है जो हर किसी प्रेम दीवाने को मिलती है। प्रेम की पीर कसक वेदना कराह आंसू एक गहरी सिसकी और फिर एक उन्मादमयी तन्मयता, यही तो है वो पूंजी जो मिलती है किसी प्रेम दीवाने को। और वो अपनी दीवानगी को जब पार करता है तो लेखनी उठाता है, कलमकार बनता है, शायर बनता है। कहा भी जाता है कि लफ्ज अगर आंखों से निकल जाए तो इंसान कायर कहलाता है और शब्दों से निकल जाए तो शायर कहलाता है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में। दर्द हल्का है सांस भारी है, गुलजार साहब। दर्द हल्का है सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। रात को चांदनी तो ओढ़ा दो, दिन की चादर अभी उतारी है। शाख पर कोई कह कहा तो खिले, कैसी चुप सी चमन पे तारी है। कल का हर वाकिया तुम्हारा था, इंसान की जिंदगी में उसका वक्त लौटता है साहब, आज नहीं लेकिन कल होगा। कल का हर वाकिया तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है। कल आपका समय था, आज मेरा समय है, और कहा भी जाता है कि मनुज बड़ा नहीं होत है, समय होत बलवान। वास्तव में इंसान नहीं, इंसान का वक्त बोलता है, इंसान का वक्त उसे ताकतवर या कमजोर बनाता है। हमारे साथ जेके शाह जी हैं। जी हाँ, वेलकम सर जी, खैर मकदम करते हैं आपका, बेइस्तकबाल शुभ संध्या आपको। और आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में, और आज पहली गजल हमने आपके लिए चुनी है थोड़ी सी रोमांटिक, राहत फतेह अली खान की प्यारी सी आवाज़ में पहली गजल आपको सुनाते हैं। सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए। उन्होंने कहा कि सफर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। बहुत ही खूबसूरत लाइन जेके शाह जी आपकी। और आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्रीमती सविता शास्त्री जी। चरण स्पर्श करते हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगी अब। और अब शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस बेहतरीन गजल के साथ।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए
2: कोक स्टूडियो सीजन 9।

जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान की ये आवाज़ वास्तव में कितनी राहत पहुंचाती है, और इतने ऊंचे सुर पर अपने आप को ले जाना, मैंने उनको लाइव देखा और क्या बात है भाई। वास्तव में गायक कलाकार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस नोट पर गाना, इस प्यारी सी पिच पर गाना शायद बहुत आसान नहीं होता। तारीफ बनती है इस गज़ल की। और आइए अब आपको ले चलते हैं एक बार नगमों की दुनिया में। बहुत ही प्यारा सा नगमा कर रहा है आपकी प्रतीक्षा, ये वाला।

एक और कवि कहता है कि मुझे आवाज न दो, और दूसरी ओर क्या बात है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। उस पहलू से भी आपको कराएंगे रूबरू। आपने एक बहुत ही प्यारा सा नगमा सुना, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। सोचिए जरा, अगर इसका जवाब देना हो तो किस अंदाज से इसका उत्तर, इसका जवाब दिया जा सकता है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं कि इस नगमे का तोड़ कौन सा नगमा हो सकता है। मेरे साथ विशाल बेदर्दी जी हैं। प्रणाम सर, और शुभ संध्या आपको भी। प्रणाम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, यकीन मानो कुछ लोग इसे भी तोड़ गए। और यकीन मानिए कि इस दुनिया में जो पत्थर होते हैं, जो आपने पत्थर की बात की, तो मुझे गजल याद आ गई कि वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए। रुखसत मतलब विदाई के वक्त। इंसान जब तक होता है शायद उसकी कद्र उतनी नहीं हो पाती, लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो शायद लोग कहते हैं कि कहने को जिंदगी में कई लोग थे मगर वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा सा। इसलिए जिंदगी में अगर आपको कुछ अच्छे लोग मिलें तो उनकी कद्र कर लीजिए, शायद जिंदगी वो मौका दोबारा न दे। तो बात जब पत्थर की हुई और दिल की हुई तो मुझे याद आया कि वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए। जब चलने को हुआ मैं तो कहीं तारा कहीं जुगनू, वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। चाहे जो इत्र डाल लें लेकिन सुगंध आपकी ही आती है। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंख में आंसू आए। जी हाँ, इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि उसके पास एहसासात होते हैं, उसके पास जख्मों का जजीरा होता है, और उसके आंसू ये बताते हैं कि वो इंसान है। गुलजार साहब ने लिखा कि जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा। वो तो आपकी बात थी, तो आईना तो दिल तोड़कर तो मुझे याद आ गया, इत्तेफाक से याद आ गया, तो हमने सुनाया आपको, और शुक्रिया ज़्यादा नवाजिश का। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ, साथ में लोग काफिले में हैं, और सफर तन्हा। सोचिए, लोग आपके साथ में हैं लेकिन आप अकेले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद कोई आपके एहसास को नहीं छू पा रहा है। अपने अपने साए से चौंक जाते हैं, अपनी परछाई भी देखते हैं तो चौंक जाते हैं, अपने साए से चौंक जाते हैं। उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, मतलब इतनी तन्हाई में जिंदगी गुजारी है कि अब तो एक लाइन आ गई मेरे दिमाग में कि अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, अरे सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। तो जिंदगी साहब कभी कभी ऐसी होती है तन्हाई। अपने साए से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, रात भर बातें करते हैं तारे, रात भर
बातें करते हैं तारे, रात काटे कोई किधर तन्हा, डूबने वाले पार जा उतरे, डूबने वाले पार जा उतरे, नक्शे पा अपने छोड़कर तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा। हमने दरवाजे तक तो देखा था, आय हाय हाय, निगाहें कहाँ तक पीछा करती हैं साहब। हमने दरवाजे तक तो देखा था, फिर न जाने किधर गए तन्हा। मतलब एक बात है, उस बात की बात होनी चाहिए कि मतलब वास्तव में हम अपनी बात के लिए कितने, अपनी बात पर कितने खड़े हैं। वो पंक्तियां हैं कि शाख से उतरने में देर कितनी लगती है, फूल को बिखरने में देर कितनी लगती है, उम्र बीत सकती है बात को निभाने में। वसीम बरेलवी साहब की एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आ गई मुझको कि ये सोच कर कोई अहले वफा करो हमसे, हम एक वादे पर दुनिया गुजार देते हैं। और इस सदी के जो गज़लकार हैं, जो दानिश्वर हैं, वो ये कहते हैं कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। बोले एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है आप नहीं हैं तो कोई और सही। शाख से उतरने में देर कितनी लगती है, फूल को बिखरने में देर कितनी लगती है, उम्र बीत सकती है बात को निभाने में, अरे बात से मुकरने में देर कितनी लगती है। बात से मुकरने में देर कहाँ लगती है, लेकिन अगर आप समझते हैं, एहसास को समझते हैं, और मुझे लगता है ना कि इंसान और जानवर में फर्क बोली का नहीं जुबान का होता है। इंसान जुबान दे सकता है, शायद जानवर किसी को जुबान नहीं दे सकता कि जाओ तुमको जुबान दे दे। ये फर्क होता है, बेसिक फर्क बोली का तो है ही है, लेकिन इंसान जुबान दे सकता है। अब चलते हैं, लौटते हैं उस माहौल की तरफ। मुकेश कुमार ने गाया, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर मुकेश ने गाया है तो फिर मुकेश को जवाब देने की हिम्मत सिर्फ एक शख्स में है, और वह है कायनाती गले के मालिक। जरा गेस कीजिए कि अगर इस गाने का उत्तर देना हो कि मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, और कायनाती गले के मालिक रफी साहब के पास चले हम, तो वो मुकेश के गीत का उत्तर शायद अपने इस गीत से देंगे। जी हाँ, मैंने आपको दोनों नगमे सुनाए। एक नगमा आपको सुना चुका जहाँ पर शायर कहता है कि मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, और दूसरी ओर आहा कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब क्या गाते हैं। जी हाँ, ये मुझसे बेहतर है कि आप उन्हीं से सुनिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, मेरे हिसाब से ये उत्तर खूबसूरत है। आपकी राय जानने की इच्छा जरूर रखूंगा मैं। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कर रहा है आपकी प्रतीक्षा, मुझको आवाज न दो, और अब रफी साहब बोलते हैं क्या जी ये।

जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि उत्तर आपको शानदार लगा होगा। और क्या बात है भाई, मैं साथ जेके शाह जी हैं, वास्तव जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। क्या बात है रफी साहब की आवाज़ जी, बहुत मुकेश को आवाज़ मतलब टक्कर देने वाला और है कौन, मतलब गम की अगर बात करें तो शायद मुकेश की आवाज़ में जो दर्द है उस दर्द का मुकाबला, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, वो रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। और उनकी ज़िंदगी में तो कुछ ऐसे वाकयात गुजरे कि दर्द रफ़ी साहब का पर्यायवाची बन गया। इत्तेफाक की बात थी कि उनकी बेटी की शादी हुए 3 दिन हुआ था और रुखसती हुई थी उनकी बेटी की और फिल्म नीलकमल बन रही थी और गीत के बोल थे, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। अगर आपने इस विदाई की गीत को सुना होगा, दिल से सुना होगा, कभी मौका मिलेगा तो सुनिएगा। तो अंत में वो सिसकी रफ़ी साहब की आ जाती है क्योंकि उनको अपने बेटी की रुखसती, उनकी विदाई याद आ जाती है। म्यूजिशियन ने कहा था कि ये जो सिसकी है इसको क्या कट कर दिया जाए, तो कहा ये नहीं नहीं इसको कट कर देंगे तो जो गीत की नेचुरलिटी है वो समाप्त हो जाएगी। और आज भी मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन शायद विदाई पर जितने गीत बने उन सभी गीतों में अगर सबसे महान गीत विदाई पर कभी उनका लेखा जोखा होगा तो शायद बाबुल की दुआएं लेती जा इसका नाम कहीं ना कहीं उस फहरिस्त में ज़रूर होगा। जेके शाह जी लिखते हैं कि तेरे शहर के कारीगर बड़े अजीब है दिल, कांच की मरम्मत करते हैं पत्थर के औजारों से, आए हाय हाय हाय। अब आप पंक्तियां लिखते हैं तो मेरे अंदर का शहर जागता है, हमको याद आई पंक्तियां कि कुछ यूं हमारे जख्म का उसने किया इलाज, कुछ यूं हमारे जख्म का उसने किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो हमने इतना जख्म लेकर गए थे कि जरा देखो जख्म।

जो युवा है वो सोचते हैं कि उनका बचपन लौटे, और जो बचपन में है वो सोचते हैं कब बड़े हो जाएं, अपना पैसा कमाएं। वर्तमान से संतुष्टि शायद किसी को नहीं होती। बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है, जब गुजरती है उस गली से सबा शाम, जब गुजरती है उस गली से सबा। सबा का मतलब होता है पूरब की ओर हवा, पूर्वी हवा को सबा बोलते हैं उर्दू में। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है। देखते हैं कि इसी कहीं पर खत होगा। अपने माजी की जुस्तजू में बहार, माजी मतलब बीता हुआ कल, जुस्तजू मतलब चाहना। अपने माजी की जुस्तजू में बहार, पीले पत्ते तलाश करती है। अब देखिए यहाँ पर मुझे पीवी शैली याद आते हैं। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते जब मैंने पर्सी बेस्सी शैलियों को पढ़ा तो उनकी एक ओड है, उनका एक ओड टू द वेस्ट विंड, और उसकी अंतिम पंक्ति है, वो पूरी उस पूरे ओड में वो पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, निराशात्मक, लेकिन अंतिम लाइन उनकी आती है, वो कहते हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर पतझड़ आ चुका है तो बसंत बहुत दूर नहीं हो सकता, जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो ये समझ लीजिए सुख दरवाजा खटखटाने वाला है। इसी उम्मीद पे हम जिंदगी जीते हैं साहब। एक अपने माजी की जुस्तजू में बहार, पीले पत्ते तलाश करती है, कि अगर पीला पत्ता दिखाई पड़ गया इसका मतलब हम आएंगे। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। आहा बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर, बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। गांव से लोग शहर की ओर भागे। यकीन मानिए मित्रों,

हम सभी के पूर्वज कभी न कभी गांव में रहे होंगे और हम लोग यहां चले आए, लेकिन शहर में आने के बाद जो शहरीकरण हुआ हमारा, उसने हमको बहुत कुछ दिया, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसने बहुत कुछ छीन भी लिया। तरबियत छीन ली, संस्कार छीन लिए, थोड़ी सी इंसानियत कम हो गई, पैसे का महत्व ज्यादा हो गया, सुख दुख में दूसरे का सुख दूसरे का दुख हम अपना नहीं बना पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए हमने कुछ गंवाया। और अब देखिए, जो गांव है वो शहर का रास्ता निहारता है, बेटा बेटा जाता है शहर को कमाने, तो माता पिता की उम्मीद लगी रहती है त्योहार होगा तो बेटा आएगा। आप सभी लोगों ने सुना होगा वो चिट्ठी आई है, आज मैं कोशिश भी करूंगा कि वो गजल आपको सुनाऊं, जब बात माजी की आ चुकी है। और भाई धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं, उन्होंने लिखा कि आग लग जाती है दिल में, कोई पेचकस काम नहीं आता, चाहे जितना बड़ा कारीगर हो उसका दिमाग अहंकार में आ जाता है, मैं जो हूं इसको रख एक जगह पर, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाना है, बस इस धरती का लाल अपनों में ही बेगाना है। मैं कभी कभी जब विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो उनसे कहता हूँ, देखो सन, SUN, सन मतलब सूरज, प्रतीक है ज्ञान का, प्रकाश का, और SIN, सिन, सिन मतलब पाप। तुम बच्चों से कहते हैं देखो ये दोनों लेटर अपनी अपनी जगह पर सही है, एस भी और एन भी, बीच में यू और आई है। अगर आप ये मानते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है,

तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर आप इस बात को मानते हैं कि ऊपर वाले ने आपको दिया, तो वहां पर सन होता है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये ऊपर वाले की देन है, तो प्रकाश आता है जीवन में। और जब आई आ जाता है, मतलब मैंने किया, तो वहां ईगो आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है, तब सिन पाप हो जाता है। इसलिए आपके जीवन में जब कभी भी कोई अच्छी घटना घटे तो, या बुरी घटे, तो हमेशा कहिए सन आपने, आप जो चाहते हैं मैं उसी में खुश हूँ, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गाना स्लेट 89.6 FM, क्योंकि ये अब गोंडा ही नहीं बन चुका है हमारे और आपके दिलों की धड़कन।

जी हाँ, वक्त की सुइयां, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे मत लेने का वक्त आ चुका है। जेके शायरी लिखते हैं, आज तो सब गजल अच्छी सुनाई आपने। जी हाँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेहतर ही सुना पाऊँ। जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, मेरा दिल तोड़ कर मुझे ही सुनना चाहता है। जाने क्या बात झलकती है मेरे चेहरे पर, हर शख्स मुझे आजमाना चाहता है। जी हाँ, आजमाने दीजिए। और आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहार गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुका है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, खुश रहे तू सदा। आनंद आजकल छाया के बदले व्यवहार से बहुत परेशान था। छाया आजकल उससे दूरी बना रही थी जो आनंद के लिए असह्य हो रहा था। दोनों की प्रगाढ़ता के बारे में स्कूल के सभी लोगों को भी मालूम था। वो दोनों 5 सालों से साथ थे। छाया और आनंद एक ही स्कूल में टीचर्स थे। वहीं जान पहचान हुई और दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। दोनों की प्रेम कहानी को छाया के पिता का आशीर्वाद भी मिल चुका था। वो दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे कि छाया के पिता को कैंसर हो गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह 1 वर्ष के लिए टल गया। छाया की छोटी बहन ज्योति पिता की बीमारी के कारण बीए का एग्जाम नहीं दे पाई। छाया उसे आगे पढ़ाना चाहती थी। छाया के कहने पर आनंद उसे पढ़ाने के लिए उसके घर जाया करता था। आजकल वो ज्योति के व्यवहार में बदलाव देख रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि ज्योति उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। उसने जब ये बात छाया को बताई तब से छाया उससे ही दूरी बनाने लगी। अब वो ना पहले की तरह आनंद से मिलती जुलती और ना ही बात करती। आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर छाया ने अचानक उससे बातचीत करना क्यों बंद कर दिया। कहीं वो ज्योति की प्यार वाली बात में उसकी गलती तो नहीं मान रही। नहीं नहीं, वो अच्छी तरह जानती है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आखिर कुछ तो पता चले उसकी बेरुखी का कारण क्या है। 3 दिन हो गए थे एक स्कूल में रहकर भी ना वो आपस में मिल रहे थे ना ही छाया उसके एक भी कॉल का जवाब दे रही थी। आनंद छाया पर पूरी नजर जमाए हुए था। उस दिन वो स्कूल आया पर अंदर नहीं गया, बस छाया को स्कूल में जाते हुए देखता रहा। छुट्टी के समय छाया जैसे ही गेट से बाहर निकलने वाली थी आनंद ने अपनी बाइक उसके सामने खड़ी कर दी और बोला, पीछे बैठो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। छाया ने उसकी वाणी में कठोरता महसूस की। वो डर गई। वो चुपचाप बाइक पर बैठ गई। बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद आनंद ने बाइक को एक छोटे से पार्क के पास रोक दिया। पार्क में बहुत से लोग बैठे थे। वो दोनों भी एक बेंच पर बैठ गए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खुश रहे तू सदा। अब तक आपने सुना आनंद और छाया एक दूसरे को पसंद करते थे। जब आनंद ने छाया को बताया कि ज्योति का व्यवहार उसकी तरफ कुछ अलग सा है तो छाया ने उल्टे उसी से बात करना छोड़ दिया। अब आगे आनंद ने छाया का हाथ पकड़ लिया। दो पल दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आनंद ने कहा, छाया मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, तुमने ना फोन उठाया ना मुझे कॉल किया। आखिर बात क्या है, क्यों मुझसे दूर रहकर मुझे परेशान कर रही हो? मेरी क्या गलती है मुझे बताओ तो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आनंद, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, छाया बोली। तब फिर इस बेरुखी का मतलब? आनंद बोला, मैं खुद बहुत परेशान हूं। छाया ने भीगे स्वर में कहा, तुम्हारी ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझे नहीं पता? मैं तुम्हारा साथी हूं, सुख दुख का भागीदार हूं, मुझे बताओ, हम मिलकर हर समस्या का हल निकाल लेंगे। छाया एक टक आनंद को देखे जा रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, बताओ क्या बात है? आनंद ने कहा, ज्योति मेरी छोटी बहन है। छाया बोली, जानता हूं। आगे? मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। छाया ने कहा, ठीक है। फिर? पापा ने मरते समय मुझसे वादा लिया था मैं ज्योति का अच्छे से ध्यान रखूं, उसकी हर इच्छा का ख्याल रखूं। और उसकी इच्छा तुम हो आनंद। छाया बोली तो आनंद का स्वर तेज हो गया, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो, जरा सोचो। सही सोच रही हूं आनंद, तुमसे अच्छा लड़का ज्योति के लिए कहां मिलेगा मुझे? छाया बोली, शट अप छाया, पागल मत बनो, ज्योति से मैं 8 साल बड़ा हूं। आनंद बोला, मेरी माँ मेरे पापा से 9 साल छोटी थी। छाया बोली, ओह माय गॉड, क्या हो गया है तुम्हें, आई लव यू ओनली। आनंद बोला, बट ज्योति लव्स यू। छाया ने इंसिस्ट करते हुए बोला, उसे हमारे बारे में नहीं पता है, सब सच बता दो उसे। तुम्हारे पापा का आशीर्वाद भी मिल चुका है हमें, हम तो शादी करने वाले थे, जब वो ये सब सच जानेगी तो वो समझ जाएगी। आनंद ने समझाना चाहा, वो दिन भर बस तुम्हारी बातें किया करती है, वो बच्ची है आनंद, सच जानकर उसका दिल टूट जाएगा, वो बिखर जाएगी, वो तुम्हें बहुत चाहने लगी है आनंद। इसका मतलब? आनंद बोला, मतलब ये, ज्योति तुमको चाहती है और मैं ज्योति को तुम्हें सौंपना चाहती हूं। छाया ने अपनी बात साफ साफ आनंद के सामने रख दी थी।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खुश रहे तू सदा। अब तक आपने सुना छाया और आनंद एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसी बीच छाया की छोटी बहन ज्योति आनंद को पसंद करने लगी और अब छाया आनंद को ज्योति से शादी करने के लिए कन्विंस कर रही थी। अब आगे।
1: नहीं छाया, नहीं, मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारा प्यार झूठा था, नकली था? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो?
0: आनंद बिफर गया। तुमने अभी अभी मेरी हर समस्या का हल निकालने की बात कही थी और अब मुकरने लगे? छाया ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा।
1: मतलब तुम मेरे बिना रह लोगी?
0: आनंद ने व्यंग से कहा।
1: ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है।
0: छाया ने फिर अपनी बात रखनी चाही।
1: तुम मुझे प्यार नहीं करती ना?
0: आनंद बात से हटना चाह रहा था।
1: यही समझ लो, ज्योति तो करती है ना?
0: छाया बोली।
1: मैं पागल हो जाऊंगा छाया, मुझ पर रहम करो।
0: आनंद की कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम ज्योति को अपना लो, बस मेरी इतनी बात मान लो आनंद, अगर कभी भी मुझे प्यार किया होगा उसी का वास्ता देती हूं मैं तुम्हें।
1: छाया बोली।
0: मैं मां से क्या कहूंगा? आनंद ने आखिरी दाव फेंका।
1: कुछ भी कह देना, बदल गई छाया, बिगड़ गई छाया, जो चाहे कह देना।
0: छाया बोली।
1: तुम बहुत स्वार्थी हो गई हो छाया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें बस अपनी बहन से प्यार है। तुमने मुझे जीते जी मार दिया, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
0: चलो मुझे छोड़ दो।
1: छाया बोली। मैं क्या छोड़ूंगा तुम्हें, तुमने मुझे छोड़ दिया।
0: आनंद दुखी स्वर में बोला। आनंद ने बाइक स्टार्ट की, छाया चुपचाप पीछे बैठ गई। आनंद उसे घर से कुछ दूरी पर छोड़ आया, छाया को बिना देखे तेजी से निकल गया। छाया रात भर सो न सकी, वो सारी रात बेचैन रही। उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, पर आज जाना जरूरी था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वो सीधे क्लासरूम में चली गई। क्लास लेने के बाद वो लाइब्रेरी में जा बैठी। आज उसमें आनंद का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पर्स से एक किताब निकाली और पढ़ने की बेकार कोशिश करने लगी। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, पर समय काटना था क्योंकि अभी आनंद स्टाफ रूम में होगा। घंटी लगने के बाद वो उठी और क्लास लेने चली गई। उस दिन छाया दिन भर आनंद के सामने आने से बचती रही।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खुश रहे तो सदा। अब तक आपने सुना छाया और आनंद एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करने वाले थे। तभी छाया की छोटी बहन ज्योति आनंद की तरफ आकर्षित हो गई और अपने माता पिता की दी हुई जिम्मेदारी समझकर छाया ने आनंद को ज्योति से शादी करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। अब उसने सोच लिया, बस पापा के साल होने में मात्र 3 महीने बचे हैं, उसे अब ज्योति के विवाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसे आनंद पर विश्वास था, वो उसे धोखा नहीं देगा। अब उसे ज्योति को आनंद से विवाह की बात बता देनी चाहिए। उसने जब ज्योति को बताया वो खुशी से झूम उठी, उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने कहा कि शायद इसी कारण आनंद जी अब उसे पढ़ाने नहीं आ रहे। छाया क्या कहती, वो चुप रही। अगले महीने से स्कूल में परीक्षा थी और स्कूल के अंदर की परीक्षा का कार्यभार छाया के पास था, वो परीक्षा प्रभारी थी। इन दिनों छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता था। उसने सोचा परीक्षा के बाद से ही वो शादी की तैयारियों में जुट जाएगी। छाया की एक सहेली तबसुम, जो पहले इसी स्कूल में साइकोलॉजी की टीचर थी, शादी के बाद हैदराबाद चली गई थी। उसने अचानक से खबर किया कि वो दिल्ली आई है और उससे मिलने आना चाहती है। छाया ने उसे दिन के खाने पर बुला लिया। उस दिन छाया को जल्दी घर आना था पर देर हो रही थी। तबसुम अपनी 3 महीने की खूबसूरत बेटी नूर को लेकर छाया के घर आई थी। ज्योति नूर को बहुत प्यार कर रही थी। दीदी, जी करता है मैं आपकी बेटी को रख लूं, ज्योति ने नूर को पुचकारते हुए कहा। रख लो, तबसुम ने हंसकर कहा। तबसुम ज्योति से पहली बार मिल रही थी। बोली, अगर अंकल जी नहीं गुजरते तो अभी तक तेरी छाया दीदी को भी मुन्ना या मुन्नी हो गए होते। आनंद और छाया मम्मी पापा बन गए होते। अंकल जी अपने सामने शादी नहीं देख पाए, पर उनका आशीर्वाद तो इन दोनों को मिल ही चुका है। क्या कहा आपने तबस्सुम दी, ज्योति ने हैरत से पूछा। यही कि शादी हो गई होती अब तक छाया और आनंद की, और वो मम्मी पापा बन गए होते। तबस्सुम ने सच्ची बात कह दी थी। ज्योति ने ये सुना तो सन्न रह गई। जो उसने सुना वो सच है या तबस्सुम दी ने ऐसे ही ये बात कह दी? पर वो आनंद का नाम क्यों ले रही हैं? वो किसी और का भी तो नाम ले सकती थी। इसका मतलब दीदी और आनंद जी? ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने चेहरे के भाव को सामान्य कर लिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खुश रहे तू सदा। अब तक आपने सुना छाया ने अपने प्रेमी आनंद को अपनी छोटी बहन ज्योति से शादी करने के लिए मना लिया था, क्योंकि ज्योति उससे प्यार करने लगी थी और छाया उसे पिता के गुजरने के बाद अपनी जिम्मेदारी समझती थी। पर एक दिन ज्योति को छाया की दोस्त तबस्सुम से ये पता चल गया कि छाया और आनंद एक दूसरे से शादी करने वाले थे। अब आगे तबस्सुम दिन भर रही और रात होने से पहले वापस चली गई, पर ज्योति के मन में हलचल मचा गई। मतलब साफ है, पापा भी इन लोगों के बारे में जानते थे, वो कैसे नहीं जान पाई? पापा की बीमारी में अस्पताल में आनंद जी आते रहते थे। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें इन सभी विषयों पर सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। जब पापा के कैंसर का पता चला तब वो सब लोग पापा में लग गए। एक बात साफ थी कि आनंद और दीदी का प्यार बहुत गहरा था, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। इसी कारण इन्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी प्यार में दीदी ने आनंद जी को मुझसे शादी करने के लिए भी मना लिया। दीदी ने ऐसा क्यों किया? काश एक बार मुझे सच बता दिया होता। ये तो अच्छा हुआ कि तबस्सुम दी ने मुझे सच बता दिया, वरना। स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद छाया ने ज्योति से कहा, ज्योति पापा की बरसी के बाद मैं तेरी शादी की सोच रही हूँ। बरसी को 2 महीने रह गए हैं, तब तक मैं धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी करती रहूंगी। इतनी जल्दी क्या है दीदी? ज्योति ने कहा। नहीं ज्योति, शुभ काम में देर नहीं करते। छाया को जैसे हड़बड़ी थी। हाँ तो ठीक है, अगले हफ्ते 27 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है, उस दिन कुछ कार्यक्रम कर लो, ज्योति ने कहा। ज्योति ने छाया के बर्थडे की तैयारियां धूमधाम से की। बर्थडे के दिन सब मेहमानों में आनंद भी आया। केक काटने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे को केक खिलाने लगी और फिर छाया ने आनंद को केक दिया। केक तो बहुत अच्छा है, आनंद ने कहा। ज्योति ने बनाया है, छाया ने बड़े गर्व से कहा। आज का सारा इंतजाम ज्योति ने किया है। ओह और गिफ्ट क्या दिया? आनंद बोला। नहीं दी हूं, अभी दूंगी, ज्योति तपाक से बोली। और फिर ज्योति ने आनंद के दिए हुए रजनीगंधा के बुके से एक फूल की डंडी निकालकर छाया को देते हुए कहा, तुम्हारी चीज तुम्हें ही सौंपती हूं दीदी। क्या बोल रही है? छाया हड़बड़ा गई। सही बोल रही हूं दीदी, तुम्हारी चीज मैं तुम्हें वापस लौटा रही हूं। मुझे पता चल चुका है दीदी आप दोनों के बारे में। आप दोनों की तो शादी होने वाली थी, सब जानते हुए आपने कैसे मेरी शादी आनंद जी से तय कर दी? मैं नहीं जानती आपने आनंद जी को किस तरह मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन ये सब करते आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस दिन मुझे इस सच का पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी? मैंने तो बस तेरी खुशी चाही थी और कुछ नहीं ज्योति, छाया बोली। ऐसी खुशी किस काम की दीदी जिसमें बाद में पछताना पड़े, ज्योति बोली। सॉरी ज्योति, छाया ने कहा, मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर, ज्योति बोली, आप अभी ये केक मेरे होने वाले आनंद जीजा जी को खिलाइए, ज्योति ने आनंद की ओर इशारा करते हुए कहा। छाया ने केक का एक टुकड़ा आनंद के मुंह में डाला। उसकी आंखें, उसका तन मन, उसका रोम रोम उससे क्षमा याचना कर रहा था।
तीनों की आंखें भरी थीं, पर ये आंसू खुशी के थे।

सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी, खुश रहे तू सदा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाकया हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: नहीं कहो ये कोई।
1: हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।